7.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 23 मई 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक कवि वर वदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन।

स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जुगाड़ों के नायक हैं, स्वामी हैं और जिनका मुख सुंदर हाथी के जैसा है। वे बुद्धि के सागर और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ आइए प्रारंभ करें भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

करही सोत कस फल चाखा। ये संसार प्रभु ने कर्म की प्रधानता करके रचा है, जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल प्राप्त करेगा, अर्थात जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। इसी धारणा से अपने कर्म सदैव न्याय संगत रखिए और न्याय देवता शनिदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है।

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। इस कलयुग में मात्र दया ही धर्म का आधार है और सभी पापों का आधार अभिमान है, इसलिए स्वयं को प्रभु का दास मानकर उसके बनाए जीव संसार की सेवा दया कीजिए, आपका जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा।

अखियाँ हर दर्शन को प्यासी, देख्यो चाहती कमल नैन को, इस दिन रहती उदासी, इस दिन रहती उदासी। सांसारिक दृष्टि से जो नेत्रहीन थे सूरदास, उनके पदों ने, उनकी रचनाओं ने इस संसार को हरि के सबसे मनोहर दर्शन करा दिए। उनके नैनों को जो सुख प्राप्त हुआ, वह हमारी कल्पना, हमारी भावनाओं, हमारी आकांक्षाओं के परे है। इसीलिए कहते हैं कि प्रभु सिर्फ सच्ची भक्ति के भूखे हैं, इसके सिवा उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए।

सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी प्रकार के कल्याण करने वाली हमारी माँ हे कल्याणमयी, हमारे सभी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है हे तीनों लोक की देवी गौरी, हमें अपनी शरण के योग्य बनाए। नारायण की शक्ति हो आप, हम भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें।

अर्थ कुआत सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहां सुमति तहां संपति नाना, जहां कुमति तहां विपति निदाना। पुराण और वेदों में ऐसा कहा गया है कि सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि और कुमति अर्थात बुरी बुद्धि सभी के हृदय में रहती है। जहां

गम अस कहें, जहां सुमति तहां संपति नाना, जहां कुमति तहां विपति निदाना। पुराण और वेदों में ऐसा कहा गया है कि सुमति यानी कि अच्छी बुद्धि और कुमति अर्थात बुरी बुद्धि सभी के हृदय में रहती है। जहां सुमति होती है वहां नाना प्रकार की सुख संपत्तियां वास करती हैं, और जहां कुमति होती है वहां अंत में विपत्ति ही हाथ लगती है। इसीलिए सदैव प्रयास करें कि आप अपने जीवन में सुमति से हर कार्य करें, ताकि सदा ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।

तुलसी भरोसो राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो होए। अर्थात ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर निडर रहना चाहिए। जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा, और जो होना निश्चित है उसे कोई टाल भी नहीं सकता। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य सदैव करना चाहिए।

वहां जब हम अपने कर्म पूरी ईमानदारी से करते हैं और फल की चिंता उस परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन में सारा बोझ हट जाता है। विश्वास रखें कि जो आपके लिए सही है वह ईश्वर आपको सही समय पर अवश्य देंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मुझे यानी कि आकांक्षा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

गुड मॉर्निंग कानपुर, और अब लीजिए सुनिए आपका फेवरेट प्रोग्राम 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ गुड मॉर्निंग कानपुर।

गुड मॉर्निंग कानपुर, यू आर ट्यून टू 102.2 एफएम रेनबो कानपुर और आज इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे फरहत। दोस्तों, नया दिन है, नई डेट है 23rd of May और एक और चांस खुद को थोड़ा बेटर बनाने का। वैसे बेटर बनाने की रेस में आजकल यूथ लाइफ थोड़ी फास्ट हो गई है। टारगेट्स, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बीच आ जाते हैं हम गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम लेकर, ताकि आपके प्रेशर को थोड़ा सा रिलैक्स कर सके। तो चलिए आज खुद को थोड़ा रीसेट करते हैं। वैसे भी आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे की सुबह में बनाते हैं सुबह को थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जेटिक और आपको सुनाते हैं ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

वेल, सैटरडे की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से गाने के साथ, लेकिन आज का दिन आप एफएम रेनबो के संग कैसे बिताने वाले हैं, चलिए बता देते हैं आपको प्रोग्राम हाइलाइट्स के साथ।

दोस्तों, FM रेनबो आज आपके लिए लेकर आ रहा है सुबह 8:30 से सुरों की पुरानी महफिल, और 9 बजे वक्त होगा प्रोग्राम रस बहार का, जिसमें बातें होंगी पुरानी गर्मी की छुट्टियों की। साथ ही दोस्तों 9:45 पर विविधा में आ सजेगी गजलों की महफिल, महफिल गजल प्रोग्राम में। एंड देन टिक टिक करती घड़ी की सुइयां पहुंच जाएंगी जहां वक्त होगा 11 बजे का, और हमनवा लेकर हाजिर होंगी मैं, जहां मेरा साथ देंगी मेरी हमनवा आरजे रितु। दोस्तों, दिन में 3 बजे से रितु के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम म्यूजिक आर, और 4 बजे वक्त होगा आपकी मेल पर बेस्ड प्रोग्राम आपकी पसंद का। फिलहाल गुड मॉर्निंग कानपुर में वक्त है मेरी चॉइस का गाना आपको सुनाने का, सो स्टे ट्यून्ड विद मी आरजे फरहत ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर एंड नाउ इज टाइम फॉर सैटरडे मॉर्निंग मंत्रा। तो आज का मंत्रा कहता है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और दोस्तों ये इंस्पायरिंग थॉट है स्वामी विवेकानंद जी के, जो हमें याद दिलाते हैं कि मुश्किलें हमें रोकने नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत बनाने आती है। जी हाँ, तो दोस्तों अगर ज़िंदगी में मेहनत ज़्यादा लग रही है ना, तो समझ लीजिए आपकी जीत भी उतनी ही खास होने वाली है। सो इस खूबसूरत मॉर्निंग मंत्रा के साथ उम्मीद है आपका हौसला और भी ज़्यादा मजबूत हुआ होगा। इसी पॉजिटिव एहसास के साथ आपको सुनाते हैं एक ऐसा गाना जो आपकी सुबह को बना देगा और भी ज़्यादा हसीन।

गुड मॉर्निंग कानपुर, आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से, और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ सोशल मीडिया अपडेट्स की ओर। दोस्तों, जब हौसले आसमान से भी ऊंचे हों तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी सलाम करती है। जी हाँ, नारी शक्ति ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की वीर महिला पर्वतारोहियों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 8848 मीटर की ऊंचाई पर साहस, समर्पण और अदम्य हौसले का ये अद्भुत प्रदर्शन हर भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है। भारत की बेटियां आज सचमुच हर शिखर जीत रही है। तो सैल्यूट करते हैं भारत की बेटियों को, और आपको लेकर चलते हैं एक और पोस्ट की ओर, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्स हैंडल पर यह भी पोस्ट किया गया है कि मिशन लाइफ अभियान के तहत समर वेकेशन प्रोग्राम 2026 शुरू कर दिया गया है, जिसमें 854 छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। पहले ही दिन ओरिएंटेशन सेशन और गाइडेड जू विजिट के जरिए बच्चों ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रकृति को करीब से समझा। वैसे आपको बता दें कि ये प्रोग्राम चल रहा है 21 मई से 6 जून तक, जहां स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल अवेयरनेस से जोड़ने की एक शानदार पहल माना जा रहा है। एंड यस, एग्रीकल्चर इंडिया के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर साझा की गई एक प्रेरणादायक पहल इस समय सस्टेनेबल फार्मिंग की नई तस्वीर पेश कर रही है। राजस्थान के पाली जिले में का ये FPO अपने 811 किसान सदस्यों के साथ सोलर पावर्ड पंप्स और क्लीन एनर्जी के जरिए नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। बायो रिसोर्स सेंटर में तैयार किए जा रहे हैं बायो इनपुट्स, जो किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने में मदद कर रहे हैं। यानी खेती होगी ऐसी जो मिट्टी को भी सुरक्षित रखे और आने वाली पीढ़ियों का भी स्वस्थ भविष्य दे। एंड वन मोर अपडेट फ्रॉम मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पेज पर, जिसे मैंने देखा है, इस गर्मी को देखते हुए एक बहुत ही अहम तस्वीर साझा की गई है हमसे, जो इस गर्मी में लोगों को फिर से प्रकृति की तरफ लौटने की प्रेरणा दे रही है। इस तस्वीर में दोस्तों एक मिट्टी का घड़ा है, जो ये संदेश दे रहा है कि घड़े का पानी शरीर को प्राकृतिक ठंडक पहुंचाकर गर्मियों में ताजगी और संतुलन बनाए रखने में सहायक माना जाता है। साथ ही इसके प्राकृतिक गुण बेहद पाचन के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोस्तों, इस गर्मी अपनाइए मिट्टी की सौंधी ठंडक और बढ़ाइए बेहतर स्वास्थ्य की ओर अपना कदम, जैसे कि मैं बढ़ा रही हूँ अपने नेक्स्ट ट्रैक की ओर एक और कदम। और आइए आपको सुनाते हैं गुड मॉर्निंग कानपुर का एक और ब्यूटीफुल सा ट्रैक।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। वेल, दोस्तों आज है 23 मई। ये तो हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है, पर आज का दिन अतीत के आईने में क्या अहमियत रखता है, एक नजर डाल लेते हैं। 23 मई 1984 को बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली देश की पहली महिला बनी। उनकी ये उपलब्धि आज भी हर भारतीय बेटी के हौसले और सपनों को नई उड़ान देती है। 23 मई 1995 को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला संस्करण भी जारी किया गया था। और दोस्तों आज ही के दिन 2016 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने RLVTD यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर का सफल परीक्षण किया। इसे भारत के पहले स्वदेशी स्पेस शटल की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना गया। तेईस मई 1911 को न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को ऑफिशियली तौर पर पब्लिक के लिए खोल दिया गया, जो आज दुनिया के सबसे फेमस और विशाल लाइब्रेरी में गिना जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि वर्ल्ड टर्टल डे मनाने की शुरुआत भी

आज ही के दिन सन 2000 में की गई थी, ताकि लोगों में इसके संरक्षण को लेकर जागरूकता को बढ़ाया जा सके। तो जब इतना कुछ है खास आज के दिन में, तो एक खास गाना भी आपके लिए मेरी तरफ से। एंजॉय करिए गुड मॉर्निंग कानपुर आरजे फरहत के साथ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

वेलकम बैक टू द प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर, जिसे आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो की फ्रीक्वेंसी पर। और क्या है देश विदेश की ताजा खबरों में आज खास, आइए लेकर चलते हैं आपको और सुनाते हैं आपको देश विदेश की कुछ ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 के मेन इवेंट में अब सिर्फ 30 दिन ही बाकी हैं। इसी काउंटडाउन को स्पेशल बनाने के लिए 27 मई 2026 को मध्य प्रदेश के फेमस खजुराहो टेंपल कॉम्प्लेक्स में योगा महोत्सव 2026 आयोजित किया जाएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर होने वाले ये खास इवेंट योगा इंडियन कल्चर और हेल्दी लाइफस्टाइल का खूबसूरत मैसेज देगा। तो तैयार हो जाइए योगा को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर एक हेल्दी नेशन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, देश के युवाओं को एम्पावर करने के और नेशन बिल्डिंग को मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 47 लोकेशंस पर न्यूली रिक्रूटेड युवाओं को 51,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर वितरित करेंगे। जी हाँ, ये पहल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही अहम कदम माना जा रहा है।

यानी कि मिलने जा रहा है युवा शक्ति के सपनों को नई पहचान और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम। साथ ही आपको बता दें कि CBSE ने 12th के छात्रों की को बड़ी राहत देते हुए आंसर शीट्स की स्कैंड कॉपी लेने के लिए आवेदन की तिथि 23 मई से बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड के मुताबिक वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक और टेक्निकल इशू की वजह से स्टूडेंट्स आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसी के देखते हुए ये फैसला लिया गया है।

से बढ़ाकर 24 मई कर दी है। बोर्ड के मुताबिक वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक और टेक्निकल इशू की वजह से स्टूडेंट्स आवेदन पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसी के देखते हुए ये फैसला लिया गया है। टीजीटी परीक्षा जनपद की सूचना जारी हो गई है। 30 से प्रवेश पत्र मिलेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिशिष्ट स्नातक शिक्षक जिसे कहते हैं टीजीटी, इसकी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा जनपद की सूचना वेबसाइट upssc.up.gov.in पर जारी कर दी है। इसके साथ ही यह जानकारी भी दी गई कि प्रवेश पत्र 30 मई से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा की अस्थायी उत्तर कुंजी भी जारी कर दिया है। यह वही परीक्षा है जो हाल ही में गुरुवार को आयोजित की गई थी। अब आयोग की ओर से उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर 28 मई तक उपलब्ध रहेगी। और खास बात यह कि अगर किसी अभ्यर्थी को किसी उत्तर पर आपत्ति है तो वो निर्धारित समय सीमा के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और एक और गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ अपने उन राज्य कर्मियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। सरकार ने 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत कार्यरत राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 9% बढ़ाया गया है, जबकि 6ठे वेतनमान वाले कर्मियों का डीए 5% बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मई माह के वेतन के साथ कर्मचारियों को दिया जाएगा। सो इन्हीं खबरों के साथ अब लेकर चल रही हूँ आपको एक और ब्यूटीफुल ट्रैक की तरफ। एंजॉय करिए गुड मॉर्निंग कानपुर आरजे फरहत के साथ।

जी आयश के है या क्या है, वेल ये तो पता चलेगा आगे प्रोग्राम में बढ़ते हुए, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर और आरजे पर है आज इस प्रोग्राम में आपके साथ। फिलहाल दोस्तों वक्त है आपको अपने शहर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट्स देने का, तो उससे ट्यून रहिएगा हमारे साथ 102.2 FM रेनबो की फ्रिक्वेंसी पर। दोस्तों UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट्स को लेकर राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 5 वर्ष की आयु पर पहला और 15 वर्ष की आयु पर दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी है। जिन बच्चों का अपडेट अब तक नहीं हुआ है उनके आधार कार्ड निष्क्रिय होने की आशंका जताई गई है, जिससे आगे चलकर छात्रवृत्ति, स्कूल प्रवेश, प्रतियोगी परीक्षाओं और DBT योजनाओं के लाभ में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अभिभावक इससे समय रहते मॉल रोड स्थित BSNL बिल्डिंग के आधार सेवा केंद्र पर निःशुल्क अपडेट करा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने मेट्रो वाले शहरों में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मेट्रो स्टेशन के पास ऐप बेस्ड साइकिल और ई साइकिल किराए पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जी हाँ, जिससे यात्रियों, खासकर स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा लोगों को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल सुविधा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना और भी ज़्यादा आसान होगा तथा मेट्रो के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्टेशनों के आसपास बेहतर पार्किंग व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। और ये जानकारी भी आपको दे देते हैं कि HBTU में नए शैक्षणिक सत्र के लिए BTEC प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है और रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। पोर्टल शुरू होने के पहले ही घंटे में करीब 60 से 70 स्टूडेंट्स ने पंजीकरण भी पूरा कर लिया, जिसमें से 35 से अधिक छात्रों ने फीस भी जमा कर दी है। तो NICA के सहयोग से सभी तकनीकी प्रक्रियाएं पूरी कर पोर्टल को सुचारू रूप से लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इच्छुक छात्र यूनिवर्सिटी के अधिकारी वेबसाइट पर समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी इच्छुक हैं तो आप भी जाइए और भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। और दोस्तों नई दिल्ली लोक सेवा आयोग की ओर से 24 मई 2026 को सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो पहली बार कानपुर में

भी आयोजित हो रही है। ये परीक्षा शहर के 16 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें से लगभग 6938 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी, सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 से 4:30 तक। जबकि परीक्षा केंद्रों में PMG केंद्रीय विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज और एडेड इंटर कॉलेज भी शामिल है।

मन का संगीत बज रहा है गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के साथ और अपडेट्स में भी शामिल हो रहे हैं आप लगातार। और अब दोस्तों बारी है खेलों से जुड़ी खबरों के बारे में आपको अपडेट्स देने का, तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कानपुर। वेल, आपको बता दें कि कल के आईपीएल मैच जो कि सनराइजर्स हैदराबाद ने गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराने के बावजूद शीर्ष में दो जगह नहीं बना सकी। हैदराबाद ने 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन आरसीबी ने 200 रन बनाकर हार जरूर झेली, पर नेट रन रेट के आधार पर सनराइजर की टॉप टू की उम्मीदें टूट गई। और आज आईपीएल के अहम मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। पंजाब के लिए यह मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए उनके पास ये आखिरी मौका माना जा रहा है, जबकि लखनऊ टीम की घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान का सकारात्मक अंत करना चाहेगी। ये मैच दोस्तों दोनों टीमों के लिए प्रतिष्ठा और रणनीति के लिहाज से काफी अहम है। साथ ही आपको बता देते हैं कि दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आखिरकार सऊदी अरब में अपनी पहली बड़ी ट्रॉफी जीत ली है। शानदार दो गोलों की मदद से अल नस्र ने निर्णायक मुकाबले में जीत दर्ज कर सऊदी प्री लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जीत

रोनाल्डो के अल नसर से जुड़ने के 3 साल बाद टीम की पहली बड़ी ट्रॉफी है। एंड बीसीसीआई की सबसे बड़ी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्टूबर से होने जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश की टीम को ग्रुप ए में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने टूर्नामेंट के लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी हैं ताकि 2005-06 से चले आ रहे खिताबी सूखे को खत्म कर टीम का बेहतर प्रदर्शन प्रेजेंट किया जा सके।

सो कानपुर वालों, अगर आपको लग रहा है कि मई की गर्मी बस गर्मी है तो जरा संभल जाइए, क्योंकि 23 मई को सूरज चाचू पूरी वीआईपी इंट्रो के मूड में है। जी हाँ, मैं हूँ फरहत और आईएमजी की तरफ से एक जरूरी मौसम अपडेट लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक आज कानपुर का पारा 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी बाहर निकलते ही ऐसा लगेगा जैसे हवा नहीं हेयर ड्रायर चल रहा हो। दोपहर में लू लगने के पूरे आसार हैं, तो अगर आपका कोई काम कल भी हो सकता है तो प्लीज़ उसे कल पर ही छोड़ दीजिए। और हाँ, इस मौसम में मोबाइल की बैटरी से ज़्यादा जल्दी हमारी एनर्जी डाउन होती है, इसलिए पानी पीते रहिए, ORS लेते रहिए और ख़ुद को धूप से थोड़ा सा बचा कर रखिए। साथ ही दोस्तों, बच्चों को धूप में ज़्यादा देर खेलने नहीं देना है, और घर के बड़े अगर ये कहें कि हमारे जीवन में, हमारे ज़माने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी, तो शायद वो सच कह रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि गर्मी चाहे जितनी बढ़ जाए, कानपुर की मुस्कान और 102.2 FM रेनबो का साथ हमेशा कूल ही रहेगा।

जी हाँ, चार कदम क्या सारी उम्र, चल देंगे साथ तेरे, और ये साथ यूं ही बरकरार रहे इस गाने के साथ ही। दोस्तों, गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से आपसे लेता है अलविदा। उम्मीद है आपकी चाय में हमारी बात थी और गानों की मिठास खुल गई होगी। एंड याद रखिए, घर से निकले तो अपनी प्यारी सी मुस्कान ज़रूर साथ रखिए, पानी की बोतल साथ रखिए, और हाँ, इस गर्मी में गुस्से का टेम्परेचर थोड़ा सा लो रखिएगा। मैं हूँ आरजे परहत, आपसे लेती हूँ इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे सुरों की पुरानी महफिल के साथ। टिल देन, टेक केयर गाइज़।

0: मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

0: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशे मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.rti.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यू रिक्रूट्स इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुडे। RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden 4-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. Indian Army Officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN Military Gender Advocate of the Year Award 2025. And in IPL cricket, hosts Sunrisers Hyderabad beat Royal Challengers Bengaluru by 55 runs. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments.

102.2 FM रेनबो कानपुर से सज रही है सुरों की पुरानी महफिल और मैं हूँ फरहत आपके साथ। दोस्तों, पुराने गीतों की खुशबू लेकर फिर सज गई है ये महफिल, जहाँ हर नगमा किसी याद को धीरे सी आवाज देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले खूबसूरत सॉन्ग के साथ।

जी हाँ, ये मुलाकात एक बहाना है, आपसे किया हुआ वादा जो हमें निभाना है। इस खूबसूरत गाने में आवाज़ थी लता मंगेशकर की, संगीत खयाम का और बोल नक्श लयालपुरी के थे। सुरों की पुरानी महफिल में अगला सॉन्ग प्रेम रोग तुम से, जिसे गाया है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने। गाने की धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और शब्दों से सजाया संतोष आनंद ने।

सुरों की पुरानी महफिल में अगला गाना लैला मजनू फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने मदन मोहन और जयदेव के म्यूजिक पर, लिरिक्स लिखे साहिर लुधियानवी ने।

आप सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से। और अब प्रोग्राम की अगली पेशकश महेंद्र कपूर की आवाज में, बोल साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत

दोस्तों, सुरों की पुरानी महफिल का ये आखिरी पड़ाव था, जहां पुराने गानों की खुशबू, बीते लम्हों की वो नरम सी दस्तक और आपकी मोहब्बत भरी संगत दिल को वाकई भरने नहीं देती। फिलहाल इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ आप मुझे दीजिए सुरों की पुरानी महफिल से इजाज़त। कनेक्ट रहिए हमारे साथ, क्योंकि लेकर लौट रही हूँ ढेर सारी बातें, दिलकश नगमे और एहसास से सजा आपका फेवरेट प्रोग्राम रसबहार, बस कुछ ही पलों में।

102.2 FM रेनबो कानपुर से पेश है प्रोग्राम रस बहार। गर्मियों की छुट्टियां, ये दो शब्द सुनते ही जैसे दिल अचानक किसी पुराने आंगन में लौट जाता है, जहां ना वक्त की इतनी जल्दी थी ना मोबाइल की दुनिया, बस दोपहर की धूप, आम की खुशबू और अपनों की आवाजें थी। नमस्कार कानपुर, मैं हूं आपकी अपनी आरजे फरहत और आज रस बहार में मैं खोलने जा रही हूं यादों की वो अलमारी जिसमें आज भी संभाल कर रखी है नानी घर की चिट्ठियां, छत वाली रातें, मोहल्ले की शरारतें और बेफिक्र बचपन की मुस्कानें। जी हाँ, वो छुट्टियाँ जब स्कूल बंद होते ही ऐसा लगता था जैसे जिंदगी आज़ाद हो गई, सुबह जल्दी उठने की टेंशन खत्म, होमवर्क पर लग गया फुल स्टॉप और हर दिन बन जाता था नए खेल, नई मस्ती और नई याद का हिस्सा। वैसे बच्चों के लिए आज कोई आम सैटरडे नहीं है, ये है छुट्टियों वाला सैटरडे। तो लिख भेजिए हमें कैसे बिताते हैं आप अपना ये छुट्टियों वाला सैटरडे, या शेयर कीजिए हमसे अपनी बचपन वाली यादें AIR@kansomedia.gmail.com पर। जी हाँ, हो सकता है आपके खूबसूरत यादें आज रस बहार प्रोग्राम में पूरे कानपुर तक पहुंच जाए।

रसबहार प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं छुट्टियों की यादें। वैसे याद है आपको, छुट्टियों की असली शुरुआत तब होती थी जब घर में कोई कहता था, पैकिंग कर लो, कल ट्रेन है। बस फिर क्या, पूरा घर एक्साइटमेंट से भर जाता था और हम बार बार एक ही सवाल पूछते थे, ट्रेन कितने बजे है? और फिर शुरू होता था विंडो सीट का झगड़ा। और याद है आपको, स्टेशन वाली चाय, समोसे की खुशबू और रास्ते भर बाहर भागते पेड़ों को देखते रहना, क्या दिन थे वो दोस्तों। उस वक्त सफर जरूर लंबा होता था लेकिन बोरिंग कभी नहीं लगा, क्योंकि मंजिल से ज्यादा मजा उन रास्तों में होता था। तो चलिए उसी सफर वाली फीलिंग के साथ आपको सुनाते हैं ये वाला गाना।

सच रही है आज प्रोग्राम रस बाहर में मैं हूँ फरहत आपके साथ। दोस्तों आजकल वेकेशन में लोकेशन ज्यादा है लेकिन पहले लोगों के पास लोग हुआ करते थे। नानी के घर पहुंचते ही जो अपनापन मिलता था ना वो शायद किसी लग्जरी होटल में भी नहीं मिल सकता। दरवाजा खुलते ही ढेर सारा प्यार और फिर शुरू हो जाती थी कजिन्स वाली एंडलेस बातें। दोपहर में पूरा घर सो जाया करता था लेकिन बच्चे उन्हें कहाँ चैन था। कभी तकिए की लड़ाई, कभी लूडो, तो कभी चुपके से किचन से आम निकाल लाना और फिर शाम होती ही पूरा मोहल्ला जैसे बच्चों की आवाज़ों से जी उठता था। हम यूं कह सकते हैं कि उन शामों का भी अपना अलग जादू हुआ करता था। किस जादू की बात कर रही हूँ मैं बताऊंगी आपको इस यादों भरे गाने के साथ। सो स्टे ट्यून विद मी ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

रस बहार प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से आरजे फरहत के साथ। दोस्तों, रस बहार प्रोग्राम में जिन शामों की मैं बात कर रही थी, गर्मियों की छुट्टी वाली शामें, एक अलग ही तरह का क्रेज था इन शामों का। धूप थोड़ी ढलती नहीं थी कि हर गली में खेल शुरू हो जाते थे। किसी के हाथ में बैट, किसी के पास साइकिल, कोई पकड़म पकड़ाई खेल रहा होता था और कोई आइसक्रीम वाले का इंतज़ार कर रहा होता था। घर में बस एक ही आवाज़ आती थी कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना, और सच कहूँ तब शामें छोटी लगती थी लेकिन खुशियाँ बहुत बड़ी होती थी। फिर धीरे धीरे रात होती थी और गर्मियों की छुट्टियों का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होता था, वो शाम वाला हिस्सा।

रस बहार प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम और रेनबो कानपुर से। और दोस्तों, अभी प्रोग्राम में हमने पूछा था आपसे एक सवाल कि गर्मी की ये छुट्टियां, उनकी जो यादें हैं आपकी, वो कैसे आप बिताते थे, वो यादें हमसे शेयर करिए। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्क्रीन पर एक मेल आ चुका है और ये मेल है भानु प्रताप का, भगवंतपुर सचिन जी कानपुर नगर से। और ये लिखते हैं कि मैम, जब हम लोग छोटे थे तो गर्मियों में नानी के घर जाया करते थे घूमने, और दोपहर में घूमने भी वहाँ से निकल जाया करते थे। आम और जामुन तोड़ने, जिसका पेड़ तो होता था, अगर तोड़ने से मना कोई करता था तो आम के साथ साथ हम पेड़ भी तोड़ लाते थे। भाई क्या बात है कि अगर आम नहीं मिल रहे तो हम साथ में पेड़ भी ले आ रहे। यही वो नादानियाँ हैं दोस्तों, यही वो खुशियाँ हैं जो बचपन की हमारी सुनहरी यादों में बस गई है। ऐसे कितने छोटे छोटे मोमेंट्स हैं हमारे पास, कितनी खूबसूरत यादें हमारे दिल में बसी हुई है, जिन्हें आज भी याद करके हम फिर से उन मोमेंट्स को जी उठते हैं। तो भानु प्रताप जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे अपनी यादें शेयर करने के लिए। और अगर आपके पास भी हैं कुछ ऐसी सुनहरी यादें, बचपन की गर्मियों के दिनों वाली यादें, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मेल आईडी आप जानते हैं, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं, aircansomedia@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रसभार प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं गर्मी वाली छुट्टियाँ, जहाँ बातें हो रही हैं उन रातों की जिसमें खूबसूरत यादें बुनी हैं हम सब ने। फरहत है आज आपके साथ इस खूबसूरत बातों में। और दोस्तों, गर्मी की छुट्टियों में सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर किसी चीज़ का होता था तो वो था छत वाली रातों का। छत पर पानी डाला जाता था, बिस्तर बिछते थे, रातों को चलती थी ठंडी हवा और आसमान में ढेर सारे तारे। और वो बातें याद हैं आपको, कोई फ्यूचर के सपने बता रहा होता था, किसी के पास घोस स्टोरीज चल रही होती थी, और कोई बस चुपचाप आसमान देख रहा होता था। आज एसी वाले कमरे ज़्यादा हैं, बहुत कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन वो छत वाली रातों जैसा सुकून शायद कहीं नहीं। तो इन्हीं यादों के साथ एक खूबसूरत सा गाना लीजिए, सुनिए।

जी हाँ, पुरानी यादें आज हम समेट रहे हैं रस बहार प्रोग्राम में। गर्मियों की वो छुट्टी और उसमें बस ये अनगिनत यादें जिसे दिल से आज अनलॉक कर रही हूँ मैं फरहत। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो और जीते रहिए एक बार फिर से खूबसूरत यादों को। दोस्तों, आज के टाइम पर हमारी लाइफ का कोई भी मोमेंट हो, हम सबके पास स्मार्टफोन से हम सब उन मोमेंट्स को अपने पास कैप्चर कर लेते हैं कैमरे में। बट उस वक्त जब स्मार्टफोन्स नहीं थे तब फोटोज़ कम खींची जाती थी, लेकिन यादें बहुत क्लियर बनती थी। कुछ बातें बस दिल में रह जाती थी और शायद इसलिए वो इतनी खूबसूरत लगती थी। उस वक्त कैमरा रोल नहीं, दिल मेमोरीज सेव करता था। और गर्मियों की वो छुट्टियाँ जिसका एक परमानेंट मेंबर भी होता था आम। जी हाँ, कटोरी में नमक मिर्च लेकर आम खाना मेरी तो पहली चॉइस थी। वैसे आपको क्या पसंद था शेयर करिए हमसे, क्योंकि दोस्तों इन छोटी छोटी खुशियों में ही पूरा बचपन छुपा होता था, है ना।

रस बाहर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर से, और बातें चल रही हैं गर्मियों की, छुट्टियों की। और दोस्तों, इन यादों में फिर वो वक्त भी आता है जब धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगती थी, होमवर्क याद आने लगता था, नई किताबों की खुशबू आने लगती थी और स्कूल बैग फिर से बाहर निकल आता, लेकिन दिल वो वहीं छुट्टियों में ही अटका रहता था। सब यही सोचते थे कि काश काश थोड़ा टाइम और मिल जाता, लेकिन दोस्तों शायद छुट्टियां खूबसूरत इसलिए लगती थी क्योंकि वो हमेशा थोड़ी सी छोटी लगती थी।

दोस्तों, वापस उन दिनों को सोचने बैठती हूँ तो फील होता है कि आज जब हम बड़े हो गए तो समझ आया कि गर्मी की वो छुट्टियाँ सिर्फ हॉलीडेज नहीं थी, वो ज़िंदगी को महसूस करने का तरीका थी। तब ब्रांडेड चीज़ें कम थी लेकिन दिल भरे हुए थे, एक छत, कुछ अपने, थोड़ी सी हवा और ढेर सारी बातें, बस वही काफ़ी था। शायद बचपन इसलिए इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि तब खुशियां एक्सपेंसिव नहीं, सिर्फ सच्ची हुआ करती थी। तो चलिए आपको सुनाती हूँ उसी एहसास के साथ आज के रस बहार प्रोग्राम का ये आखिरी सॉन्ग।

इन शॉर्ट वी कैन से कि ये तस्वीर है जो कभी पुरानी नहीं होती, वो बस वक्त के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। दोस्तों, गर्मी की वो पुरानी छुट्टियाँ शायद वापस कभी ना आए, लेकिन उनकी खुशबू, उनकी आवाज़ें और वो छोटे छोटे पल हमेशा दिल में ज़िंदा रहते हैं। तो आज थोड़ा वक्त अपनों के साथ बिताइए, फ़ोन से थोड़ा बाहर आइए जनाब, और ज़िंदगी को वैसे महसूस कीजिए जैसे कभी बचपन में किया करते थे। फिलहाल इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ फरहत को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम रस बाहर से मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनी यादों को कभी पुराना मत होने दीजिएगा।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। इस अवसर पर वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। इस रोजगार मेले का आयोजन राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की वृद्धि के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य के व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश के में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में चित्रकूट में 1,926 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। कार्य के सफल संचालन के लिए 40 जनपद स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न ग्रामों और वार्डों में लगाई गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना अभियान में सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि विकास योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े तैयार किए जा सकें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। काशी की कला संस्कृति और पारंपरिक हस्तशिल्प को नई पहचान देने के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अर्बन हार्ट विकसित करने की योजना बनाई है। ये परियोजना चौकाघाट वाराणसी पर स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल परिसर में विकसित की जाएगी। प्रस्तावित अर्बन हार्ट में बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, धातु शिल्प, गुलाबी मीनाकारी सहित विभिन्न पारंपरिक और GI टैग उत्पादों की दुकानें स्थापित की जाएंगी, जहां स्थानीय कारीगर और बुनकर सीधे अपने उत्पाद बेच सकेंगे। परिसर में एक ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा, जहां लोक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां होंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, जिस पर अगला कार्यक्रम है सुगंध माटी की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बड़े बुजुर्गन का लड़का बच्चा मेहरारू मनसेदू का सबका प्रणाम। एफएम रेनबो के सब सोता पंचन का आरजे अंजू शुक्ला की तरफ से राम राम। हमरे स्टूडियो की घड़ी में टेम हो गवा है 10:04 और हम लेके आए गए हैं सुगंध माटी की कार्यक्रम कहे से कि आज है शनिवार। और हमेशा की तरह भैया बहनी हमारे साथ ही बहुत बढ़िया मेहमान आई है जिनका कहा थे आकाशवाणी के नगीना अपनी बोली से अपनी मीठी बोली से सबके दिल जीते वाली आए गए हमारे साथ है जिज्जी नीना। अरे जिज्जी राम राम, बहुत स्वागत है आपका।
1: राम राम अंजू, राम राम, कैसी है बहनी?
0: अरे हम तो बहुत नीक है बहनी। जिज्जी पहले ये बताओ आप रही कहाँ?
1: हम कहाँ रहे?
0: अत्ता इंतजार करवावा तू, गलत बात।
1: सोता पंचे बताइए कि उनके जिगर में उनके दिल में रहन कहाँ रहन।
0: अरे तो तब की शनिचर का देखा हम अकेले प्रोग्राम करे रहे हैं, कहूँ की उबे उबे उबे इंतजार है करत रही।
1: तो तुम क्या सोचती हो हम शनिचर का कहूँ ना कहूँ रहे नहीं का यही आकाशवाणी के कोने स्टूडियो में हम बाहर हुई है।
0: हाँ,
1: लेकिन, ले, और जो
0: लेकिन अपनी अपनी छुटकी बहनिया तो याद के लिए तो इंतजार करत रही है। बताओ
1: छुटकी बहनिया हमका मिला थी, हमका चीना थन और प्यार करत थन। छुटकी बहनिया हमका लाड़ से प्यार से दुलार से आज बुलाये ली हमका, हमका बहुत काम है। ये ना सोचो कि हमारे पास काम नहीं ना, नहीं नहीं आओ सुबह सवेरे तुमका आए का पड़ी और ये जो उन्हें सूरज की तपिश है। अरे बहनी कहा बताई ऐसा कपड़ा निकालत रहन कौन सूती कपड़ा ढील ढाल जो है चटक रंग के भी हो मतलब चटक ऐसा कि लाल पीला हरा
0: सही बात
1: हल्के रंग के जो उन्हें कहा जाते हैं अंग्रेजी में सूदिंग।
0: सूदिंग एंड कूलिंग है।
1: सूदिंग एंड कूलिंग। तो आज के कार्यक्रम भी ऐसा ही हुई सूदिंग एंड कूलिंग और बने रहे हमरे और अंजू शुक्ला के साथ हम तुम्हारी प्यारी नीना सुनकर।
0: और जी पहले ई जो है हमारे सबके जो आप बात करू गर्मी के है? हाँ। तो यही से शुरुआत कर दी भैया गर्मी तो बहुत प्रचंड बनती पड़ती है।
1: हाँ ऐसा लगता है कि जैसे अगिया जो है बिल्कुल कपाल का बिल्कुल फोड़े दे रही मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि जैसे कपाल माँ सूर्यदेव बिल्कुल कपाले पर बैठ गए हैं। तो जो है हमारे पंच सुन रही कार्यक्रम बहुत ध्यान दे 44-42-43 डिग्री हुई करी। अब देखो उत्तर प्रदेश के बांदा जो है ऐसा जीव जान मने के कान ये 48 डिग्री चलेगा ऐसे में तो कहा जाते हैं अंजू कि अपने आप सुलगा लागत है सब चीज जो घास वास ही यार बाहर वो अपने आप सुलगा लागत है। इतनी गर्मी कि और मन ही देखो एक दूसरे का दुत्कार रहा। हाँ। प्यार मोहब्बत की तो कोई बात ही नहीं ना। हाँ। सब करे जरा जरा दूर
0: सबका दिमाग गर्म हो गया
1: बिल्कुल बढ़िया जो गर्म होती उनके परिणाम तो बहुत है बुरा।
0: अरे तो भैया अपन दिमाग ठंडा रखत जा और सुनत रहत जा एफएम रेनबो कहे से की शुरू हो गया कार्यक्रम सुगंध माटी की।
1: अंजू सुनो हम लेके आए हैं का एक बर्फ की का कहते हैं एक देखो ये जो गुम्मा की तनिके है गुम्मा की तनिके एक बर्फ के जो है बड़ी नहीं भाई
0: कपाले रखे के लिए
1: कपाले में रखे के लिए कहा है ना गर्मी होती तो अंदर की गर्मी है इस कपाल मचड़ा थी इस कपाल मचड़ा थी कि मैंने सोचा था कि के ऊपर उतार ही जाए
0: तो जो ज्यादा गर्म हो ऊपर सिल्ली रख दी जाए।

0: हाँ आइसक्रीम आइसक्रीम खवा बच जा भैया।
1: हाँ तो गर्मी के दिन आए हमारे पिया, तो पिया क्या करिए जब बत्ती बत्ती काटी जाए रात भी रात,
0: पता चला बेना हकी है, पिया बेना हकी है।
1: अब बेना तो ठीक है, ये वाली भी ड्यूटी अच्छी है। देखो मेरिया जो ना एक बनाए बनाए खियाए पियाए गल का है, और क्या कहते हैं चना की दाल की जो पूड़ी उड़ी होती है,
0: आम का पना, पना बनाए,
1: पना बनाए और पुदीना की चटनी बनाए, खिचड़ी गरम गरम खियाए, देसी घी उम्मा डाल दे, लेकिन थोड़ी एनर्जी वनर्जी कम रखा भैया, नहीं लड़ाई झगड़ा भी ज्यादा एनर्जी होती है गर्मी के मौसम में। तो फिर उम्मा कहा है ना कि कहीं तो निकलाती एनर्जी, तो
0: जिज्जी जब लेके आई यहाँ बर्फ की सिल्ली वाली टिप सब सुन ले।
1: रुमाल में लपेट के रखा जाता, नहीं तो बिल्कुल कपाल का क्या हुई जो उनके गर्मी अर्मी है, जो न्यूरो सिस्टम है वो पूरा तहस नहस हो जाए। बच्ची कहाँ की बात कर रही
0: हो। हाँ तो मतलब कुल मिला के जो उन्हें सब जान गए हैं कि ये वाला उपाय बढ़िया है। वैसे एक बात बताई कि एफएम रेनबो बढ़िया बढ़िया गवने सुनत रहा, दिमाग ऐसे ठंडा रहा,
1: वैसे ही ठंडा रहा था। लेकिन एक बात बताई थी, तो मजाक की बात है, ये ना सोचो कि हम लोग गर्म मतलब बर्फ की सिल्ली रख के बैठे हैं स्टूडियो में। ये स्टूडियो है, ये देखो माइक है, पूरे देखो टेबल वेबल लगी है, नीके तनीके कंप्यूटर चल रहा, हम सब चीज देखो तुमने मेल वेल हम पंचन के रिफ्लेक्ट कर रहा कि दिखाई दे रहा कि काका लिखे हो। तो यहाँ नहीं सब बिजली का काम होता, तार होता, यहाँ बिजली के वजह से इनको बर्फ बर्फ के कामों नहीं होता। ये ना सोचो कि ये उपाय बतावा जा रहा, नहीं तो पता चले कि हंसी खुशी के नोक झोंक का आप सोचो कि उपाय बतावा गा है, एक ढीला जाऊन है बर्फ के, हमको पड़ेगा पैसा कुछ ना करे।
0: तो हंसी मजाक की बात रही आपका। ऐसे जी एक बात बताइए, गर्मी आवत है ना, तो गर्मी छुट्टी बहुत याद आवत है हमका सबका।
1: तुमका क्या याद आती, ऐसा क्या करे हो तुम?
0: अरे जिज्जी का बताई, पहले नानी खिया जात रहे,
1: जाने
0: तो जिज्जी हमारे यहाँ छठ ही मौसी,
1: अच्छा,
0: और सबके लड़कियां बच्चा जब इकट्ठा होत रहे तो जौन धमाल होत रहा, जौन मजा आवत रहा, का बताई, हर दाई याद आवत है। गर्मी छुट्टी में जात रहे बगिया में, चिल्होर जाने तो चिल्होर खेला जाते, डंका बोला
1: था
0: खेला जात रहा, पेड़ चढ़ के जो ना एमर से उमर उमर बन बनर नहीं।

0: हम सब कूदत पूदत रहे और उसके बाद यही में कूदत कादत के चक्कर में जो ना एक जने के आम के डार टूट गए और डारी लई के मतलब उमा सब लाग रही टिकोर और लई के पहुंचे नानी के लगे और बाद फिर सब लड़के जैसे डरिया टूट हम सब भगे और चुप चुप लुकाए गए छता पे कोठा जो ना एक कमरा रहा उमा सब लुकाए बैठी हम सब टेबल फैन चलाए के है और नानी हेरत हेरत पहुंची कि केक चढ़ा रहा के चढ़ा रहा है कैसे जो शिकायत लेके पहुंचे तो नानी के डंडा जो सोटा पड़त रहा हमारे सबके ना भागत रहे हम सब जौन की पूछा था
1: जौन तुम बात बताए रही हो
0: लेकिन मजा बहुत आवा
1: लेकिन यू तो बताओ कि जब आम तोड़े के लिए तुम चढ़ी रही हो अमिया उनका जो ना टिकोर सब सोतापन से बताए थे अवधि में कहा जाता है कि आम की केरी अमिया है तो ये छोट छोट अमिया होती ना एक तोड़े के मजा अपन होता है
0: और नहीं, और अपने बात नहीं दूसरे के बात
1: और बताए ये अंजू नहीं बताई ना आपका की पंचे का की ये गिर भी पड़ी रही गोल मोल करके ये बात बताया रही की कोनो का चोट लग गई रही कोनो गिर पड़ा रहा तो नानी जौन है वही डंडा रहा उका खपच्ची कहा जाता है संटी कहा जाता है और संटी जल्लाई के जो पीटिन है तो इके जो उन्हें
0: जी सारी पोल खोल दे कहे जी चुप रहा भाई
1: तो बरेता बन गया है इके हां
0: अरे जी सब नहीं बता रहे
1: अच्छा अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा ढक ले चलो थोड़ा थोड़ा बता थोड़ा थोड़ा ढक ले चलो ठीक
0: वैसे गर्मी छुट्टी मजेदार बहुत होते हैं और मामा के यहाँ जाए वाले प्रोग्राम बहुत मजेदार होते हैं और लेकिन ये बात एक बताई दी जब मामा के यहाँ पहुंचा थी नंद हरे और जो है मतलब अपने लड़किया बच्चा के लेके तो यो मतलब डिवाइड कर लेके चाहिए कुछ दिन मामा खिया चला जा कुछ दिन चाचा खिया या ताऊ जी खिया चला जा
1: सही है लेकिन देखो पंचे का मतलब गर्मी की छुट्टी में जैसे लड़का बच्चन का लेके तुम कहीं जाए के प्लान बनाए रही हो लेकिन एक बार बता दे कि सब कुछ सही है लेकिन गर्मी का ख्याल रखो सूती कपड़ा पहनो खुद का जौन है पानी से बिल्कुल तर बतर रखो मतलब अपने शरीर के अंदर से है ना ढीला ढाला कपड़ा पहनो 12 से 4 के बीच में घर से बाहर ना निकलो धूप में निकलत बस मतलब आप पंचे का करे का है सर का ढके का है और पानी और जो तरल पेय है उनका बढ़ाए का है भरपूर पिए का है और दिन भर में कहा जाता है डॉक्टर बताते हैं डॉक्टर भैया बहनी बहुत से कार्यक्रम भी आप सुने हो कि 8 से 10 गिलास पानी जरूर पियो और अगर घरेलू अगर उपाय बताई तो शरीर के अंदर से ठंडा करे के लिए नींबू के शरबत है नारियल के पानी है छाछ है मट्ठा है लस्सी है बेल के शरबत है ये सब पियो तरबूज खरबूजा है खीरा ककड़ी संतरा और देखो अब यहू आई सहतूत भी आवा है सहतूत में बतावा है शायद हाँ सहतूत है और एक छोट छोट आवा थे ना फालसा जो ने जो छोट छोट होती जो मटकी होती उमा डालत है उका हिलावत है आए फिर उका देत है पत्ता पे जो कितना नीक लागत है तो ये गर्मी से बचे के लिए प्रकृति जो है सारे उपाय सही से और हम पंचे का उका अपनाए का है हल्का और आसानी से पचे वाला भोजन करे का है ज्यादा मसालेदार जो ने शाकाहारी है वो तो ठीक है लेकिन जो मांसाहारी है थोड़ा कम दूरी बनाए लो भैया है ना तली हुई बासी वासी खाए से बचो बाहर के कटा हुआ फल खुले में मिले जो जूस मिलत है ना उसे पिए से बचो जो उन्हें रस मिला था ई कहा जाता है और जो उन सिल्ली की बात किया तो सिल्ली के तो ई है कि जो उन्हें ठेला पे सिल्ली रखी रहती ऊपर खरबूजा तरबूज जो उन काट काट के ऊपर ठंडा ठंडा और काला नमक के छिड़क के दिन जाता है तो उससे भी बचे का है आपका खाए का है तो बिल्कुल ताजा ताजा खाओ काट के खाओ और जो आइसक्रीम है उससे भी बच्चे का जाने कौन कौन सी आइसक्रीम आजकल चल गई है तो मन के पेट के इन्फेक्शन हो सकत है बाहर निकले पहले अच्छी तरह से अपने सर का ढक लो आंखिन के चश्मा लगाओ और घर का कैसे ठंडा रखो घर की खिड़की है दरवाजा है वो बंद रखो पर्दा से ढक के रखो ताकि बाहर की गर्म लू ना आवे और शाम और रात का खिड़की जरूर खोलाओ और देसी तरीका अगर हम मंजू भाई ने बताई तो तेज धूप में खिड़की पे कहा जाता है कि खस के जो पर्दा है वो लटकाए सकत हो गीला करके घर में सादा पानी से पोछा लगाए सकत हो नहाना बहुत ज्यादा ठंडे पानी के बजाय सामान्य जी का खा जाता है नॉर्मल पानी उससे चाहिए और गर्मी से राहत के लिए सबका मालूम है काका करे का है बस करे का है यू ना सोचो आलस छोड़े का है और ठेले वाले से कोनो कुछ लेकर नहीं
0: बाहर खाए नहीं सिंपल सादा घरे दाल चावल दाल भात खा बस बहुत मजेदार रहा हुआ है और बड़े बढ़िया बढ़िया गौनी सुनत रहा 100.7 FM रेनबो पर जहाँ चलता है कार्यक्रम सुगंध माटी की।

0: अब भैया बेना वेना हाँक दियो, पसीना पोछ लियो, है ना। और सुनंत रहा सुगंध माटी की कार्यक्रम जयमा चलता है, अजय हमा सुगंध माटी कार्यक्रम चलता है। अंजू और नीना जी जी हाँ हमारे साथ है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले तैया है, तनिक ब्रेक ले और तुरंत लौटा भाई, तुरंत सुनत रहा।
1: फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
0: हाँ देखा, कहे रहे ना तुरंत लौट, अब देखा लौट आए है जी जी।
3: तो कहाँ जाइए,
0: आपको छोड़ के जाए
3: नहीं, स्टूडियो छोड़ के कहीं जाइए का
0: कत्ता नहीं जाए,
3: ड्यूटी लगवा के नहीं ना का।
0: अरे जी जी 12 बजे तक यही चपकी रहा है हम। हाँ
3: चपकी
0: कुर्सी बेल्ट पेटी वोटी बांध के बैठी यही,
3: और जाना जाने हम का तुम्हारे लई के कहा है, नहीं तो जाना
0: बतावा बताओ,
3: हम तुम्हारे लई के आए हैं ना अमिया के पना डाल के, है ना। तो पिए अभी जब पूजा ही कार्यक्रम तो पिए अच्छे से,
0: अब तो मने ना लागे कार्यक्रम
3: जी का कहा जाता है कि हाइड्रेट रहो, आज तुमरे वजह हम लाई क्या है गलका जाना थे ना गलका का।
0: हाँ हाँ जानी थे जी जी,
3: अरे जो बंचे पानी आता है, जो बंचे नहीं जाना थे गलका वो जान ले कि गलका होत का है, गलका होत है आम की लौंजी कहा जाता है, गलका का की पुदीना की चटनी है और आम की लौंजी है, गर्मी का सब भोजन है, ये सब खाओ, खिचड़ी है कचौड़ी है गर्मी की बेहतरीन पारंपरिक थाली बना थी। और गलका अगर बनाए का है, देखो सब पंचे वैसे जानते हैं कि आम की खट्टी मीठी चटनी जो खाए के स्वाद का बढ़ाए देती, देखो आम का काटा
0: लेके
3: आम का काटा जाते हो जरा से कल्हार ले है छौक ले छोटा चम्मच एक आधा कलौजी डाल दे जीरा डाल दे और गुड़ अपन मीठा के अनुसार जितना आपका खाए पिए का है और रूखा चढ़ाए दे, जब पक जाए तो उम्मा आप थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो जाए उम्मा मेवा जरूर डाल लो, है ना, मेवा हमका बड़ा नीक लागत जाने।

0: बचपन से हम का खात रहन बहुत चिलगोजा गोजा खात रहन
1: हाँ।
0: और अखरोट अखरोट इतना खाएन कि हम रहन जम्मू कश्मीर में
1: हाँ।
0: है और वन रहन तो हम खूब खात रहन कहा जाते उससे दिमाग बहुत तेज होते है तो हमारे दिमाग जौन हमारे आशा के अनुरूप बहुत तेज दौड़त है और
1: आशा के अनुरूप की आशा के विपरीत
0: दौड़त है
1: हाँ।
0: और देखो पंची आज हम बताए दे बिल्कुल आलस वालस छोड़ दे मंडी अगर जाए रहे हो कौन सब्जी मंडी या आपके घर में खेत आपके खेत खलियान है आप ग्रामीण क्षेत्र से कार्यक्रम को सुन लो सुन रहे हो तो लिखा हो कि कैस लग रहा हमका मेल करो और ये बताओ कि कौन कौन बनाई से अपन घर में गलका है ना तो आप गलका अगर बनाए नहीं हो तो बनाओ ये स्वादिष्ट होता है गलका और हम आपको यह बताए दे कि के साथ जो उन्हें चना की दाल की कचौड़ी होती वो खाई जाती लेकिन चलो उनका बहुत
1: ज्यादा तेल मसाला ना
0: डाला तेल
1: हाँ।
0: मसाला ना करो हल्का हल्का ऊपर तेल लगाओ सरसों के तेल या तवा पे अलट पलट कर ले गरम गरम खाओ जौन चीज खाओ गरम गरम खाओ और खाए के पहले हाथ वात नीके तरीके से धोए ले
1: और का,
0: हाँ, हाँ। नहीं तो जाने तो क्या होता है इन्फेक्शन संक्रमण है ना
1: बहुत इन्फेक्शन होता है जी जी इतना सुंदर सुंदर जो रेसिपी बताए दे है ना तो अब मुहम पानी आवत है का बताई बताओ
0: लेकिन ये बताओ की मोगरा की चमेली की भीनी भीनी खुशबू कैसे आ रही बहनी
1: अब ये तो आपके नाक ज्यादा तेजी है
0: हाँ
1: कहाँ से आओगे
0: अरे हमका लग रहा है कि तुम फूल रखे हो सुबह जब आई हो आठ बजे मतलब आठ बजे पहले आई हुई है जो कार्यक्रम की शुरुआत
1: हमरे जन छोट के बगिया है घरे में ओमा लगाए हैं अब बहुत ध्यान रखी थे पेड़ पौधन का चिड़िया उड़िया का सवेरे पानी उन्हें दई के सब आई थे हाँ।
0: बड़ा अच्छा करती हूँ जैसे देखो अंजू बहनी प्रकृति के संतुलन है कि चिड़िया चिरौटा जो चिड़िया बरैया हो थी या फिर जौन भी पशु पक्षी है ये सब प्रकृति में संतुलन बधे हैं और ये ना सोचो कि मनाई मनाई का केवल धरती या प्रकृति पैदा करी से इनका भी बराबर से पैदा करे से
1: सही
0: और हाँ। यही कहा जाता है कि इनके भी उतना ही ध्यान रखो जितना कि आपन रखो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: और देखो ये मोगरा चमेली की हम बात किया है तो हम तो देखा है कि तुम्हारे वन भी हमरे वन भी ये जो ने गुड़हल के फूल है वो बहुत सुकून दे सदाबहार के बिना ज्यादा पानी के हरा
1: भरा सब लगाए
0: लगाए हो ना मऊ लगावा है और गर्मी में जो ताजे ताजे फूल हैं उनका मुरझाए से बचाए के लिए उनका हमेशा साफ और ठंडी जगह रखा हो ठीक है और इका अपने आसपास भी रखो उससे क्या होता है कि आपका मन जौन है वो संतुलित रखत है और मन में दुर्विचार का दूर करत है काहे से गर्मी जब दिमाग पे चढ़त ही ना तो जानो कि बर्फ की याद आती
1: है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहो और गर्मी जब ज्यादा चढ़े ना तो गगरी भरे के लिए जब पानी वाली भरे खोए ना तो तनी सहयोग कई दे जाया है अकेले ने उन्हीं के जिम्मा ना दिया नहीं तो फिर जो उन्हें का हो ले सुना गौने में सुनाई दी
0: ऐसा ना हो कि तुम्हारी गगरी को कोनो फोड़े के लिए पीछे पीछे आए
1: कन्हैया है कन्हैया वैसे हिया जब बात होती है वो नाजुक कमरिया के
0: चलो भाई
1: सुना

0: अब भैया नाजुक कमरिया कहूँ लचक वचक जाए ना, इतना अत्याचार करिए तो नैहरे चली जाई है हाँ, तो पता लागे फिर।
1: हम तो ध्यान से सुनत रहे कि नाजुक कमरिया रिसिया जने काका इम्मा, थोड़ा सा तुम तड़का जाऊन है, थोड़ा सा भोजपुरी की बधाई दिए।
0: अरे सब ये अवधि भोजपुरी से मौसेरी बहन यही ना आई जाती, गर्मी छुट्टियां चलती है
1: समझो जैसे हम अवधि है तुम भोजपुरी।
0: बिल्कुल
1: देखो अंजू बहनी हम लोग टाइम बिल्कुल नष्ट ना कर, अब कैसे टाइम अगर इधर उधर होता है ना तो बहुत पंचे नाराज हो जाते हैं। ये देखो बहुत सारे हमारे पास मेल आए हैं, ये शैलेश कुमार भैया इनके मेल पढ़ा जाए।
0: अच्छा मेल आईडी बताने की जरूरत नहीं रहते, लेकिन जो नए श्रोता पंचायत हैं उनके लिए बता देते हैं, fmakashwanilakhnow@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है। कौनो बात कहा चाहता है कार्यक्रम से संबंधित, हमारे सबसे संबंधित, तो आप जरूर लिख के भेजा। अके के मेल आवा जी,
1: हाँ ई आवा है नीना दीदी, अंजू दीदी का राम राम, सभी श्रोता पंचन का भी राम राम। आज के जी मेल बहुत अच्छा लगा, अच्छे गाने सुगंध माटी कार्यक्रम के इंतजार करत रहे, आपकी आवाज सुने के और सारा पीहू मन रोशनी बबीता, अच्छा अच्छा ये नाम है सारा पीहू मनु रोशनी बबीता स्नेहा
0: सब जनी सुनती
1: वंदना हाँ। पूजा अनीता तनु सब लोग कार्यक्रम सुन रही, रंजीत भैया आपका चरण स्पर्श बोल रहे हैं, अंजू दीदी से कह दो जल्दी जल्दी आवा करो और भूला ना करो अंजू भाई।
0: अरे काहे भूला बाबू,
1: अच्छा एक और पढ़ दे, विजयपाल हाँ। यादव भैया आए रहे जब भंडारा हुआ रहा ना अभी मंगलवार का,
0: तो आपके साथ डाले रहे सोशल मीडिया,
1: बिल्कुल विजयपाल यादव इनके रेडियो क्लब है, उनके साथ साथ देखो पोस्टग्राम व पोस्ट ललुआ लखीमपुर खीरी के हैं, इनके साथ बबलू यादव संगीता शर्मा और सब मित्रगण। लेकिन है कि कार्यक्रम प्रस्तुत करे वाली दीदी का परिणाम पाए लगी, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रोचक ज्ञानवर्धक है। अब हम खेत में भैया ध्यान रखे हो, मिठास की फसल गन्ने की गुड़ाई कर रहे हैं और सब लोग सुगंध माटी के कार्यक्रम के आनंद ले रहे हैं, आप लोगों की मिठास भरी आवाज सुन के धूप जाऊन है दूर भाग रही, आप दिनों आकाशवाणी के नगीना बहुत मधुर बोलती हो, धन्यवाद थैंतू भैया।
0: अब ध्यान रखे ऊंचा बांधे रहे हो,
1: और यदि हुई सके तो जेठ की दुपहरिया में पाँव जलने वाला गीतों सुनवाए दो, बहुत गर्मी पड़ रही।
0: अच्छा चला देखा कोशिश की जाए, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद नीलू बहनी का भी नहु का। और देखा एक ऐसी जब मुनेश कुमार भैया का लिखा था, कहा था कि शादी वाले पंडाल तो उजड़ गए ठंडक पाकर, अब तो सूरज राजा लगे हैं सबको तपाकर है, और कहा थे कार्यक्रम सुगंध माटी की प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है इनका, और कहा थे शादियों का झोंका तो लगभग निपट गया मगर गर्मियों का झोंका बड़ी मुश्किल से डाले हुए मुश्किल में डाले है। हाँ भानपुर हरहुआ जिला लखीमपुर में सुनता है।
1: देखो विकास है कहा लिखी है, लिखी ने सफीपुर जिला उन्नाव से लिखत है कि कार्यक्रम लाजवाब चल रहा झक्का सब सांग जौन है सांग सांग के सलेशन बहुत निक है।
0: अच्छा मतलब गौ नहीं आए हाँ। अच्छा देखा हम सब अंग्रेजी बोल रही थे।
1: अच्छा थोड़ा थोड़ा हम लोगों का आती हाँ। है ना ये देखो प्रमुख कुमार है
0: हाँ,
1: अंजू दिदिया नीना जीजी गुड मॉर्निंग राम राम नमस्कार कैसी हो दुनो, लेकिन 28 अप्रैल को लुधियाना से अपन गाँव आए रहे, 29 तारीख का बाइक से हमारे एक्सीडेंट हुई गया, हमारे चेहरे की हड्डी टूट गया, ऑपरेशन था, अब तक टाका नहीं कटा, चेहरे पर पट्टी बंधी भाई है, यही कारण आपके प्रोग्राम से नहीं जुड़ पाए, 27 मई का टाका कटी, यही समय हम अपन घर के बरामदे में लेट के आपके प्रोग्राम बड़े स्पीकर पे सुन रहे हैं भैया, बड़ा अच्छा लग रहा है भैया, राम राम और बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओ, हमारी दुआ है तुमका और बिल्कुल ठीक हो जाओ जैसे पहले रहे हो। यही भी देखो प्रमुख कुमार भैया कहा जाते कि हेलमेट लगाए के चलो, सड़क पे निकलो तो बहुत भड़बड़ाओ ना, घर में भी तो मतलब पटाए के बैठा था तो बाहर जब निकला था तो कहा इतने रोड रेस में लग जाते हो, ये सबके लिए संदेश है जो जो हमारे श्रोता पंची कार्यक्रम सुन रहे हैं कि जब सड़क पे निकलो तो ये जरूर ध्यान रखो कि घर में कोई तुम्हारे इंतजार कर रहा है, तुम्हारी फैमिली।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और प्रमुख कुमार भैया हमारी पूरी टीम की ओर से आप सबका आपका शुभकामना, बहुत जल्दी नीक हो जाए और ध्यान रखे अपन। और देखा रमा शंकर भैया हमका सुनता है शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में और गुड मॉर्निंग भेजे हैं बस खाली, और तो कुछ नहीं लिखे हैं लेकिन कार्यक्रम सुनता है। मोनू भैया का कहा था माटी सुगंध प्रोग्राम में अंजू बहनी और नीना बहनी का प्रणाम, और हमारे नानी की तरफ से भी राम राम, अवधि भाषा में ये प्रोग्राम बहुत नीक लागत है, सुनने में आनंद बहुत आवत है सबका, और नौतपा के बारे में नानी जी बतावत रही, नौतपा भी बहुत जरूरी होते हाँ, दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताप दो की बाजी जल रहे दो बिस्वर दो वाय, और कहा

0: बात है कि जैसा कि प्रसिद्ध दोहे में बतावा गया है कि अगर ये 9 दिन न तपे तो चूहों, टिड्डियों, कातरा, कीटों और विषैले जीवों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि वे फसलों और इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। प्रकृति इस तपन के जरिए उनकी आबादी को नियंत्रित रखती है।
1: देखो अंजू बहनी, यही बात हम कहा कि जो प्रकृति है वो सब चीज के नियंत्रण रखती है, और प्रकृति जौन है वो संतुलन है ना। तो जैसे नानी बताई, ये घर के बड़े बुजुर्ग जौन है वो बहुत जरूरी होते हैं। यही ने कहा जाता है संयुक्त परिवार में रहो और सुख दुख जौन है।
0: राम राम भाई, नानी
1: राम राम। इन नौतपा के बारे में बताए, इंटेलिजेंट नानी।
0: सही कहे हो, इंटेलिजेंट नानी है नानी। हमरे सबके तरफ से धन्यवाद बोल दिया।
1: हाँ, ई अशोक कुमार है, राम राम लेकिन है रायपुर उडारा मितवली लखीमपुर खीरी से, लेकिन है लेकिन है कि का बालिस्तर राज चाचा नियामत रेडियो सुनते हैं। हर घंटे में देश विदेश की जानकारी मिलती है। प्रोग्राम अच्छा चल रहा, मैं पढ़ने का आजाद क्या अंदाज अच्छा चल, मेरे पढ़े का अंदाज अच्छा है। सांग जो उन्हें पसंद आ रहे हैं भैया, तो उन्हें हम लोग सांग बजाई था, सांग जी का कहा जाता है गाना गौना, वो यही ले बजाई जाती कि तुम आप पंचे जो उन्हें पसंद रहो। हम लोग जो 100.7 FM रेनबो पर आथन, तो आप सबका पसंदता बांटे के लिए आता है, और ये प्यार मोहब्बत बांटे की चीज होती है। आज के दिन आप दो चार मनाई का पकड़ लो और उनका प्यार है बांटो, है ना जरा। लेकिन देख लियो कैसा प्यार है, मतलब कोनो का ऐसा वैसा ना, कोनो को छेड़े उड़ो ना भैया। नहीं कहो कि मीना जी कहीं रखे प्यार बांटे चलो। एक गाना है हम तो याद किया, प्यार बांटते चलो।
0: लेकिन ए जीजी, प्यार प्यारी वाली जो हमारे मतलब जैसे श्रीमती जी ना श्रीमान जी के, और नैहरा जब चली जाती वैसे तो सब सोचते थे मेरी बीवी मायके चली के बड़ा प्रसन्न होता है, और दुनिया दिन में औकात याद आ जाते हैं।
1: अनिता कहो ये शब्द के इस्तेमाल न करो,
0: अरे मतलब पता चल जाता है कि हमरे हमका जो बना बनावा खाना मिल रहा है, अब खुदे रोटी बेलक पड़ती है, मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है। एक दिन लेकिन बड़े आनंद से पेले थे, और बात फिर याद आवा थी, ए मैडम जी कब आ रही हो वापस।
1: ये जो ने टिफिन विफिन मिल जाता है ना, ये मेरिया घर की बनाए के दे थी उम्मा, देखो खीरा काट के रख दे, मूरी काट के रख दे, टमाटर काट के रख दे, एक नींबू आधा काट के रख दे, और ये सब एक मेरिया एक सुगढ़ ग्रहणी कर सकती है। और ऐसे ही देखो एक मेल फिर आएगा, ये मोहम्मद आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से सुन रहे हैं। कहीं ने सुगंध माटी की कार्यक्रम प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लगा थे, ये प्रोग्राम सुन के हमका अपने गाँव की याद आ जाती, जो गाने बजाए थे बिल्कुल गांव पहुंचाए देते। मैं बाराबंकी के छोटे से गांव रजा कटरा अहमदपुर का हूँ। धन्यवाद भैया, आप हमका इतनी दूर थे, यानी मोहम्मद आसिफ जी हैदराबाद तेलंगाना से हमका मेल करें। ये सावित्री देवी यहू का पढ़ लो बहनी।
0: अच्छा देखा, हम तो मेल पढ़ रहे, हम तो सोचते रहे कि एक इट्ठी गाँव नहीं सुनाई दी पहले।
1: अरे सुना
0: पहले गाँव नहीं सुनाई दी, फिर बाकी सबके मेल पढ़ी जाए। तो चला गाँव नहीं सुना, और हमें कहा जाता है यू सुना फिर है।

0: घोड़े गिरे तो हाँ बताओ नहीं हेरे ना जाओ का
1: कहा देखो अंजू बहनी तुम एक बात शुरू में करे रहे हो कि जब मैके मतलब जब हम छोटे रहे तो ऐसा धमा चौकड़ी करत रहे अपन घर मनानी के घर जाते रहे और बड़ा मजा आता रहा मौसी उसी तमाम तने मतलब तमाम मौसी नहीं तमाम तने की नहीं वैसे तो तना तना के मनाई
0: नहीं हमारे छठी मौसी
1: तरह तरह के मनाई होते हैं उनके विचार अलग अलग होते हैं लेकिन बात वहीं तक नहीं ना देखो मनाई बड़ा होता है बेटे वह बड़ी होती है उनकी शादी ब्याह होता है वो अपन नैहर का छोड़ के अपन ससुर जाती है और एक बात हम कहना चाहते हैं अपन सोता पंचन से कि देखो जब बिटेवा का इंतजार कर रहे थे कि बिटेवा आई तो फिर यही सोचो कि जो आपके घर में बिटेवा आई है ना बहुरिया बनके वहू का उस समय भेज दो

0: अलग अलग होते हैं, लेकिन
1: हाँ
0: बात वहीं तक नहीं ना। देखो मने बड़ा होता
1: हाँ
0: है, बेटे वह बड़ी होती हैं, उनकी शादी ब्याह होता है, वो अपन नैयर का छोड़ के अपन ससुर जाती हैं। और एक बात हम कहना चाहते हैं अपन सोता पंचन से कि देखो जब बिटेवा का इंतजार कर रहे थे कि बिटेवा आई, तो फिर यही सोचो कि जो आपके घर में बिटेवा आई है ना बहुरिया बन के, वह का उस समय भेज दो,
1: है
0: तो नैयर जायका है। ये सब तालमेल से घर परिवार की जो है गाड़ी चला थी। आप पंचे यही सोचा था ना कि आजकल लड़का बच्चा जो उन्हें साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी लड़का बच्चन के विचारन से भी अपन विचार का मेल खाओ, मतलब
1: हाँ,
0: कि अपन उनके
1: है।
0: विचार को खाओ, मतलब एक बीच का रास्ता निकालो। ऐसा थोड़ी होता है कि केवल अपन बिटेवा का इंतजार और का कहते बहुरिया से कि तुम खाना बनाओ और खाना तुम हमारे बिटिया आ रही, दामाद आ रहा, जमाई आ रहा है, तो कौन खाना कौन बनाए। ये सब बातें अच्छी नहीं ना, घर परिवार की गाड़ी तबे चलती। और एक और बात बता दी कि संयुक्त परिवार टूटे का यही एक नतीजा, यही एक कारण है कि हर इंसान ये सोचा था बिटेवा तो अपन ही, लेकिन बहुरिया जो उन्हें पराई है।
1: देखा जैसे प्रकृति के संतुलन की बात करूं ना जी, वही तरह परिवारों में संतुलन बहुत जरूरी है ना। अच्छा यही कहानी बयां करती है ये वाली गांव नहीं एक सुनाई और बाद उबे तो बहुत श्रोता पंजन के ईमेल
0: हाँ,
1: है,
0: ठीक है,
1: वो बजावा जाए, सुनावा जाए।

0: समझू कि ना।
1: अरे भैया चेन और साड़ी वाले ना दे, भले तू 10 रुपया विदाई के धई दिया ओकरे हाथे में है, लड़के बच्चा के बहनिया के हाथे में वो, लेकिन प्रेम सम्मान रखा। हाँ,
2: लेकिन, हाँ। लेकिन अंजू बहनी हम तुमको ये बताई कि हाँ। कुछ बहनिया ऐसी होती हैं कि लिस्ट लेके होती हैं कि हाँ। यही सामान लेवा जाए, मतलब लेवा जाए, है ना। मतलब एक ताना से कहा जाए तो मुँह से आती है ना, इनका कहा जाता ना औदी में के मुँह से थी। तो देखो बहनियन के हम कह रहे ना, हमारू कोई की बहिनन की हम कहा प्यार मोहब्बत आपस में बना रहे और अच्छे विचार रहे, और यही मतलब यही सही है। और ये जो उन्हें गिफ्ट विफ्ट होता है, चैन दे दे, अंगूठी दे दे, पायल बिछिया भौजाई का मतलब कहो कि ये बड़ी नीक लग रही यही उतार के हमका दे दे, तो अच्छी बात है ना।
1: अब भाई भौजाई जो उन प्रेम से अपनी खुशी से दे दे वो हम खुश रहो।
2: एक बात और कहना चाहता हूँ, जो तो तुम घर परिवार की बात बता दियो कि भाई भौजाई जी मतलब जो जो कुछ भी दे दे उपहार स्वरूप बहनी का, तो उम्मा खुश रह के चाहिए। आजकल जो हमारे बहनी लोग हैं बड़ी बड़ी, देखो तुम रील वील देखे हुई हो कि मार बाइक पे और गाड़ी पे बैठ के चौपहिया पे और लहंगा वंगा पहन के झकास रील बनाए रही। हम बहनी लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो सब कुछ करो लेकिन अपन जीवन की रक्षा सुरक्षा सब आपे के हाथ में है। ये जो रील के लिए ये कौन कौन के कितने व्यूज बढ़ाए और कितने घटाए ये सब मैं कुछ नहीं रखा है। जीवन अनमोल होता है, ये सब हमेशा जाने हो, और ये अच्छी बात नहीं ना, कानून के पालन भी करो। रील वील बनाती हो तो है ना, तो
1: सही
2: हाँ ये सब करना बुरा नहीं ना, लेकिन ये जानो कि अगल बगल में 33 ट्रक चल रहा है ना, गाड़ी चल रही है,
1: अपन सुरक्षा सड़क पे चले वाले बाकी मन नहीं उनकी सुरक्षा,
2: बाकी मन नहीं की सुरक्षा। और लड़का बच्चन की अगर बात करी, देखो तुम घर परिवार की जब बात करती हो कि बचपन याद आता है और पेड़ के आम के पेड़ की डाली जो उन्हें टूट गए रही, धमाके सब गिर गए रहे, और नानी जो उन्हें संटी से बहुत हम पिटाई करे रहा, लेकिन इनके साथ साथ यू है जो लड़का बच्चा है उनका संभाल के रखा हो। इस समय गर्मी बहुत है, जो चुप्पे से निकल के तालाब वालाब में नहाए ना जाए,
1: नहीं
2: पता चला कि पता चला कि गर्मी की छुट्टी मनाए आए हैं, नातिन है पोती है कोई भी।
1: अच्छा ज्यादा मन इकट्ठा होते तो लड़के बच्चन के लापरवाही हो जाए,
2: लापरवाही हो जाती, लड़का बच्चा भी यही की एक रत्ता ढूंढ है कि हम इधर उधर हो जाए, और सब अपन देखो सब अपन कम्फर्ट जोन जोन है कि जिम्मा उनका मजा आए। दो चार लड़का बच्चा छह सात जहाँ घर परिवार के बराबर के मतलब हम जोली के भाई तो वही करफ है, तो लड़का बच्चा के जरूर ध्यान रखे हो, खान पान के ध्यान रखे हो, और देखो ये मेलों के ध्यान रखो।
1: अरे दैया जिज्जी का बताई, सावित्री देवी के बेल आप पढ़े वाली नहीं ना, का लिखे हैं?
2: हाँ सावित्री देवी लिखे है, देखो विविध भारती भी करते हैं, गुड मॉर्निंग कैसी हो दुनिया, और ये लिखे है अर्जुनपुर से, बरगदी अर्जुनपुर है, भरतपुर इनके गांव है, और वन से लेकिन कि बहुत अच्छा नीक कार्यक्रम लग रहा, भगवान हम लोगों का सुखी रख कर, हम लोग सुखी रहना चाहते हम पंचे, हम लोग सुखी रहना चाहते तुम आप पंचे कभी सुखी रहे के लिए हम लोग इनसे
1: और का
2: आशीर्वाद दे।
1: और कहा थी दीदी वाला गाना ऐसा कबो फिर से सुनवा दे जो मैं सब भगवान के नाम, अरे बिल्कुल सुनोगे अगली बार आओगे तो जरूर सुनोगे। अच्छा कोमल तिवारी बहनी कहा थी नीना दीदी अंजू दीदी बहुत बढ़िया नोक जोक आपकी लग रही है, बड़ा नीक लगता है। आप सभी को प्रणाम भेजे हैं कैसरगंज बहराई से कोमल तिवारी जी,
2: कोमल तिवारी जी भेजी नहीं देखो मोहम्मद आसिफ भेजी,
1: इनके मेल आप पढ़ चुके हैं,
2: मोहम्मद आसिफ का फिर से आएगा मेल,
1: अरे भैया दाई मेल कर रहे थे,
2: अरे हद धोई गई भैया, इक्के नाम करो, अजय सिंह दीपू है इटाहुआ कैसरगंज बहराई से, गन्ना के खेत के पिक डाले ना, लेकिन खेत में गन्ना के खेत है पानी से सिंचाई कर रहे हैं, बेल खाए रहे हैं, सुगंध माटी के आनंद ले रहे हैं, श्री मध भगवत कथा के श्रवण पान करथन, और कल से आरंभ हुई कथा भैया राम राम हम की तरफ से एक मतलब हम प्रणाम कर लियो,
1: जमाए कथा हाजिरी लगा दियो,
2: हाजिरी लगा दियो, बजे सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच के हैं।
1: अच्छा मोहिनुद्दीन कोडरी से खैराबाद सीतापुर से सुनता है, नमस्कार भेजे है, कहा था प्रोग्राम धमाकेदार चल रहा है,
2: अरे भैया कितना
1: थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना बनता है,
2: बढ़ाए दो भैया बढ़ाए दो, लेकिन ये देखे कि ट्रैफिक वैफिक पर तो नहीं है, कान में लगा के सुना तो
1: मोहल्ला वालन का जो है ना दिक्कत हो रहा है।
2: गुलाबशाह सिद्दीकी है लेकिन है कि नीना अंजू दीदी नीना दीदी को नमस्कार और अच्छा लग रहा है गलका, हाँ कहीं ना कि हमने
1: मायके गई थी,
2: हाँ, मायके गई थी और खाई ली ना गलका, बहुत अच्छी बात
1: अम्मी से बनवाया रही,
2: हाँ,
1: एज गुलाबशाह बहनी आपका नहीं बनावे आते, देखा नीनी नीना जी रेसिपी बताए दे रही
2: है, मिसेस गीता सेठ है एफएम की दीवानी लिखी है, ऐसे लिखे न अमिया की गलका बनाए रही रहन हम, और उनमें गुड़ धनिया मंगरेल सौंफ लहसुन डाल के बहुत नीक बन रहा। बहनी देखो लहसुन तो हम नहीं सुना है लेकिन अब तुम लहसुन डाले हो तो तुम जानो, हर चीज में लहसुन नहीं डाला आ जाता है और खाए रन बहुत बहुत नीक लग रहा है। अरे नीक तो लगी लेकिन लहसुन हम नहीं सुना भैया, कौन ऐसी रेसिपी हो तो बताए कौन मेल करके की गलका मगर लहसुन, ये तो बड़ी बात है भैया।
1: अयोध्या प्रसाद वर्मा भैया कहते हैं कि आप लोग जिस तरह बात कर रहे हैं हमें जानकारी दे रहे हैं मुंह में पानी आ रहा है, रामपुर कटरा बाराबंकी में बताओ।
2: पिंकी बारी बहनी है लेकिन है कि धमाल जेठ के घाम में दाल भात के स्वाद निराला लागे, सत्तू के घोल से तन मन ठंडावा पावे, ननिहाल के अंगना में बचपन फिर मुस्काए, अमवा के डार तले बैठी मीठ आम खाए, अंजू मैम और नीना मैम के बतियन ऐसन प्यारी जैसे लू के बखत ठंडी छाव नियारी।
1: कहा सुंदर सुंदर मेल कई दे बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी बहनी। अच्छा जावेद अख्तर भैया रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ में सुनता है, जानती है कहते हैं शमसुल कमर राही बेगम रुखसारो सुनता है बहुत ध्यान से, हम दोनों जनी के बत कही सुनता है और इतनी खुशबू बिखेरत है कि मन तन मन सब तरोताजा हुई गवा है बताओ।
2: और देखो ये राम शंकर, देखो राम शंकर जी कहाँ से, अच्छा बाराबंकी से। राम शंकर जी नौ का कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये है सुगंध माटी कार्यक्रम में लिखी ने आज की चर्चा सुन के बहराई से एक पैगाम, आदरणीय एफएम रेनबो की टीम राम राम नमस्कार, बहराई से आपका श्रोता माधव राज मेल भेज रहा हूँ, अभी इस वक्त सुगंध माटी सुन रहा हूँ, आप लोग आम के गलके पर चर्चा कर रहे हैं सुनकर मन गदगद होगा, भैया गलका हम लोग को अच्छा लगा था। अच्छा हमको ये सुनकर बहुत खुशी भाई कि आप लोग इस स्वाद की बात करो, संयोग देखो कि आज हमारे घर पर बड़े चाव से गलका बना हुआ।
1: अरे तो ये कितने जने के लिए गलका बन गया।
2: और अभी हम रेडियो सुन रहे हैं साथ ही साथ आपके प्यारे प्यारे कार्यक्रम की सराहना करत भाई मेल लिख रहे हैं, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग एक साथ बैठ के अपन माटी के खट्टे मीठे स्वाद के आनंद ले रहे हैं, सहज कर रखा था हम तुमरे मतलब सुगंध माटी की जो कार्यक्रम है और हमारी संस्कृति हर एक स्वाद का ही सहज के रखे की बात दिल से दुआ, मेरी सुगंध माटी का के मतलब इस अंदाज को आज के कार्यक्रम लगा है झकास, हमारी संस्कृति और खान पान की सोंधी आदन का रेडियो पर इतने खूबसूरत अंदाज में जिंदा रखे के लिए पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब का ये सुरीला सफर हमेशा यूं ही महकत रहे, आपके अपना हम नवा श्रोता
1: माधव राज भैया पता ग्राम गोबरहा थाना रानीपुर जिला बहराइच से, बहुत बढ़िया बात कही भैया, देखा इतना मन प्रसन्न हो गया कि बढ़िया गौ नहीं सुनाई देते हैं आप सबका।

0: अब भैया देखा हर प्रांत के हर देश के हर जिला के कौनो न कौनो विशेषता होते हैं और कुल सब जगह की सब चीज नीक होते और कार्यक्रम सुगंध माटी की में यही लिए हम सभी अवध में सब कुछ समेट के लेके आई थी ना जीजी।
1: बिल्कुल अपनी देखो माटी की सुगंध का भूले करना चाहिए और यही तो हमारी पहचान ही अपनी संस्कृति की। और ये जानो कि जो मनाई अपनी जड़न का अपनी पहचान का अपने घर परिवार का भूलत है वो कहीं प्रसन्न नहीं रहा था अंजू, ये बताया जाइए हम।
0: बहुत बहुत सही कहो ए जी जी, मेल तो बहुत आए गए हैं सब
1: प्रोग्राम बहुत बढ़िया चल रहा, गाने का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, जुगलबंदी कमाल झक्कास लग रही है।
0: धन्यवाद। अमरावती महाराष्ट्र में सुना थी हमको।
1: अच्छा अमरावती से। अच्छा ई सुगंध माटी हिस्टोरिया चौकस झक्कास बिंदास और दिल भी भेजी ने हमरे पास भी दिल है भैया लेकिन दिल एक होता है उदय चुके हैं रोशनी रावत ये लेकिन अंजू जी
0: कहो बात करे तू जी सुना तो है
1: जाना एक दिल होता है एक प्रेम होता है एक
0: जगह दे देवा कर मन से लेकिन बाकी सबके लिए अलग सब भाई बंधु
1: भाई बंधु है। ये देखो अंजू जीजी और नीना जीजी का राम राम प्रणाम और आपके ऐसे प्रोग्राम में चार चांद नहीं पूरा चांद सुगंध माटी में लग गया, बहुत अच्छा लग रहा, नीक लग रहा, गौना ही बहुत लाजवाब, सुन के मन प्रसन्न है, बस सुनत रहो। और अंजू रावत ग्राम वापोस बमना तहसील सफीपुर उन्नाव से लिखिन है, चंडीगढ़ से सुन रहे हैं प्रोग्राम और हमारी बड़की नीलू दीदी नीलू शर्मा और छोटी बहन बबीता राव दोनों सुनत है आपका राम राम बोलिन है।
0: अरे देखा बबीता राव आ गई, पता की बेली कला पोस्ट सठरावा गोसाईगंज नवाबक शहर लखनऊ से। अब मैम जी आपका मॉर्निंग से सुनती है, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगे, आपका सुगंध माटी की प्रोग्राम में बहुत नीक लगता है, जब आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, प्रोग्राम हमेशा काबिले तारीफ होता है, अवधि बहुत पसंद रहा इनका कहा थी है, सुगंध माटी की प्रोग्राम सुनना कबो नहीं भूलती, इन्हों सबके नाम लिखती है, मम्मी पापा भाई रजनीश बहन विनीता रोशनी रावत नीलू दीदी सब बड़ी शिद्दत से सुन रहा है, प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं, बस ऐसे में एंजॉय करते रहा।
1: ये देखो विनीत कुमार ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से लिखी है, माटी सुगंध करे वाली दोनों दीदियन का प्रणाम सादर प्रणाम, प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत नीक लग रहा, अरे का बात ही, और हम लोग प्रोग्राम का सुन सुन के आपका राम राम कर जब भैया राम राम राम ऐसे है कि राम तन मा है राम मन मा है और राम राम करत रहो भैया सब का राम राम।
0: और तेज बहादुर भैया भी सुनता है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, इनके मुंह में पानी आएगा वहाँ
1: पानी आएगा गलका गलका सुन के
0: अमिया जामुन कई था बेल सब बहुत सुंदर फल होते सबके याद दिलाए दे नेहा वर्मा भी सुप्रभात भेजे हैं हरदोई से, अर्पिता अर्षित हर्षिता अंजलि सुधाकर कोमल सियाराम गौरपुर बमना खेड़ा जिला हरदोई से, सब सब मजा लेता है।
1: प्रिंसी सिंह भी भेजी है लिखे है विजयलक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से, नीना जीजी और अंजू बहनी का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम बहुत नीक लग रहा, आज लग रहा माइक वाइक कौन रहे ना फाट फूट के हम लोग वहीं पहुंच जाए
0: वहीं पहुंच जाए हम सब इतनी तारीफ आई गया। अच्छा राम मोहन गुप्ता भैया जो है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में कविता भेजे थे, देखा यहू प्रोग्राम में भेज दे कविता, कहा थे सुगंध माटी केर खूब भावे जियारा लुभावे, आप दोनों के बत कही बहुत है भले लागे, कौनो लोक संस्कृति का गीत सुनाए दियो साची कहियो औरा औरो भला लागे मनवा भावे, राम मोहन गुप्त अमर लखीमपुर खीरी से, बहुत धन्यवाद भैया।
1: देखो ये एमके राज हैं, इनके हम लोग मतलब उनका शामिल कर रहे हैं मेल, और भैया देखो हम नाम पढ़े दे रहे हैं कैसे बहुत मेल की है, वर्मा राजेश कुमार भैया है यहू पर नाम भेजी ने, सत्यपाल पाल है यहू पर नाम नमस्ते भेजी ने, और रॉयल अमित यादव है, ज्योति मौर्य है, अदिति सिंह है, और सबका हम राम राम प्रणाम, इतना प्रेम बरसायो कि आज गलका खाए की भी जरूरत नहीं ना,
0: और क्या वो मिठास भूल गया, मेल छूट गया, अगले कार्यक्रम में हम जरूर सबके मेल पूरा पूरा पढ़वे भाई, और नीना जी अगले शनिचर के फिर आऊ है, जावा न करा
1: बच्ची देर देखो मैंने हमका ऐसे न बुलावा करो, हमका बड़ा गर्मी लागत है।
0: अच्छा ए जी जी तब तक गौनी सुनाई तनी तनी गलका निकाल के दे दे खा।
1: अच्छा अच्छा अब देखो देखो कार्यक्रम करे के बाद चाटे हो।
0: ठीक है बहनी, लेकिन जाऊ ना हमारे गलका वलका सब यहीं दे दियो और जो नाम के पना लाओ है। अच्छा हम सोता पंचर के राम राम बोल देते नहीं
1: क्या? देखो सोता पंचर हम तो आपके से कह रहे राम राम और यहां से जा रहे हैं, लेकिन आपका कौन है चैनल पे मिला वो जरूर, अपने स्वास्थ्य के रखो ख्याल, और यही हम बतावा है कि आपका गर्मी से बचे के उपाय करे का है, ऐसा सब व्यंजन खाए का है, भोजन खाए का है जो आपको गर्मी से बचावे और घर परिवार आपके स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना के साथ देव नीना सुनकर
0: का अनुमति, और हमका भी अंजू शुक्ला भी एक कार्यक्रम से लेकिन अगले घंटा रहा, वैसे मत रहा एफएम रेनबो,
1: सबका नमस्कार तो करें नमस्कार।

0: भाई गर्म हवाओं ने शहर को जरूर थोड़ा सा थका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चाय की दुकान पर, किसी पेड़ की छांव में और किसी रेडियो के पास आज भी बातें मुस्कुरा रही हैं। नमस्कार कानपुर, मैं हूं आरजे फरहत, वेलकम करती हूं आप सभी का प्रोग्राम हम नवा में। वैसे ऋतु इस गर्मी भरी दोपहर में अगर धूप ज़्यादा लग रही है तो बस रेडियो की आवाज़ थोड़ी बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगले एक घंटे में हम लेकर आए हैं बातों, एहसासों और सुरों की ठंडी सुपुहार। और आज का हम नवा मेरे लिए और भी ज़्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों इस सफ़र में मेरी हम सफ़र बनकर आ रही हैं आज स्टूडियो में आरजे ऋतु।
1: हेलो एवरीवन, मैं हूं आरजे ऋतु और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फरहत, सच में इतनी तेज गर्मी में अगर कुछ सुकून देता है ना तो वो है अपनों की बातें, हल्की सी मुस्कुराहट और पसंदीदा गाने। तो ये गाने हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, पर आप से ये भी गुजारिश है कि हीट वेव का असर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी पीजिए, बाहर निकलें तो कैप या छाता ज़रूर यूज़ करिए और खाली पेट धूप में बिल्कुल भी मत निकलिए।
0: बिल्कुल सही कहा रितु ने कि खाली पेट धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है। और इस दोपहर को मीनिंगफुल बनाने के लिए आज हम नवा में हम क्या बात करने वाले हैं वो भी बता देते हैं आपको, क्या टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे। तो हम बात करेंगे दोस्तों यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन पे, यानी सेहत और न्यूट्रिशन को लेकर दुनिया भर में चल रही जो ज़रूरी मुहिम है उस पर।
1: साथ ही होंगे कुछ दिल को छू लेने वाले किस्से, कहानियां और कविताएं जो आपको कभी हंसाएंगी तो कभी पुरानी यादों में ले जाएंगी।
0: बिल्कुल, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिजिटल साक्षरता कितनी ज़रूरी, क्योंकि ऋतु आज के वक्त में सिर्फ ऑनलाइन होना काफ़ी नहीं है, डिजिटली अवेयर होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है।
1: साथ ही क्या होने वाला है आज के स्टार्टअप और रेसिपी में, इसे सुनने के लिए कनेक्ट रहिएगा हम नवा प्रोग्राम के साथ, क्योंकि यहाँ पर बातें भी होंगी, सीख भी होगी और साथ होगा खूबसूरत गानों का।
0: बिल्कुल साथ होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक सवाल हमारे लिसनर्स के लिए मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऋतु गर्मी बहुत है।
1: बिल्कुल,
0: अभी जब आप स्टूडियो आए ना तो आपको भी फील हुआ होगा कि भाई जो तपिश है जो धूप की वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है।
1: बिल्कुल बढ़ रही है फरहत,
0: आज का जो टेम्परेचर था वो भी 46-47 डिग्री का अनुमान लगाया गया है, तो इस गर्मी में हाइड्रेट रहना बहुत ही ज्यादा जरूरत है।
1: बिल्कुल
0: राइट,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं अपने लिसनर से ये जानना चाहूंगी कि भाई वो क्या करते हैं हाइड्रेट रहने के लिए, ऐसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन जानना चाहेंगे कि उनके तरीके क्या है जिसे इस गर्मी वो अपना रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो फरहत इसके लिए हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं हमारी ईमेल आईडी, जल्दी से नोट कीजिए, aarkansomedia@gmail.com।
0: फिलहाल अब वक्त है प्रोग्राम के पहले गाने का, सुनिए और इस दोपहर को थोड़ा सा और हसीन बनाइए सिर्फ 102.2 FM रेनबो कानपुर से।

0: वेल रितु, ये गाना कहता है कि लव इज वेस्ट ऑफ टाइम, पीके फिल्म का ये गाना है, लेकिन मुझे हमेशा से डाउट रहा है शब्द के, हाउ लव इज वेस्ट ऑफ टाइम. भाई प्यार वो फीलिंग है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, जो हमें आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, हमारी शक्ति बनता है, हमारी ताकत बनता है. जैसे कि अभी हम कनेक्ट हैं हमारे लिसनर्स से, प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट हैं, और ये प्यार ही तो है जो हमें रोज खींच लाता है स्टूडियो तक.
1: बिल्कुल. लेकिन फरहत, ठीक है, सॉन्ग है और सुनने में अच्छा लग रहा है, बढ़िया है. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
0: बिल्कुल.
1: है ना, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में.
0: बिल्कुल आगे बढ़ते हैं.
1: तो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति उसके

0: स्वस्थ नागरिक होते हैं फरहत। हाँ। और यदि व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी समाज मजबूत बनेगा और देश प्रगति करेगा। लेकिन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कुपोषण।
1: सही कहा आपने, कुपोषण केवल भोजन की कमी नहीं है ऋतु, बल्कि सही और संतुलित पोषण ना मिल पाना भी कुपोषण है। अच्छा, दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। दूसरी ओर असंतुलित खानपान और जंक फूड की वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है, डायबिटीज भी हो रही है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो ये यही कारण है कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2016 से 2030 तक के समय को डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन घोषित किया है।
0: बिल्कुल सही। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य दुनिया से भूख और कुपोषण को समाप्त करना और हर व्यक्ति तक पौष्टिक भोजन पहुंचाना है। इस पहल का नेतृत्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं।
1: जी हाँ, और स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। हमारे खाने में ना अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और प्रोटीन युक्त पदार्थ उचित मात्रा में होने ही चाहिए। लेकिन आज के लाइफस्टाइल को अगर हम देखें तो लोग ना ये पौष्टिक भोजन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि फास्ट फूड हमारी लाइफ में एंट्री ले चुका है।
0: बिल्कुल।
1: तो लोग पौष्टिक भोजन से दूर हो रहे हैं और फास्ट फूड और जो पैकेज्ड फूड है उन्हें ज्यादा अपना रहे हैं। तो इसका जो बढ़ता उपयोग है यही स्वास्थ्य के लिए खतरा बनता जा रहा है।
0: और ये अभियान लोगों को स्वस्थ भोजन अपनाने, बच्चों और महिलाओं के पोषण पर ध्यान देने तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और किशोरियों के पोषण पर अधिक जोर दिया जा रहा है, क्योंकि स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करती है।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण करती है। तो दोस्तों, भारत भी इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है और सरकार द्वारा पोषण अभियान, मिड डे मील योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं तथा आयुष्मान भारत योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में कुपोषण तथा एनीमिया को कम करना है।
0: अच्छा, पोषण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं है फरहत, बल्कि ये शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति से भी जुड़ा हुआ है। कुपोषित बच्चा ना तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाता है और ना ही अपनी पूरी क्षमता का विकास कर पाता है। इसलिए पोषण पर ध्यान देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है और हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए, जैसे संतुलित भोजन करना चाहिए अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो, जंक फूड से बचना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना है और साथ ही बच्चों और महिलाओं के पोषण को प्रायोरिटी देना है, प्राथमिकता देना है और भोजन की बर्बादी भी रोकना है दोस्तों, ये भी याद रखें। अगर हम ये सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कुपोषण मुक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं।
0: स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए पोषण को अपनाइए, स्वास्थ्य को बचाइए और उज्जवल भविष्य बनाइए। और इसी के साथ डाइटिशियन प्रतीक्षा कटियार जुड़ रही हैं हमारे साथ अपने विचारों को लेकर के।
2: मैं एक महिला हूं तो मुझे पता है कि महिलाओं को खाने में बड़ी समस्या होती है। उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण वो एनीमिया से ग्रसित हो जाती हैं। एनीमिया, जिसमें हमारे खून की जो हीमोग्लोबिन जिसे बोलते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। हर महिला हर महीने 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने शरीर से मेंस्ट्रुएशन के माध्यम से, या जिसे आप पीरियड बोलते हैं उसके माध्यम से रक्त स्राव करती है, मतलब ब्लड निकालती है। फिर जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, उसमें भी बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं हमेशा से ही पहले लोगों को खिलाती आई हैं, बाद में अपना पोषण देखती हैं। तो कई बार एक ये भी कारण बन जाता है कि महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती और उन्हें एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। अगर हम एक सर्वे रिपोर्ट की बात करें तो आप अगर 10 लड़कियों को खड़ा करेंगे तो उसमें 50% तक लड़कियां एनीमिया से ग्रसित होंगी। तो इस एनीमिया से कैसे बचे? आपको आयरन और विटामिन सी दोनों चाहिए। विटामिन सी आप सभी को पता है खट्टे फलों में मिल जाता है। सबसे अच्छा अगर हम भारतीय खाद्य पदार्थ में कुछ बोलें तो वो है आंवला, इंडियन गूसबेरी, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। नींबू होता है, मौसमी होती है। दूसरी, आयरन, कोई भी सब्जी काटिए या फल काटिए अगर रखने के बाद वो काला हो रहा है तो उसमें आयरन है। जो कच्चा केला होता है ना, उसे आप कभी छीलिएगा आपके हाथ काले हो जाएंगे, उसकी सब्जी बना के खाइए। हमारे यहाँ पहले लोहे के बर्तन चलते थे, देखिएगा कभी आप आयरन के बर्तन में खाना पकाइए तो आपकी सब्जी, आपकी दाल, रसेदार सब्जी, सूखी सब्जी काली पड़ जाती है, क्योंकि उसमें उसका लौह तत्व आ जाता है। आप केला लीजिए, केले को काटिए, उसकी सब्जी बनाइए, उसमें लौह तत्व आ जाएगा। पालक खाइए। पहले के जमाने में हमारी जो

दादी नानी होती थी वो पान खाती थी। पान में पालक की अपेक्षा ज्यादा आयरन पाया जाता है, लेकिन क्या हुआ, हम लोगों ने उसमें तंबाकू मिला दिया, वो गलत है। पान खाइए सिर्फ। पहले के जमाने में पत्तेदार सब्जियां बना बना के खिलाई जाती थी बच्चों को, खुद भी खाई जाती थी, जिन्हें हम साग कहते हैं आमतौर की भाषा में। चुकंदर की पत्तियों का साग होता था, सरसों का साग होता था, इन सब में बड़ी अच्छी मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। अलग अलग तरह की बीन्स आती है बाजार में, वो खाइए। चुकंदर की सब्जी थोड़ी कम बनाई जाती है। दक्षिण भारत में चुकंदर की सब्जी बना के खाई जाती है, आप सब्जी बना के उसकी खाइए। साबुत अनाज होते हैं जिनके खाने में अनाज को आप रागी को, आप ज्वार को शामिल करें, आप जुंडी को शामिल करें, बाजरा को शामिल करें। आटे भी विभिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं। ज्वार का, रागी का आटा है, सिंघाड़े का, कुट्टू का आटा है, इन सब में आयरन जो ये मिनरल्स होते ना बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, छुआरे होते थे, अभी क्या है डेट्स का जमाना आ गया है, लोग छुआरे भूल गए। बचपन में जब माँ दूध देती थी तो उस दूध को मीठा करने के लिए उसमें छुआरा डाल देती थी। किशमिश, ये सब बहुत अच्छे स्रोत हैं। हमारी माँ या हमारे समाज में रहने वाली स्त्रियाँ जो भविष्य में माँ बन जाती हैं, वो ये सारी चीजें अपने बच्चों के लिए तो करती हैं पर स्वयं के लिए नहीं करती। ये प्रण लें कि आप स्वयं को भी स्वस्थ रखेंगे। देखिए, एक घर की नींव के ऊपर ही टिकी है। नींव की ब्लड रिपोर्ट थोड़ी सी गलत आ जाएगी तो फिर अच्छा नहीं है ना। तो आप स्वयं को जितना हेल्दी खाना खिला सकते हैं उतना खिलाएं। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, तभी आपके माता पिता स्वस्थ रहेंगे, तभी आपसे जुड़े हुए लोग स्वस्थ रहेंगे। कोशिश करें कि आप बाहर की अपेक्षा घर का बना हुआ भोजन ज्यादा खाएं, अपने घर में लौह वस्तुओं का उपयोग ज्यादा करें। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि जो मिनरल होते हमारे खाने में, जो खनिज होते हैं, उनकी मात्रा हमें बहुत कम चाहिए लेकिन चाहिए। तो अब जब ये चीजें अपने खान पान में शामिल करेंगे तो आपकी जो ये जरूरत है आयरन की और विटामिन सी की पूर्ण हो जाएगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रोग्राम चल रहा है हम नवा 102 रोचो एफएम रेनबो कानपुर पर और आज इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आरजी फरहत और मेरे साथ है आरजी रितु।
2: तो फरहत, अब हम आप सभी को लेकर चलते हैं किससे कहानियों की दुनिया में। और हाँ। वैसे भी देखो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, है ना, और फ्री टाइम है हमारे पास भी, हमारे बच्चों के पास भी, और ये टाइम होता है किससे कहानियां पढ़ने का, किससे कहानियां सुनने का, दादी और नानी के पास बैठ करके।
1: बिल्कुल, है ना।
2: तो भाई, बचपन जीवन का सबसे सुंदर, निश्चल और यादगार समय होता है। ये वो दौर है जब मन में जिज्ञासा होती है, आंखों में सपने होते हैं और हर छोटी सी बात में खुशी मिल जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा, हर छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती है और बचपन को रंगीन और यादगार बनाने में किस्सों का और कहानियों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। दादी नानी की कहानियाँ, लोक कथाएँ, परियों की बातें, राजा रानी के किस्से और पंचतंत्र की शिक्षाप्रद कथाएँ बचपन की अमूल्य धरोहर हैं, हम ये कह सकते हैं ऋतु। और ये हमें जो हम बचपन में सुनते हैं वो आज तक याद रह जाते हैं।
2: बिल्कुल, और कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती बल्कि वे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम भी होती हैं। जब बच्चे कहानियां सुनते हैं तो उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, वे अच्छे और बुरे में अंतर समझने लगते हैं। कहानियां बच्चों को नैतिक शिक्षा देती हैं, जैसे कि सच बोलना, मेहनत करना, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी और साहस रखना।
1: सही कहा, और बचपन में सुनी गई कहानियाँ अक्सर जीवन भर याद रहती हैं, अभी मैंने आपको बोला था, और कई बार ये हमारे सोचने और निर्णय लेने के तरीके को भी बदल देती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, प्रभावित करती हैं। और ऋतु, पुराने समय में रात को खाना खाने के बाद, याद है आपको, ये परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ जाया करते थे।
2: बिल्कुल,
1: है ना, दादी नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी, इवन हमें ही सुनाया करती थी क्योंकि उस वक्त हम भी बच्चे थे, और तब उन कहानियों में उनके अनुभव, उनके संस्कार और जीवन की सीख, ये सब छुपी होती थी जो हम तक पहुंचती थी।
2: बिल्कुल फरहत, और कभी अकबर बीरबल की चतुराई सुनने को मिलती तो कभी तेनालीराम की बुद्धिमानी, कभी पंचतंत्र की कहानियां जानवरों के माध्यम से शिक्षा देती तो कभी लोक कथाएं साहस और प्रेम का संदेश देती थी। इन कहानियों से बच्चों में पारिवारिक जुड़ाव बढ़ता था, भाषा और शब्दों का ज्ञान होता था, संस्कार और परंपराएं समझ में आती थी।
1: जी हाँ, और कहानियां बच्चों के मन में कल्पना का संचार भी रचती थी। याद है ना, जब हम सुनते थे तो अपने दिमाग में एक
2: चलने लगता था वो इमेज। हाँ, बिल्कुल,
1: इमेज क्रिएट कर लेते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा होगा। उस वक्त बहुत ही अलग दुनिया होती थी जब हम कहानियां सुनते थे। और दोस्तों, आज भी जब बच्चा किसी परी, जादुई जंगल या उड़ने वाले घोड़े की कहानी सुनता है ना, तो उसका मन नए विचारों से भर जाता है। यही कल्पना शक्ति आगे चलकर रचनात्मकता का आधार बनती है।
2: फरहत, आज का बचपन मोबाइल, इंटरनेट और वीडियो गेम्स में अधिक जो है वो व्यस्त हो गया है। बच्चों के पास कहानियां सुनने का समय कम होता जा रहा है, संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवारों ने ले ली है, जिससे दादी नानी के किस्सों की परंपरा भी धीरे धीरे कम हो रही है।
1: बिल्कुल सही कहा, हालांकि आज भी किताबें और ये ऑडियो स्टोरीज हैं और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से कहानियों को जीवित रखा जा रहा है, लेकिन यदि माता पिता रोज कुछ समय बच्चों को कहानी सुनाए ना रहे तो बच्चों का मानसिक विकास भी होगा और भावात्मक विकास भी और भी ज्यादा बेहतर तरीके से होगा।
2: बिल्कुल, और हर कहानी अपने भीतर कोई ना कोई संदेश छिपाए रखती है फरहत, जैसे कि कछुआ और खरगोश की कहानी धैर्य और निरंतर प्रयास की सीख देती है, शेर और चूहा की कहानी बताती है कि छोटा सा व्यक्ति भी बड़ा काम कर सकता है, सच्चाई की जीत जैसी कहानियां नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाती हैं। इस प्रकार कहानियां बच्चों को जीवन के लिए तैयार करती हैं।
1: एग्जैक्टली, और देखिए ना, अभी हम किस्सों कहानियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ कि एक मेल हम तक पहुंच गया है, और ये मेल है मोनू सेठ भील अमेठी से, और इन्होंने
2: मुझे लग रहा है पूरी कहानी लिख भेजी है इन्होंने।
1: बिल्कुल सही है। तो ये लिखते हैं कि एक जंगल में एक तेज भागने वाला खरगोश और एक बहुत धीरे चलने वाला कछुआ रहता था। खरगोश को अपनी गति पर बहुत घमंड था और वो हमेशा कछुए की धीमी चाल का मजाक उड़ाया करता था।
2: एक दिन तंग आकर कछुए ने खरगोश को दौड़ लगाने की चुनौती दी। खरगोश तुरंत मान गया और जंगल के सभी जानवर दौड़ देखने के लिए इकट्ठे हो गए। खरगोश में अहंकार था पर कछुआ अहंकारी नहीं था, उसमें कार्य को प्रगति निरंतरता को करने की हिम्मत रखता था वो, इसलिए अहंकार से नहीं जीवन में अपने आप पर भरोसा रखकर धीरे धीरे बढ़ते रहे।
1: बिल्कुल, उस कहानी में हुआ ये था कि भाई थककर खरगोश सो जाता
2: हाँ,
1: है
2: बिल्कुल।
1: और कछुआ जो होता है वो
2: धीरे धीरे
1: अपने जो भी उसका डेस्टिनेशन था वहां तक पहुंच जाता है। तो अगर हम डेली इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जो भी हमारे लक्ष्य हैं जीवन में, जो भी हमने हमारे ड्रीम्स हैं लाइफ में, उनको हम जरूर पूरा कर पाएंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी जो हम सब ने बचपन में सुनी है और हम सबको आज तक याद है और बहुत गहरी सीख देके गई है।
2: बिल्कुल फरहत, तो आज आवश्यकता है कि हम बच्चों को फिर से कहानियों के करीब लाएं ताकि उनका बचपन केवल तकनीक तक सीमित ना रहे बल्कि संवेदनाओं, कल्पनाओं और संस्कारों से भी भरपूर हो।

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ़ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रोग्राम चल रहा है हम नवा और इस प्रोग्राम में आज आप कनेक्ट हैं आरजे फरहत और आरजे रितु से, क्योंकि भाई ये प्रोग्राम आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने। फिलहाल अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो क्या कहती हो रितु?
2: भाई परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्तियां जो हैं ये तुमने सुनी है परहित?
1: बिल्कुल सुनी है रितु। ये पंक्ति महान कवि संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस से ली गई है, राइट?
2: बिल्कुल सही।
1: ये पंक्ति भारतीय संस्कृति, मानवता और नैतिक मूल्यों का सार भी प्रस्तुत करती है। और दोस्तों तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है।
2: जी बिल्कुल, दूसरों का भला करना, दूसरों के सुख दुख में साथ देना, जरूरतमंदों की सहायता करना, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं हो सकता है फरहत। यदि हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा दें, किसी निराश इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला दें, तो वही सच्ची पूजा है, वही सच्चा धर्म है।
1: एग्जैक्टली, वही सच्ची पूजा है। और इसके विपरीत किसी को कष्ट पहुंचाना, चाहे वो हमारे कठोर शब्दों से हो या फिर हमारे व्यवहार से हो या हमारे कर्मों से, वो सबसे बड़ा अधर्म कहलाता है। किसी का अपमान करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, कमज़ोर लोगों पर अत्याचार करना, ये पर पीड़ा के उदाहरण है।
2: आज के समय में ये शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है फरहत। आधुनिक जीवन में लोग अपने स्वार्थ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दूसरों की भावनाओं की परवाह ही नहीं करते, मतलब है ना। और सोशल मीडिया पर कटु शब्दों का प्रयोग, समाज में बढ़ती ईर्ष्या और असहिष्णुता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमें फिर से तुलसीदास जी के शिक्षाओं को अपनाने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल, किताब निकाले और एक बार फिर से पढ़े ताकि शायद वो विचार जो थे, वो कथन जो थे, वो शायद हमारे दिमाग में फिर से फीड हो सके।
2: बिल्कुल।
1: और दोस्तों अपने जीवन में परहित की भावना को अपनाएं तो समाज में प्रेम, भाईचारा और शांति स्थापित हो सकता है दोबारा से। एक छोटा सा सहयोग भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, बुजुर्गों की सहायता करना, ये छोटे छोटे काम है और ये परहित के कार्य है।
2: बिल्कुल। और महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। वास्तव में जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तब हमें आत्मिक सुख और संतोष प्राप्त होता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा फील होता है कि जब दुआएं मिलती है ना।
2: बिल्कुल। और हमारी मतलब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट आती है ना।
1: हमें ये समझना होगा दोस्तों कि धर्म केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म हमारे व्यवहार में दिखता है। और यदि हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो यही सबसे बड़ी पूजा है।
2: तो हमें अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा की भावना को अपनाना चाहिए और किसी को भी दुख पहुंचाने से पहले मतलब दुख पहुंचाने से बचना चाहिए। यही इस अमूल पंक्ति का वास्तविक संदेश है।
1: तो इसी से रिलेटेड हम आपको गाना भी सुनाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन पर एक और मेल रिफ्लेक्ट हो रही है रितु, और ये है मुजम्मिल अहमद बारी मोहल्ला कुर्सत उन्नाव से। और ये लिखते हैं कि
2: ये तो सबसे पहले आपको फरहत आदाब, फरहत और रितु मैम को मतलब इन्होंने आदाब भेजा है और लिखते हैं कि हेलो कानपुर दोबारा शुरू कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। प्रोग्राम बहुत खूबसूरत जा रहा है, खूबसूरत प्रेजेंटेशन, खूबसूरत सॉन्ग सिलेक्शन एंड ब्यूटीफुल टॉपिक्स ऑल्सो। मैं काफ़ी दिनों बाद आज सुन रहा हूँ और मेल कर पा रहा हूँ इस शो में।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल जी आपको इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, हमें मेल भेजने के लिए। और भाई ये जो हमारा प्रोग्राम हेलो कानपुर दोबारा से शुरू है, इसमें आप कॉल करिए और कनेक्ट

0: किसी की मुस्कुराहटों पे होने सा बेहद खूबसूरत गाना और किस ज़माने का गाना है, फिर भी आज तक जब भी हम सुनते हैं तो हमें एक हमारे दिमाग को एक सुकून भी देता है
1: और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ जाती है।
0: एग्जैक्टली। और अब दोस्तों हमनवा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो इस वक्त ऑलमोस्ट हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है,
1: मतलब मोबाइल।
0: मोबाइल के साथ साथ इंटरनेट, ऑनलाइन दुनिया, ये सब भी।
1: सही कहा फरहत, सुबह आँख खुलते नहीं कि लोग सबसे पहले मोबाइल चेक करने लग जाते हैं और यहीं पर कुछ समय पहले तक लोग सबसे पहले भगवान के दर्शन करना बेहतर मानते थे। वैसे कुछ लोगों मतलब कि मोबाइल स्क्रीन पर आज भी भगवान की तस्वीर लगी होती है,
0: है ना? मैंने भी नोटिस किया है, लेकिन दैट मींस कि सिर्फ तरीका बदला है ना, सोच वही है
1: बिल्कुल।
0: और देखिए ना, आज अलार्म मोबाइल में है, न्यूज़ मोबाइल में है, पढ़ाई मोबाइल में है और पेमेंट वो भी मोबाइल से। तो अब तो रिश्तेदारों से मुलाकात भी मोबाइल के थ्रू होने लगी है ऑन वीडियो कॉल।
1: बिल्कुल फरहत, जिस तरह से हर काम के लिए हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ऐसे में डिजिटल साक्षरता होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों को बता दें कि डिजिटल साक्षरता यानी तकनीक का सही, सुरक्षित और समझदारी से इस्तेमाल करना,
0: यानी सिर्फ रील्स देखना नहीं दोस्तों, बल्कि ये समझना भी कि कौन सी जानकारी सही है, कौन सा लिंक फर्जी है और इंटरनेट का फायदा अपनी लाइफ में कैसे लेना है। क्योंकि ऋतु, आजकल लोग एक्सेप्ट तो तुरंत कर लेते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है और फिर बाद में कहते हैं अरे हमारा तो अकाउंट ही खाली हो गया।
1: सही कहा। और फरहत, आज के टाइम पर तो सबसे ज्यादा डर लगता है ओटीपी वाले कॉल का, मतलब और फोन उठाते ही आवाज आती है कि हेलो मैडम, है ना, कि बैंक, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, और बस यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, है ना। लोग घबरा कर ओटीपी बता देते हैं और फिर खाते से पैसे गायब। इसलिए जरूरी है कि अपना ओटीपी, एटीएम पिन और बैंक डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए।
0: बिल्कुल, कभी शेयर मत करिए। और अगर आपके पास कोई लिंक ऐसा आता है जिसमें लिखा हो आपने कार जीत ली, तो समझ जाइए कार नहीं, आपका डेटा जाने वाला है, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिए।
1: बिल्कुल, और इसलिए खुद भी जानकार बनना है और बच्चों को भी अवेयर करना है, क्योंकि पहले होमवर्क कॉपी में होता था, अब मोबाइल और ऑनलाइन क्लासेस में अगर बच्चे डिजिटल चीजें नहीं सही तरीके से सीख जाए

0: तो अपने बड़े से बड़े सपने को वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, पढ़ते पढ़ते वो गेम्स और रील्स तक ना पहुंच जाएं, इसके लिए डिजिटल जानकारी के साथ डिजिटल अनुशासन भी सिखाना होगा।
1: सही कहा रितु ने कि भाई उन्हें जानकारी भी दें और अनुशासन भी सिखाएं। और अच्छा, मैंने नोटिस किया रितु कि कई लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक डिजिटल नॉलेज नहीं होती, और जिन्हें वो घर बैठे ऑनलाइन काम करके अच्छी कमाई भी इससे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप डिजिटल नॉलेज ले लें तो अगर इसे सही तरीके से सीख लिया जाए तो ये आपके करियर का एक रास्ता भी बन सकती है।
0: बिल्कुल फरहत, मुझे अच्छा तब लगता है जब दादाजी डिजिटल जानकारी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पेंशन का रिकॉर्ड देखना है, बैंक की डिटेल्स देखनी है।

0: बैठे ऑनलाइन काम करके अच्छी कमाई भी इससे कर सकते हैं. दैट मीन्स कि अगर आप डिजिटल नॉलेज ले लें तो अगर इसे सही तरीके से सीख लिया जाए तो ये आपके करियर का एक रास्ता भी बन सकती है.
1: बिल्कुल फरहत, मुझे अच्छा तब लगता है जब दादाजी डिजिटल जानकारी सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पेंशन का रिकॉर्ड देखना है, बैंक की डिटेल्स देखनी है, और अगर उन्हें सही जानकारी मिल जाए तो वो किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे.
0: मतलब बच्चों के लिए भी और लिए भी.
1: बिल्कुल बुजुर्गों के लिए भी.
0: अब तो गाँव में भी लोग मोबाइल से मौसम, खेती, सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और फायदा भी उठा रहे हैं. वैसे गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया कैंपेन और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसे पहल लोगों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रहे हैं.
1: वहीं दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दे रहे हैं. और हाँ, याद रखिए, आपके पास आया हर मैसेज, हर फॉरवर्ड सच नहीं होता है, इसलिए किसी भी खबर को बिना जांचे आगे भेजना सही नहीं है.
0: बिल्कुल सही नहीं है. और इसलिए दोस्तों, बात इतनी सी है कि डिजिटल साक्षरता हमें सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाती, जिम्मेदार भी बनाती है. इसलिए डिजिटल दुनिया से डरना नहीं है, बस उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है. और इस विषय में एजीएम बैंक अनूप मिश्रा जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं से.
2: नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा, पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय इटावा की ओर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ. आज डिजिटल दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो, टिकट बुकिंग, पढ़ाई, बैंकिंग सेवाएं या अस्पताल की अपॉइंटमेंट, तकनीक ने हमारे काम को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाया है. लेकिन केवल मोबाइल चलाना ही डिजिटल साक्षरता नहीं है. डिजिटल रूप से साक्षर होने का मतलब है इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का सुरक्षित, समझदारी और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना. आज के समय में फेक कॉल्स, ओटीपी फ्रॉड, फिशिंग लिंक और साइबर ठगी जैसे खतरनाक अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है. याद रखें, अपना ओटीपी, पासवर्ड, एटीएम पिन या बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें. किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें. बच्चों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल जागरूकता और भी महत्वपूर्ण है. बच्चों को सुरक्षित डिजिटल आदतें सिखाना और बुजुर्गों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है. साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को बिना जांचे परखे आगे साझा ना करें. जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार ही सुरक्षित डिजिटल समाज की पहचान है. कुछ छोटी सावधानियां आपकी सुरक्षा को मजबूत बना सकती हैं. मजबूत पासवर्ड रखें, सुरक्षित ऐप्स का उपयोग करें और अपने फोन की प्राइवेसी सेटिंग्स पर ध्यान दें. डिजिटल इंडिया के इस दौर में डिजिटल रूप से जागरूक होना केवल एक कौशल नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन चुका है. और अंत में पंजाब नेशनल बैंक की ओर से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी तभी फायदेमंद है जब हम उसे समझदारी और सुरक्षा के साथ यूज करें. एफएम रेनबो के माध्यम से हम यही संदेश हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं. डिजिटल बने, जागरूक बने और सुरक्षित रहें. धन्यवाद.

0: अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला, और ये पाठशाला यूं ही चलती रहेगी क्योंकि प्रोग्राम जो चल रहा है हम नवा, और इस प्रोग्राम में आज मैं हूँ आपके साथ आरजे फरहत, और मेरे साथ है
1: आरजे रितु।
0: जी हाँ रितु, और अब हम देखिए ना घड़ी में बज रहे हैं 11:45 और हम पहुंच गए अपने स्टार्टअप सेगमेंट पर। तो हम नवा प्रोग्राम में आज की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की नहीं बल्कि उस भरोसे की कहानी है जिसने लाखों बच्चों को ये यकीन दिलाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी जेब नहीं बड़ा हौसला चाहिए।
1: कभी इलाहाबाद की गलियों में पढ़ने वाला एक लड़का आज पूरे भारत के बच्चों के लिए उम्मीद का नाम बन चुका है। हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल स्टार्टअप की और इसके फाउंडर अलख पांडे की।
0: जी हाँ, इलाहाबाद का एक शिक्षक, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल और पढ़ाने का ऐसा तरीका जो सीधे बच्चों को दिल तक पहुँच गया।
1: ना कोई चमक दमक, ना कोई बड़ा सेटअप, बस एक मार्कर, एक बोर्ड और स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का जुनून। धीरे धीरे बच्चों को लगा कि ये टीचर सिर्फ फिजिक्स नहीं पढ़ाता बल्कि कॉन्फिडेंस भी देता है।
0: 2016 में इसकी शुरुआत की और फिर 2020 में प्रतीक महेश्वरी के साथ मिलकर इस स्टार्टअप को एक बड़े एडटेक के रूप में आगे बढ़ाया, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर दोस्तों जिसने एजुकेशन इंडस्ट्री की सोच बदल दी। जब दूसरे प्लेटफॉर्म्स की फीस बहुत ज्यादा थी ना, तब इस स्टार्टअप ने कम कीमत पर क्वालिटी एजुकेशन देने पर जोर दिया ताकि छोटे शहरों पर जो बच्चे हैं वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के, वो बच्चे भी अपने सपने पूरे कर सके।
1: दोस्तों आज ये स्टार्टअप सिर्फ JEE और नीट तक सीमित नहीं है बल्कि ये UPSC, गेट, कॉमर्स, SSC और स्कूल एजुकेशन तक पहुंच चुका है। इसके ऑनलाइन ऐप के साथ पूरे देश में 120 से ज़्यादा ऑनलाइन विद्यापीठ सेंटर्स भी चल रहे हैं।
0: जी हाँ, इस 120 से ज़्यादा ऑफलाइन विद्यापीठ सेंटर्स चल रहे हैं। और दोस्तों बात करें अगर इसकी वैल्यूएशन की, तो 2024 में जहाँ इसकी वैल्यूएशन लगभग $2.8 बिलियन थी, वहीं अब इसकी मार्केट वैल्यूएशन करीब $5 बिलियन तक पहुंच गई है। दैट मीन्स वेरी बिग ह्यूज सक्सेस।
1: और आज ये भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ते एडटेक स्टार्टअप में गिनी जाती है।
0: जी हाँ, आज के समय में इस स्टार्टअप से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से करोड़ों स्टूडेंट्स जुड़े हुए रितु। हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सफलता नंबर्स नहीं बल्कि वो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो आज कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों की तैयारी कर रहे हैं।
1: फरहत, कभी कभी एक अच्छा टीचर सिर्फ पढ़ाई नहीं बदलता पूरी जिंदगी बदल देता है, और इस स्टार्टअप की कहानी उसी बदलाव की कहानी है।
0: बिल्कुल, और इस बदलाव के साथ ही अब वक्त है एक और बदलाव का, आपको एक ब्यूटीफुल ट्रैक सुनाने का। तो बने रहिए हमारे साथ हम नवा प्रोग्राम में।

0: जी हाँ, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल, जो हम अपने हर लिसनर से यही कहना चाहते हैं भाई, ये दिल की धड़कन में बस चुके हैं आप। और प्रोग्राम में वक्त हो चुका है दोस्तों 11:52, और अंतिम पड़ाव पर लगभग पहुंच गए हैं ऋतु हम अपने प्रोग्राम के। तो भाई वक्त है रेसिपी सेगमेंट का, जिसे हर रोज़ की तरह हम ले आते हैं कुछ हेल्दी से फूड, कुछ हेल्दी सी ड्रिंक्स, कुछ कभी कभी चटपटे खाने भी ले आते हैं इस रेसिपी में। तो आज क्योंकि गर्मी का मौसम आजकल चल रहा है, तो ऐसे में दिल कुछ ठंडा और हल्का और रिफ्रेशिंग खाने का करता रहता है। तो ऐसे में जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो और हमारा ख्याल भी रखे।
1: और इसीलिए हम आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही आसान और हेल्दी समर रेसिपी, चिया सीड फ्रूट क्रीम। इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है फरहत, कि इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और टेस्ट भी ऐसा कि बच्चे हों या बड़े सबको पसंद आए।
0: तो चलिए जल्दी से बता देते हैं इसकी रेसिपी, और सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट शेयर कर ले रही तू।
1: बिल्कुल, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच चिया सीड, आधा कप फ्रेश क्रीम या हंग कर्ड, आधा कप दही, 1 चम्मच शहद, कटे हुए फ्रूट्स जैसे आम, केला, अंगूर, सेब, स्ट्रॉबेरी या जो भी आपको पसंद हो।
0: तो दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिया सीड्स लीजिए और उसे थोड़ा पानी या दूध डालकर 15 मिनट के लिए सोख कर लीजिए। अब एक बाउल में आधा कप दही, फ्रेश क्रीम डालिए, और अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो क्रीम की जगह ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं।
1: फिर इसमें थोड़ा सा हनी मिलाइए और अब सोक्ड चिया सीड्स ऐड कर दीजिए। इसके बाद बारी आती है रंग बिरंगे फ्रूट्स की, जो भी है आपके फेवरेट फ्रूट्स हों वो इसमें डाल दीजिए।
0: और अब इन सबको हल्के से मिक्स कर दीजिए और 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने के लिए। बस तैयार है आपकी चिल्ड क्रीमी और हेल्दी चिया सीड फ्रूट।

0: क्रीम, और इसमें फाइबर भी है दोस्तों, फ्रेशनेस भी है, और गर्मी में बॉडी को कूल रखने का टेस्टी तरीका भी।
1: वैसे फरहत, इसे और टेस्टी बनाने के लिए एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम ऊपर से ऐड करके मतलब सर्व करें तो और भी टेस्टी लगेगी।
0: ये तो बच्चों की फेवरेट बना दी आपने। तो इस समर बाहर की हैवी स्वीट्स थोड़ा सा कम कर दीजिए और घर पर ये हेल्दी डिजर्ट जरूर ट्राई कीजिए। फिलहाल एक खूबसूरत सा गाना आप तक पहुंच रहा है, एंजॉय करिए हम नवा प्रोग्राम के साथ।

0: सो भाई इस जुनून के साथ ही अब दीजिए आरजे फरहत और आरजे
1: रितु को
0: प्रोग्राम हमनवा से
1: इजाजत,
0: फिर मिलेंगे आपसे,
1: नमस्कार,
0: टेक केयर एंड बाय बाय।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी नव नियुक्त युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। हाल ही में की गई 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने कई देशों के साथ समझौते किए हैं जो भारत के युवाओं को नए अवसर प्रदान करेंगे। लखनऊ में आयोजित इस रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मौजूद रहे। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण का कार्य शुरू हो गया है। अमरोहा में भी जनगणना के प्रथम चरण के तहत घर घर जाकर मकानों की गणना शुरू हो चुकी है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ ने लोगों से अपील की है कि जनगणना कर्मियों का सम्मान करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सही जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा है कि जनगणना आंकड़ों का उपयोग देशवासियों के लिए बनने वाली कल्याणकारी नीतियां बनाने में किया जाएगा। यूपीएसटीएफ ने ग्रेटर नोएडा में कर्मचारी चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा में नकल कराने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 50 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, मोबाइल, राउटर और अभ्यर्थियों की सूची बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी एसएससी द्वारा आयोजित सीएपीएफ और एसएसएफ कांस्टेबल और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल करा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 2 अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया है जो इस गिरोह के जरिए नकल करने की तैयारी में थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों की फीस वापसी प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने शुल्क वापसी प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के बैंक खाते की जानकारी दर्ज कराने के लिए नीट यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर एक समर्पित सुविधा उपलब्ध कराई है। उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके पंजीकरण पोर्टल पर लॉग इन कर जानकारी भर सकते हैं। बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब, जहां हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: और ये फैमिली फन ना आपके साथ मुझे भी एक अलग तरीके का फन कराता है. और जब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में, एक अलग तरीके की जो डोर होती है ना वो जुड़ जाती है. ऐसा लगता है हम अपनी फैमिली के साथ जैसा करना चाहते हैं और जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मतलब दिलों के तार आपके हमारे आपस में जुड़े हुए ऐसे लगते हैं. नमस्कार है आपको, गरम चिलचिलाती हुई दोपहरी है लेकिन दिल दिमाग में अगर ठंडक हो तो भयंकर भयंकर गर्मी से भी छुटकारा पाया जा सकता है, लड़ा जा सकता है. और ये खूबसूरत सा गाना मैं सोच रही हूँ आपके लिए प्ले कर दें. और ये गाना प्ले करने के साथ साथ आगाज होता है आज सेगमेंट फैमिली फन का. उसके बाद मैं वापस आती हूँ और बात करने वाली हूँ ठंडी ठंडी जगहों के बारे में. नहीं ठंडी जगह नहीं, ठंडी बातें होंगी हमारी जिससे आराम मिलेगा आपको भी हमको भी. ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो. अभी आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ.
1: जब मांगते हैं बरसों दुआ तब पहाड़ों की कली खिलती है. तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहाँ मिलती है.

12:04 हो गए हैं और इस समय आज आपके साथ आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई है और आज सेगमेंट है फैमिली फन का।

12:11 हो गए हैं और फैमिली की बन, फैमिली फन की बात करते करते हम कहाँ पहुंच गए. फैमिली की बन, मुझे बन याद आ रहा है. कभी भी कुछ भी याद आ जाता है और ऐसा होते रहता है कभी कभी ना, खासकर गर्मियों में जब दिमाग एकदम गर्म हो जाए ना, तो तब ऐसी चीजें होते रहती हैं. तो दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है ही. तो कहते हैं कि परिवार के साथ बिताया हर समय सिर्फ यादें नहीं बनाता है बल्कि रिश्तों को और गहरा भी बनाता है. और जब बात हो गर्मियों की छुट्टियों की, तो ठंडी वादियों, पहाड़ की हवाओं, परिवार के साथ बिताई खूबसूरत पलों से बेहतर और क्या हो सकता है. और जब पहाड़ों की वादियों की बात करते हैं, कितने रिच हैं हम लोग भाई, क्या क्या मतलब क्या है, क्या हो गया. अगर हमारे नॉर्थ में गर्मी पड़ रही है तो क्या हो गया, हमारे नॉर्थ ईस्ट में तो ठंडी है, क्या हो गया इधर तराई क्षेत्रों में बहुत गर्मी हो रही है. हमारे पास एकदम बर्फ वाले पहाड़ी क्षेत्र भी तो हैं. भाग दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपने ही लोगों के साथ खुलकर जीना भूल सा जाते हैं, है ना. ऐसे में एक फैमिली ट्रिप सिर्फ घूमना नहीं होती है बल्कि एक दूसरे को समझने की, करीब आने की और दिलों को मजबूत, जो दिल से जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उनको मजबूत बनाने की एक एक खूबसूरत प्रोसेस बन जाती है. और आज के इस खास फैमिली फन प्रोग्राम में हम आपको लेकर चलने वाले हैं उन बेहतरीन ठंडी खूबसूरत जगहों की सैर पर, जहां आप इस गर्मी अपने परिवार के साथ सुकून, मस्ती और यादगार भरे पल बना बिता सकते हैं. तैयार होइए. लेकिन साथ में आपको ये भी बोलूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ट्रिप पे चल दिया जाए, प्लानिंग भी की जा सकती है और अगर प्लान नहीं बना है तो बन भी सकती है. जब हम अच्छा सोचते हैं ना तो कुछ अच्छा हो ही जाता है.

बिल्कुल। और ये गाना सुनने के बाद क्या खूबसूरत वाइब आई ना, मतलब एकदम दिल करता है कि यही गाना सुनते जाएं। और कितना कितना खूबसूरत, कितनी अच्छी वाइब है इस गाने की, और जितनी बार सुनती हूँ उतना ही मज़ा आता जाता है। और ये जो वाइब है ना, कभी ख़त्म नहीं होती है। और इस वाइब को बरकरार रखने के लिए हम आज वैसे बात भी तो कर रहे हैं, कुछ ठंडी ठंडी सी, कितनी अच्छी अच्छी सी बातें कर रहे हैं हम ना। और फैमिली फन का मतलब पता है क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, अप्स एंड डाउन, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते सुनते, बहुत सारी चीज़ें आते जाते रहती हैं ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव जो चढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, उसके बावजूद एक दूसरे का साथ ना छोड़ना। अच्छा क्या होता है, अक्सर हमने देखा है बाहर के कोई लोग हमारे सर्कल में अगर लगता है कि टॉक्सिक हैं, अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, तो पता है क्या होता है, हम उनको साइड कर देते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते, हम सोचते हमारे टाइप है ही नहीं। लेकिन अगर फैमिली में कोई ऐसा लगता है कि कितना टॉक्सिक है यार ये, उसके बावजूद हम उसे नहीं छोड़ पाते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके मूड के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। और आज आपके इस बॉन्ड को मजबूत करने के लिए ठंडी हवाओं, खूबसूरत नज़ारों और प्यार भरे सफ़र का सिलसिला लेकर आई हूँ आपके लिए मैं। अगर आप घूमने का प्लान बना रही हैं बाय चांस, तो मैं आपको कुछ अपने देश के अंदर बेहतरीन खूबसूरत और ठंडी ठंडी जगहों को आपको बताने आई हूँ। जागेश्वर है उत्तराखंड में, जागेश्वर उत्तराखंड अल्मोड़ा में है, आप आसानी से यहाँ पहुँच भी सकते हैं। और ये खूबसूरत जो जगह है ना, देवताओं की घाटी भी कहते हैं इसको। और अल्मोड़ा ज़िले में गंगा नदी घाटी के किनारे और एक बहुत ही खूबसूरत पीसफुल जगह है, और बहुत पुरानी है ये। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव, सप्तऋषि, इन लोगों ने यहाँ तपस्या की थी, और शैव धर्म का एक प्रमुख केंद्र है यहाँ। और आपको पता है कि यहाँ पर आप बहुत ही खूबसूरत नक्काशी और बहुत अच्छी स्थापत्य कला को देख पाएंगे, उसे छुएंगे, देखेंगे और देखते रह जाएंगे। खूबसूरत घने ऊंचे देवदार के पेड़ आप देखेंगे, देखते ही आपकी आंखों में एकदम चमक आ जाएगी। और बहुत ही आसान सी आपको बात बताऊं, यहाँ जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम है, वहाँ तक आप जा सकते हैं ट्रेन से, फिर वहाँ से टैक्सी या बस से हल्द्वानी और अल्मोड़ा होते हुए आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं बाय रोड। और इसके अलावा अल्मोड़ा से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे ये खूबसूरत सी जगह है, और ये खूबसूरत सी जगह तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आप तक एक और खूबसूरत गाना भेजा जाए। जब आप पहाड़ों की सड़कों पर ये गाना सुनते हुए जाएंगे तो आप कैसा फील कर पाएंगे?

सुन साहिबा सुन, ये तो आप अपने साहब को कह सकते हैं कि सुनिए जरा, चलें क्या ट्रिप की तरफ को और प्लान बनाएं क्या बाहर निकलने का, और ये जो खूबसूरत वादियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या चला जाए क्या इस तरफ? और सोचते सोचते बात करते करते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि भाई जागेश्वर अगर आप जाएंगे, मैं फिर से आपको बताऊँ, जागेश्वर इतनी खूबसूरत, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ जाने का, ठंडी प्लस सुकून भरी और प्लस मतलब इतनी शांत, आपको लगेगा कि किसी दूसरी दुनिया में आ गए क्या। और आपको पता है बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन टाइप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भीड़ भी नहीं रहती वहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपको बताऊं, एक और मंदिर है, बैजनाथ मंदिर, कुमाऊं क्षेत्र की गोमती के किनारे, मतलब बागेश्वर में बसा हुआ बैजनाथ मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी का है, मतलब बहुत ही पुराना शिव मंदिर का एक समूह है। यहाँ भी जागेश्वर की तरह ही लगभग आपको शांत, ठंडा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर माहौल मिलेगा। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं, बहती नदी और पत्थरों से बने पुराण मंदिर इसकी खूबसूरती को खास बनाते हैं। यहाँ भी मेरे जाने का बहुत ही बेहतरीन अनुभव है। मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप यहाँ जाते हैं तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आप अगर कहेंगे कि भाई वाकई में पैसा वसूल, सारी गर्मी की ठंडक तो दिमाग में, मतलब गर्मी की जगह जो लखनऊ में आप गर्मी सह रहे हैं, अपने शहरों में गर्मी सह रहे हैं, वहां जाकर सारी ठंडक वापस आ जाएगी। खैर इस मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊं कि गोमती का खास शांत किनारा है, प्राचीन कत्यूरी जो एक शैली है उसकी वास्तुकला है, पत्थरों में डिजाइन बना हुआ है, सूर्योदय है, बहुत ही अच्छा सनराइज होता है और शाम को बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। आसपास चाय के बागान हैं, पहाड़ी गांव हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपका फिर से वही नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, वहाँ से टैक्सी से लगभग 150 से 180 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं दोस्तों, और टैक्सीज आराम से पहुँच सकती हैं। और बाई चांस अगर आप बहुत दूर हैं एयरपोर्ट से आना चाहते हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर है और वहाँ से फिर से आप टैक्सी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मैं तो कह रही हूँ कि क्या हर्ज है प्लान करने में, और अगर बाय चांस इस बार आपका जाने का प्लान नहीं बन पा रहा है घूमने का, तो पैसे बचाइए भाई, रुपया बचाइए, सेविंग कीजिए, आप अपने बच्चों के साथ बाहर निकलिए। और मैं बताऊँ आपको, सिर्फ रुपया ही नहीं बचाइए, आज जो ये मैं बात आपसे कर रही हूँ इस बात का जो गहन चिंतन मनन है, अपने बच्चों के साथ बैठ के करिए, यहाँ जाया जाए, एक ही जीवन है, कब जाएंगे हम घूमने। और फैमिली फन का तो मतलब यही है कि बच्चे भी मिलके सेविंग करें, पति भी मिलके सेविंग करें, पत्नी भी करें, और सभी लोग सेविंग करें, और सेविंग के साथ साथ जो हो ना वो जीवन सुधर जाए। इतनी खूबसूरत जगह जाने का मतलब मिले अगर सेविंग से, तो क्या क्या मतलब, बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर मैं तो आपको पॉजिटिव वाइब देते रहूंगी, मोटिवेट करते रहूंगी और अच्छी अच्छी बात बोलते रहूंगी कि आप यहाँ जाने का सोचें। मैं प्रमोट नहीं कर रही आपको, गर्मियों के मौसम में फैमिली फन ठंडक भरे अंदाज में करने का एक आइडिया दे रही हूँ। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, सेगमेंट फैमिली फन चल रहा है, आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ।

भाई ऐसे ही अगर आप पहाड़ी सड़कों पर चलते जाएंगे और वो जो खूबसूरत वाइब होगी पहाड़ों की, और इतनी खूबसूरत वाइब में आप अगर सोचिए इसी गाने को, मतलब इलाही को एंजॉय करते हुए चलिए, तो कैसा कैसा महसूस करेंगे, कितना मज़ा नहीं आएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी से इमेजिन करके मैं कुछ अलग सा फील कर पा रही हूँ। और बात हम जागेश्वर की कर रहे थे, बात हम इस तरफ आए थे बैजनाथ टेम्पल के बारे में बात कर रहे थे। और दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, ज़्यादा दूर आपको जाने की और सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अगला जो लोकेशन है हमारा, जिसके बारे में हमें बात करनी है, सोचना है, वो है कटारमल सन टेम्पल। इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। ये भी अल्मोड़ा में ही है, भारत के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में गिना जाता है। अच्छा ये है कि यहाँ पे धूप थोड़ी मिलेगी आपको, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इतनी ठंडी ठंडी हवा आपको मिलेगी, आपको छूकर निकलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं यही जिंदगी है। और यही जिंदगी है, और ऐसा महसूस करने के लिए वहां तक पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, पहाड़ों के बीच में बसा, लेकिन थोड़ा सा तो चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रैकिंग है, और परिवार के साथ ट्रैकिंग करने का मतलब आप समझ रहे हैं, थोड़ी सी आफत तो आ सकती है। जो परिवार में थोड़ा कमजोर प्राणी होता है ना, उसका बोझा भी उठाना पड़ता है, लेकिन यही फन है। उस समय पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, महसूस तो होता है कम से कम। अच्छा ऐसे एक ही घर में पड़े पड़े रहे, बैठे रहे, कई दिनों से कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बाहर भी नहीं गए, मतलब कई दिन नहीं, कई महीने, कई साल हो गए, तो मुझे लगता है ना उस समय बड़ी बड़ी बड़ी दिमाग में ये चीजें हो जाती है। बच्चों को तो खासकर लगने लगता है कि मम्मी पापा ही मेरे असली दुश्मन है और मेरे भाई बहन ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। लेकिन अगर ऐसे थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा ट्रैक कर लिया जाए, तो उसमें उसकी आंखों में इमोशंस के आंसू भर आते हैं, और वो सोचता है कि नहीं नहीं यही तो मेरे हैं, कोई बाहर का आदमी थोड़ी मेरा बोझा उठा लेता। खैर ये जो कटारमल सूर्य मंदिर है, ये अल्मोड़ा में है, पहाड़ों के बीच बसा है, बहुत ठंडा सुकून देने वाला है, और यहाँ की जो खूबसूरती है, देवदार और चीड़ के जंगल, दूर दूर तक हिमालय की चोटियों का दृश्य, सूर्योदय का जो खूबसूरत नज़ारा आप देख पाएंगे यहाँ, आप यहाँ बहुत बेहतरीन फोटोज ले सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए बहुत शानदार जगह है। अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर आपको यहाँ जाना पड़ेगा। काठगोदाम रेलवे स्टेशन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और टैक्सीज यहाँ तक पहुँचती हैं। सड़क मार्ग बहुत सुंदर और पहाड़ी दृश्यों से भरा हुआ है दोस्तों, घूम घूम कर सड़क जाएगी और आपको दूर से कोसी घाटी दिखाई देगी। अब समझ रहे हैं आप, मैं तो सोच रही हूँ कि मतलब कब दोबारा मौका मिले, यहाँ भी मैं जाकर आ गई हूँ। खैर आपके लिए खूबसूरत सा गाना चलाना पड़ेगा मुझे। अब मैं सोच रही हूं कि एक बेहतरीन सा गाना चलाया जाए, क्योंकि लोकेशन ऐसी है ना, वहां जाकर आप मना नहीं कर पाएंगे और कहते रहेंगे और बार बार हर किसी से कहते रहेंगे कि मेरी फोटो खींच दो प्लीज, मेरी फोटो खींच दो, कब आना होगा यहाँ वापस। ऐसी जगह कहीं होती है क्या?

बिल्कुल, और इसी तरीके से आपको ना खींच मेरी फोटो कहना ही पड़ेगा अगर आप इतनी खूबसूरत जगह पे जाएंगे तो। 12:42 हो गए हैं और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। हम कर रहे हैं फन सेगमेंट फैमिली फन के साथ, और बात करते करते हम यहाँ तक आ गए हैं कि हम आपको बताएं कि अगर आपको उत्तराखंड की तरफ जाने का दिल नहीं है तो आप हिमाचल की तरफ जा सकते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपसे बोला था ना, तो क्या हुआ अगर हम यहाँ गर्मी में हैं, छुट्टियाँ हैं अपने पास तो ठंडी जगह भी तो हैं अपने पास। ऐसे ही थोड़ी हम जो है धरती पुत्र हैं, ये धरती हमें बहुत कुछ देती है। खैर, मजाक की बात दूसरी तरफ है, मैं मजाक कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन मैं तो बहुत सीरियसली कह रही हूँ। हिमाचल की तरफ अगर जाएं ना आप, तो आपको मिलेगा टैबो मोनेस्ट्री। हाँ, इसको टैबो मोनेस्ट्री भी कहते हैं, और स्पीति वैली में ये टैबो मठ भी कहते हैं, जिसको टैबो मठ भी कह सकते हो आप। हिमालय का अजंता कहा जाता है इसको। लगभग 1000 साल पुराना बौद्ध मठ है। यहाँ का मौसम गर्मियों में भी ठंडा और बहुत शांत रहता है, और यहाँ की खासियत यह है कि मिट्टी से बने बहुत प्राचीन प्राचीन मठ आपको मिलेंगे, बौद्ध भित्ति चित्र मिलेंगे बड़े बड़े से, और मेडिटेशन के लिए बड़ी बड़ी लोकेशंस आपको मिलेंगी। मेडिटेशन के लिए आपको जगह जगह वैरायटी वैरायटी मिलती रहेगी, और इसके साथ आपको पता है सूखी खूबसूरत पहाड़ियाँ, नीला आसमान, रात में तारों से भरा हुआ एकदम साफ सुथरा आकाश, ऐसा जैसे आपने ड्राइंग बुक में नीला आसमान बनाया हो और उसमें खुद अपने हाथों से तारे जड़े हों। ऐसा ही है बिल्कुल। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शिमला या मनाली से रोड से पहुँचना है, और सबसे आसान रास्ता पता क्या है, शिमला किन्नौर स्पीति होते हुए आपको यहाँ तक पहुँचा जा सकता है आसानी से। और जो नज़दीकी एयरपोर्ट है भुंतर है, कुल्लू है, लेकिन वहाँ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क जो मार्ग है वही बहुत ही अच्छा है यहाँ के लिए। ट्यून इन करके रखिए मेरे साथ, मैं आपको गाने भी सुनाऊंगी और साथ में सैर तो करा ही रही हूँ मैं। और मैंने आपसे कहा है कि जाना इसी बार है जरूरी नहीं, डिस्कशन तो किया जा सकता है, प्लानिंग तो की जा सकती है।

देखिए एकदम से वक्त और जज्बात बदलने में टाइम नहीं लगता है ना। एकदम से गाना चला गया, मैं तो उसके एकदम ही अलग ही खुमारी में खोई हुई थी। और जो गाना गया उसका कहने का मतलब ये था कि मालिक जल्दी चलो, समय हो रहा है और भी तो जगह जाना है। मैंने आपसे कहा था कि अगर उत्तराखंड, और देखिए मैं आपको बताऊं, अल्मोड़ा तो नियरेस्ट है, यहां से बहुत पास है, मतलब बहुत दूर नहीं, आपको कई दिन नहीं लगेंगे। आज रात में आप निकलेंगे, कल दोपहर तक आप अल्मोड़ा, जागेश्वर या कटारमल पहुंच जाएंगे। खैर, लेकिन हिमाचल पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा तो चलना पड़ेगा। हिमाचल चलने के लिए आपको मूड, दिमाग, एनर्जी सब कुछ चाहिए, लेकिन इतना भी महंगा नहीं है भाई, बाय रोड आप आराम से जा सकते हैं। देखिए फन करने के वैसे तो कई तरीके हैं, जरूरी नहीं है कि आप घूमने ही जाएं, जरूरी नहीं है कि आप लंबी ट्रिप ही बनाएं, लेकिन आपस में मिलके, हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है इस बार जाना, अगर तो आपस में मिलके बैठ के डिस्कस करना, प्लान करना, या फिर उस ट्रैक के वीडियोस को देखना, उस लोकेशन के बारे में जानना, आपस में मिलजुल के प्लानिंग बनाना, ये भी फन है। जब हम किसी चीज़ के बारे में ख्वाब बुनते हैं या किसी चीज़ के बारे में इमेजिनेशंस बनाते हैं, करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो कितना खूबसूरत लगता है ना। आप कभी नहीं सोचते कि कुछ बुरा हो मेरे साथ, जब हम इमेजिन करते हैं तो बहुत अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं कि आह मेरे पास तो इतना अच्छा कुछ होगा, या वहां जाऊंगी, यहां जाऊंगी। तो समझ रहे हैं आप, वो जो इमेजिनेशन है आपकी वो जरूर सफल होगी, किसी ना किसी रूप में आप तक वहां पहुंचते ही हैं, आप वहां तक पहुंचते ही हैं। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि एक दूसरी आपको मठ या मोनेस्ट्री के बारे में आपको बताने वाली हूँ। कुंगरी मोनेस्ट्री है और ये पिन वैली के बीच, कुंगरी मठ, नेचर और एक अलग ही, जिसको कहेंगे आध्यात्म हो, पीस हो, खूबसूरती हो, सबका एक संगम है ये। और यहाँ भीड़ बहुत कम होती है, बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं, और ठंडक वित्तो है यहाँ पर। शांति चाहने वाले, सुकून चाहने वाले लोगों के लिए, नज़ारा देखने वाले, पहाड़ देखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। मेडिटेशन करना है आपको, ठंडी ताज़ी हवा, कोई नेल करना है, उफ मुझे तो यही सब पसंद है, तो मैं आपके लिए वो चुन करके लाई हूँ। अगर आपको

ही ऐसा कि जाए एकदम मन मस्तिष्क और क्या, और सबको ठंडक मिल जाए, तो तब तो आपको यहाँ पहुंचना है। कैसे आपको पहुंचना है मैं आपको बताऊं, काजा से लगभग 45 किलोमीटर तक आप यहाँ तक है, और आप आराम से टैक्सी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लोकल जो टैक्सीज हैं यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, लोकल टैक्सीज बहुत सारी हैं यहाँ पर। एक जगह और है मैं आपको जिस बारे में बताने जा रही हूँ, वो जगह है कांगड़ा फोर्ट। भारत के सबसे पुराने और सबसे विशाल किलों में है वह कांगड़ा फोर्ट, और यहाँ इतिहास, पहाड़, हरियाली, शानदार मेलजोल आपको सबका देखने को मिलेगा। यहाँ की खूबसूरती, बाणगंगा नदी का जो व्यू है, उफ क्या खूबसूरत नज़ारा है। और सबसे खास बात पता है यहाँ का क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है और विशाल किला है, सनसेट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और उसके साथ ही जो अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके लिए तो स्वर्ग जैसी जगह है। कैसे पहुंचना है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, धर्मशाला से सिर्फ सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है ये, और पठानकोट रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक ही है। आप ट्रेन से जाइए और उसके बाद धर्मशाला से 20 किलोमीटर की दूरी पर तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर हम ऐसे खूबसूरत बातों के बारे में, लोकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं ना, तो फिर कुछ अलग सी फीलिंग आने लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग जोन हो जाता है भाई हमारा। तो चलिए खूबसूरत सा गाना सुना जाए, इंजॉय किया जाए। आप ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो, आपके दोस्त चंद्रकला के साथ।

12:56 हो गए हैं और ये खूबसूरत सा गाना जो है ना हम सुन रहे थे आप साथ में, और ये खूबसूरत गाना सुनते सुनते हम कर रहे थे इमेजिन और ये खूबसूरत जगह, ठंडी जगह, शांत जगह पहुंचने की कल्पना। भाई प्लान तो कभी भी बन सकता है, और अगर प्लान और बजट दोनों ही नहीं बन रहे हैं तो डिस्कशन तो किया जा सकता है। जानना तो चाहिए कि इस धरती पे जहाँ पे इस समय हम हैं, तप रहे हैं, इसके अलावा हमारे देश में कितनी खूबसूरत जगह हैं, ठंडी ठंडी जगह। एक और मोनेस्ट्री है, ये जो खूबसूरत मोनेस्ट्री है पेमांगस्टे मोनेस्ट्री, पेलिंग के पास सिक्किम में है आपको बता दूं, और सबसे फेमस बौद्ध मठों में से एक है। बादलों के बीच हिमालय का खूबसूरत सा व्यू, ऐसा लगता है जैसे खूबसूरत बातें, कंचनजंघा पर्वत का शानदार दृश्य है यहाँ पर, बादलों से ढकी घाटियां हैं और खूबसूरत चैंटिंग्स, ठंडी हवा। यहाँ नज़दीकी एयरपोर्ट जो है बागडोगरा है, और नज़दीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी, और वहाँ से पेलिंग तक टैक्सी आराम से आपको मिल जाती है। भाई अगर आपका घूमने का प्लान बन रहा है तो मैं आपसे कहूँगी ऑल द बेस्ट, और अगर नहीं बन रहा है तो मैंने आपसे कहा है ना अगली बार के लिए बनाइए, और अगर वो भी नहीं बन रहा है तो डिस्कशन तो कीजिए, जानिए तो सही। शुक्रिया, और यहीं पर आज प्रोग्राम फैमिली फन का सेगमेंट यही वाइंड अप करने का समय है। अगला जो प्रोग्राम है होंठों पे तेरी बात, उसके लिए मैं ही हूँ आपके साथ, और ट्यूनिंग करके रखिए, तुरंत न्यूज़ ब्रेक के उस पार मिलते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सभी नव नियुक्त युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। हाल ही में की गई 5 देशों की यात्रा का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के कई देशों के साथ समझौते हुए हैं, जिनका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक पहचान प्रदान करना है। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने लगभग 330 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नियुक्ति पत्र देने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को निरंतर गति मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। 15 मई को 3 रुपये प्रति लीटर और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी के बाद ईंधन की कीमतों में ये तीसरी बार संशोधन है। ये वृद्धि ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बीच हुई है। इस बीच इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों की फीस वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने शुल्क वापसी की प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के बैंक खाते की जानकारी दर्ज कराने के लिए नीट यूजी 2026 पंजीकरण पोर्टल पर एक समर्पित सुविधा उपलब्ध कराई है। उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल का उपयोग करके पंजीकरण पोर्टल पर लॉग इन कर जानकारी भर सकते हैं। बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की सुविधा 27 मई 2026 तक उपलब्ध रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैच के मद्देनजर स्टेडियम के आसपास रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

मैं समय हूं और मैं हरीश बिमानी हूं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।

1:04 हो गए हैं, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है, शुरू हो चुका है होंठों पे तेरी बात। शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए और खूबसूरत तरीके से हमें मैसेजेस करने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए और कुछ सुझाव भी देने के लिए। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं क्योंकि आप श्रोता हैं और हम सुनाने वाले। ठीक है, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और इस समय आपके होठों की बात हमारे स्टूडियो तक आती है, हम तक आती है और आपके होठों की इन बातों को हम करते हैं ऑन एयर, सभी सुनते हैं आपके होठों की बातों को। ठीक है, तो आज ऐसा कोई मुद्दा नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी बात है। भाई मुझसे अगर कोई ऐसा बोले ना, मुझसे अगर कोई ऐसा पूछे बताओ क्या चल रहा है अभी मन में, तो फिर मैं तो शुरू हो जाऊं बोलना। हालांकि कई लोग नहीं होते हैं बोलना शुरू, लेकिन अगर मुझसे कोई अचानक से पूछे कि क्या चल रहा है इस समय तुम्हारे मन में, बोलो बोलो, तो मैं तुरंत बोलना शुरू हो जाऊंगी, बताने लगूंगी भाई मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई इमेजिनेशन, कोई ना कोई कोई ख्याल हमें कुरेद तो रहा होता है हर समय। तो अभी क्या चल रहा है आपके दिमाग में वो आप लिख भेजिए हमें, कोई सुझाव, कोई बात, कोई अपनी कहानी, कोई ख्याल, कोई इमेजिनेशन। अगर आप ये होते, ये सोचते, ये करते तो क्या हो जाता, हमारी FM की मेल ID पर अपने मेल लिख करके भेज सकते हैं, fmakashwani@gmail.com हमारी ये मेल ID है, इस पर आप अपने मेल्स हमें लिख भेजिए और हमें है आपके मेल्स का इंतजार। ये रहा है खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर।

0: अब आप शाइस्ता बानो सी में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीनामे में तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है।
1: आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलकत बीएल वर्मन लखनऊ में तकरीबन 330 अहलकारों को तकरीनामे तकसीम किए। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद किया गया। मरकजी हुकूमत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को शफाफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्त साजी शुरू हुई। इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ में वजीर आला की रिहायशगाह, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मर्दमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मर्दमशुमारी के घरों के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क, इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का बेहतरीन जिला करार दिया गया। रियासतों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वाराणसी के चीफ डेवलपमेंट अफसर प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि यह सर्वे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुल्क के देहातों में सफाई की असल हालत का जायजा लेने के लिए किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने दर्जे 12 के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी शीटों की स्कैनशुदा कॉपियां हासिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। सीबीएसई ने यह फैसला अपनी वेबसाइट पर दरखास्तों में इजाफे और तकनीकी खराबियों के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों को लाजमी करार देने के सीबीएसई के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत करेगी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली और जस्टिस जॉय मालिया बागची और विपुल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुफादयामा की अर्जी तलबा, असातजा और वालदैन ने दायर की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया। ईंधन की कीमतों में ये तीसरी नजरेसानी है, जिसमें 15 मई को 3 रुपए फी लीटर, 19 मई को 90 पैसे का इजाफा हुआ। ये इजाफा ईरान के तनाजे और अबनाए हरमूज में रुकावटों के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हुआ है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में वाकई झांसा गांव में देर रात सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सोए हुए खानदान को कुचल दिया। हादसे में जख्मी होने वाली एक खातून को तश्वीशनाक हालत में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफर किया गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। आज आईपीएल क्रिकेट मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात रियासत को अपनी लपेट में ले रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बांदा कल लगातार 6ठे दिन रियासत का गर्म तरीन जिला रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के मशरिकी और मगरबी इलाकों में दिन के वक्त हीट वेव की वार्निंग जारी की है। लखनऊ महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल के तूफान की भी तवक्को है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

एक बजकर के ठीक 16 मिनट हो गए हैं और ब्रेक के इस पार आपका फिर से स्वागत है अपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और 100.7 FM रेनबो लखनऊ आपने ट्यून किया है। सुधाकर जाधव जी का मेल हमारे पास आया है और इन्होंने लिखा है, स्नेह पूर्वक नमस्कार, होठों पे तेरी बात कार्यक्रम में आपके मन में क्या चल रहा है? कोई नहीं पूछा तो हम बोलेंगे, हमारे मन में तो कोई नहीं चल रहा है। आपने ऐसा क्यों पूछा कि हमारे मन में क्या चल रहा है? पहले आप बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्या बात है सुधाकर जाधव जी, ये हुई ना एकदम चालाकी वाली बात। कई बार थोड़े लोग रसिक भी होते हैं ना, रसिक मतलब खराब नहीं, रसिक मतलब लोग सुनना पसंद करते हैं, कई बार लोग उस बात का आनंद उठाना चाहते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही हैं? खैर बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन मैं सुनना नहीं पसंद करती बहुत ज़्यादा, जितना बोल सकती हूँ उतना ही सुन भी सकती हूँ। पर लेकिन अगर कोई परेशान है, किसी को ज़रूरत है, कोई लग रहा है कि हाँ बात करने से ठीक हो जाएगा तो उससे बात की जा सकती है। शुक्रिया हमें मेल करने के लिए सुधाकर जाधव जी। अपने मन की बात आपने बिल्कुल सटीक बात लिखी है। कोई बोलेगा क्या चल रहा है तुम्हारे मन में, तो ये भी बहुत सही बात है कि आप उसे बोलेंगे मेरे मन में तो कुछ नहीं चल रहा, तुम बताओ, हम सुन सकते हैं ना। माधव राज जी ने हमें मेल किया है, इन्होंने लिखा है, लखनऊ टीम आदाब नमस्कार, अभी इस वक्त होठों पे तेरी बात कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आपकी चुनी हुई बातें और गानों का चुनाव सीधे रूह को छू गया। ओह क्या बात है, शुक्रिया। इस शो का जादू ही कुछ ऐसा है कि बहराइच के इस कोने में बैठकर भी मुझे लगता है जैसे मैं किसी महफिल का हिस्सा हूँ। आज के इस कार्यक्रम के नाम मैं बस अपनी भावनाओं के कुछ पन्ने खोलना चाहता हूँ। होठों पे तेरी बात हो, जुबां पर मेरा नाम हो, रेडियो की उन लहरों में बस प्यार ही प्यार सरेआम हो। ये शो हमें सिखाता है कि खामोशियों में भी कितनी बातें छिपी होती हैं। आप जिस संजीदगी से हमें श्रोताओं के जज्बातों को रेडियो पर आवाज़ देते हैं वो काबिल तारीफ है। शुक्रिया हमारे अकेलेपन को अपनी सुरीली बातों से भर देने के लिए। आज की इस महफिल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका अपना हमनवा श्रोता माधव राज, ग्राम गोबराहा, पोस्ट एलिहा, थाना रानीपुर, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। क्या बात है, आपके खूबसूरत मेल के लिए शुक्रिया। देखिए यही है प्रोग्राम होठों पे तेरी बात। इसमें क्या है ना, आपके होठों पे जो बात इस समय होती है उसको हम देते हैं अपनी जुबान और ऑन एयर करते हैं उस बात को। वीके गुप्ता जी ने लिखा है, चंद्रकला मैम जी गुड आफ्टरनून, इन्होंने गुड आफ्टरनून जी आपको भी गुप्ता जी, इन्होंने लिखा है लखीमपुर खीरी में, इन्होंने मेल किया है लखीमपुर खीरी से। इन्होंने लिखा है, आपका नियमित श्रोता हूँ विनोद कुमार गुप्ता, गोला गोकर्णनाथ। मेरे मन में इस समय पक्षियों को पानी और दाना डालने का मन कर रहा है, साथ ही साथ मैं आपसे बातचीत करने के लिए भी उत्सुक हूँ। दिल से दिल की बात मैं जानबूझकर कहता हूँ, मेरे मित्र अजय कुमार मिश्रा जी भी आपका प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। अरे विनोद कुमार गुप्ता जी आपका बेहद शुक्रिया, और आपके मन में जो ख्याल आ रहा है वो बहुत खूबसूरत है, इसको धरातल पर उतारिए। आप इस बात को ख्यालों में मत रहने दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं पक्षियों को दाना और पानी देने की तो बिल्कुल दे डालिए। अभी आपने न्यूज़ बुलेटिन में सुना होगा कि हीट वेव की संभावना है, हीट वेव चल रही है दिन में, और ये जो गर्म लू है ये हम इंसानों को ही नहीं, जानवरों को, पक्षियों को, सबको नुकसान पहुंचाती है। तो शुक्रिया इतने अच्छे ख्याल हमसे शेयर करने के लिए। रामराज जी का मेल हमारे पास है, होंठों पे तेरी बात, ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ीपुर से, रामराज राजू भानू, और इन्होंने लिखा है, हमारे गांव में आंधी तूफान आ जाने के कारण हमारे यहाँ बिजली के तार खंभा सभी टूट गए हैं, इसी वजह से चिंता रहती है कब हमारे यहाँ बिजली आएगी, धन्यवाद। रामराज जी आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने गांव का नाम हमसे शेयर कर लिया है, रायबरेली गांव पहाड़ीपुर। भाई इस गांव में बिजली क्यों नहीं आ रही है, बिजली की व्यवस्था की जाए। भाई रामराज जी आपकी समस्या मुझे लगता है सुनी

होगी लोगों ने, और अगर नहीं सुन रहे हैं लोग तो सुने, कोई वहां तक पहुंचाए, अर्जी लेके जाए, फोन करें बिजली विभाग को, समस्या का समाधान करवाएं। देखिए, बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। पहली बात, आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फोन करके पूछना पड़ेगा कि क्या कारण है, बिजली क्यों नहीं आ रही है, काम क्यों नहीं हो रहा, इतनी गर्मी में हम कैसे जिएंगे। खैर, मुझे पता है रामराज जी, और मेरी दिल से दुआ है, दुआ से भी नहीं काम होगा, लेकिन मेरी पूरी सिंपथी आपके साथ है, और मुझे पता है कि बहुत जल्द आपका काम हो जाएगा। शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। मोनू सेठ जी ने हमें मेल किया है, चंद्रकला मैम जी कैसन हैं आप, गर्मी बहुत है, पानी का बोतल आप भी और सभी श्रोता साथ लेकर चलें। क्या बात लिखी है आपने मोनू जी, हम जब सुबह आए तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी यही थी कि पानी का जो बोतल है ना, वो जो है हमारे झोले में होना ही चाहिए, बिल्कुल हर टाइम। बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, आपकी दोस्त आपके साथ है, और खूबसूरत मेल्स आप भेज रहे हैं हमें। और अगर आपने बात नहीं सुनी है तो हम आपको बात बता दें कि आपके मन में जो भी बात इस समय चल रही है आप हमसे शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। अच्छी बात हुई तो सीखने को मिलेगा, बुरी बात हुई तो कोई बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे उस बारे में, लेकिन आप हमसे साझा करिए। और हमारी FM की मेल ID है, अगर आप नए लिसनर हैं तो fmakashwani@gmail.com, उस पर आप हमें मैसेज लिख भेजिए, और आपके इस मेल को, आपके होंठों की बात को हम देंगे अपनी जुबान। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो। खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक, तुरंत आते हैं।

आपके मन में कभी आता है क्या ऐसा सवाल कि मैंने क्यों प्यार किया, क्यों इकरार किया? कई बार ऐसा पछतावा होता है क्या, कुछ अच्छा सोच के अच्छा करने के बाद भी? पता नहीं, मुझे कई बार होता है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैंने फर्जी इनकी हेल्प कर दी क्या, या फिर मैंने फर्जी बहुत पॉजिटिव सोच लिया इनके बारे में। खैर कोई बात नहीं, कई बार अक्सर ऐसा होता है और मुझे पता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। ये मेरे मन की बात थी गाना सुनने के बाद। आपके लिए आपकी मेल, अब आपके होंठों की बात। महेंद्र देपन जी की मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा है, बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपको भी प्रणाम शुभकामनाएं। मैं, इन्होंने लिखा है, नियमित श्रोता महेंद्र देपन, गांव रूण, जिला नागौर, राजस्थान से। इस समय गुजरात में रहकर आपके बेहतरीन प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का पूरा आनंद ले रहा हूं। इन्होंने लिखा है, आज आपके सवाल का जवाब देने से पहले मेरे मन में सबसे पहला विचार आपकी सेहत को लेकर आया। कुछ समय पहले जो आपको चोट आई थी, अब वो कैसी है? आपकी चोट पूरी तरह ठीक हुई या नहीं? मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा पूरी तरह स्वस्थ, मुस्कुराते और ऊर्जा से भरपूर रहें। बेहद शुक्रिया महेंद्र जी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर आपको पता चल रहा होगा, बस हड्डियों को जोड़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना। दिल टूटने में उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता है मुझे लगता है, जितना हड्डी जुड़ने में लगता है। अब मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ, जब तक हड्डी नहीं टूटी थी तो तब तक मुझे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं नहीं, दिल टूटना सबसे भयानक दर्द होता है, लेकिन नहीं, हड्डी टूटना ज़्यादा भयानक दर्द होता है। अभी मेरे हाथ में दोबारा से प्लास्टर चढ़ना है, तो अभी मैं इस दर्द से गुजरूंगी कुछ दिन और। खैर, इन्होंने लिखा है आज के सवाल की कि अभी मन में क्या चल रहा है, तो इन्होंने लिखा है, सच बताऊं तो इस वक्त मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ खाने के विचार चल रहे हैं। कोई खाना नहीं, खाने के विचार चल रहे हैं इनके दिमाग में भाई, मतलब फूडी हैं आप। इन्होंने लिखा है, सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि इस समय मैं गुजरात के मशहूर गर्मा गर्म और रसीले खमन और जलेबी का स्वाद ले रहा हूँ। और आपने फोटो भी हमें भेजी है, मतलब आपकी ये हिमाकत की आपने हमें स्टूडियो में बैठे बैठे लालच दिला दिया। इन्होंने लिखा है, खमन और जलेबी का स्वाद ले रहा हूँ, इस मीठे और नमकीन के लाजवाब कॉम्बिनेशन के साथ आपका शो सुनना अपने आप में एक अलग ही सुकून दे रहा है। महेंद्र जी, आपने एक अलग तरीके की कश्मकश जो है में डाल दिया है, एकदम अलग से अंदर से। आपने जो फोटो भेजी है हमें, उससे बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ गया है। क्या कर सकते हैं, पर शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और इंसान भले टूटा हो, फूटा हो या किसी भी कंडीशन में हो, जब कुछ ऐसा चटपटा बढ़िया सा खाना सामने दिख जाए तो मन तो एकदम से रसदार हो ही जाता है। रोशनी रावत जी का मेल है हमें। इन्होंने लिखा है, आप कैसी हैं, हाथ कैसा है? मैं जवाब दे चुकी

क्यों रोशनी, आपने उम्मीदें सुना होगा, मैं ठीक हूँ। अभी थोड़ा सा प्लास्टर रहेगा, पक्का प्लास्टर, अब चढ़ना है मंडे को और अभी मुझे समय लगेगा ठीक होने में, बाकी मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न के लिए। इन्होंने लिखा है, जब मुझे कोई कहता है क्या चल रहा है तो उससे ही उल्टा पूछ लेती हूँ, आप बताओ सब ठीक है। ये भी सही है, अच्छी बात है ये भी। आप चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं रोशनी, बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, अपनी मन की बात बताने के लिए। अच्छी बात आपने बताई, कई बार कोई आपसे पूछे कि क्या चल रहा है तो उसके बाद पता चलता है कि मेरा बताने का मन नहीं है, क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है आप बताओ, सुनने का मन होता ना कई बार। और सुधाकर जी, आपका मेल हमने शामिल किया था, आपका मेल हमें जाफराबाद से आया था, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। एम एन नवाब का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून डियर चंद्रकला, इन्होंने लिखा है, खुश रहें, सेहतमंद रहें, अल्लाह से दुआ है, शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। इन्होंने लिखा है, मेरे मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मैं अपने मन में इमेजिनेशन बहुत करती हूँ, हमेशा अपने में खोई रहती हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि कहाँ खोई हो, आपने बोला कि कोई आपसे पूछे मन में क्या चल रहा है आप शुरू हो जाओगे, मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ, मैं भी तुरंत शुरू हो जाऊँगी। आपने पूछा मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है खाना बनाना है, किचन में गर्मी बहुत है, पूरे आंगन में धूप फैली है, भूख भी लग रही है, सोच रही हूँ अरहर की दाल चावल चढ़ा देती हूँ, बस मन में यही चल रहा है। मेरा डेली रूटीन छत पर दाना पानी चिड़ियों के लिए रखना और बाहर पानी रखना गाय भैंस बकरी के लिए। संडीला से एम एन नवाब ने मेल किया है, बहुत खूबसूरत मेल है आपका और आपने बहुत सारे ज़्यादातर लोगों के मन की बात बोली है कि जो रूटीन होता है ना उससे जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ चलते रहता है दिमाग में और एंड मोमेंट में कुछ प्लान ऐसा बदलता है कि आप अरहर के दाल के बदले जो है कुछ बढ़िया भी बना सकती हैं। गुलफसा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून सिद्दीकी, गुलफसा सिद्दीकी संडीला से इन्होंने लिखा है, अगर मुझसे कोई पूछे क्या सोच रही हो तो मैं यही कहूँगी कि इस वक्त तो खाना पीना तो हो गया, अब शाम को क्या बनाऊं मैं यही सोचती रहती हूँ। हाँ, ज्यादातर लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है कि अब क्या बनाऊं, और अगर जिनको खाना है उनसे पूछ लेंगे ना क्या बनाऊं तो वो बोलेंगे तुम सोचो क्या बनाऊं, हमें कुछ नहीं बताना, जो मन है वो बनाओ। अब आपको उसमें पता चलता है कि मन तो कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है क्या बनाना है, ये बहुत ही फनी कश्मकश है, इससे मैं भी गुजरी हूँ कई बार। रितेश वर्मा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, नमस्ते जी, कैसी हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हो सके तो 11 बजे के बाद 4 बजे तक बाहर ना निकले, अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखें, पक्षियों और घूमने वाले जानवरों के लिए पानी अवश्य रखें, अपनी पसंद का एक गाना, अच्छा गाना तो इसमें हम नहीं प्ले करते हैं। बहराइच से आपने मेल किया है रितेश वर्मा जी ने, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, लेकिन आपका मैसेज बहुत अच्छा है। वकील अहमद जी का मेल है हमारे पास, इन्होंने लिखा है, नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, मन में हमारे है कि बाग को जाऊं लेकिन धूप बहुत तेज़ है, खाना खा रहे हैं आप भी आकर खा लें। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी साजिया अंसारी आपने नाम शामिल किया है, लेकिन वकील जी आपने बिल्कुल सच में अपने मन की ही बात शेयर करी है, मैं फील कर पा रही हूँ, क्योंकि जिस समय हम होते हैं ना, ऐसे ही कई सारे श्रोताओं ने हमें मेल किया है, जिस समय हम होते हैं जो काम करना होता है या जो करने जा रहे होते हैं उस रिलेटेड ख्याल तो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। सुल्तान रजा जी का मेल हमारे पास है, चंद्रकला मैम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, उम्मीद है बढ़िया होंगी, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा इकबाल रजा, अच्छा आपने नाम शामिल किया, इन्होंने लिखा है, मेरे मन में वक्त अच्छा हर वक्त चल रहा है कि मालिक दुआ सुन ले और बारिश हो जाए। और गर्मी से बहुत परेशान है हम लोग, FM स्टूडियो से दुआ करो बारिश हो जाए, अच्छा ओके सुल्तान रजा जी, आपकी ये जो दुआ है कबूल हो, हमें भी जो है इसी दुआ किसी न किसी कोने में है, लेकिन बारिश तो संभव नहीं है अभी तो। सुल्तान जी मैं आपको शौक दूं, 9 तपा शुरू होने वाला है, 9 तपा 25 से 2 जून तक 9 तपा शुरू होना है। अब समझिए कि सूरज की किरणें सीधे स्ट्रॉ लगाकर हमारी खोपड़ी से खून एनर्जी सब चूस रही होंगी। मैं आपको डरा भी रही हूं लेकिन डरा नहीं भी रही हूं, इसको अवेयर करना है। सुल्तान जी ख्याल रखिए, बाकी सारे श्रोताओं को भी ध्यान रखने की जरूरत है। राहुल जी का मेल हमारे पास है, हेलो मैम गुड आफ्टरनून, ऋषभ राहुल ऋषभ फ्रॉम बर्रा कानपुर प्ले, अच्छा इन्होंने गाना फरमाइश की है, गाना राहुल जी इसमें हम प्ले नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए आपके रेडियो सेट पर हम भेजने जा रहे हैं।

रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको जो है ये गाना सुनवा दें और तुरंत वापस आते हैं। और इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो विचार आप हमसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है होठों पे तेरी बात, और आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। 104.7 FM रेनबो लखनऊ ट्यून किया है आपने। गाना सुनते सुनते मेल टाइप करिए, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com है हमारा मेल आईडी।

1:39 हो गए हैं और मुझे लगता है कि ये जो इश्क मारता है इससे ज्यादा गर्मी मार रही है हमें भाई, इतनी ज्यादा तकलीफ दे रही है ये गर्मी। और मैंने कहा ना आपसे, जब तक मुझे पता नहीं चला था हड्डियां टूटने का दर्द दिल टूटने से ज्यादा भयानक होता है, टूटने के बाद पता चला। ऐसे ही भाई इश्क विश्क ये सब जितना मारते होंगे, जितनी तकलीफ देते होंगे, उससे ज्यादा तकलीफ तो ये गर्मी दे रही है। बाहर निकल के देख, नहीं, बाहर आपको अगर काम ना हो बहुत जरूरी तो बाहर आपको नहीं निकलना चाहिए।

प्रोग्राम होटो पे तेरी बात चल रहा है, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और जल्दी से आपकी मेल्स को पढ़ना शुरू करें। बाबू अंसारी जी का मेल आया है हमारे पास और इन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून। इन्होंने लिखा आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ बाबू अंसारी जी, आप कैसे हैं? और इन्होंने लिखा है प्रोग्राम जबरदस्त लग रहा है, सॉरी मैं आज का टॉपिक नहीं सुन पाया। बाबू अंसारी जी इट्स ओके, आज का कोई टॉपिक ही नहीं है, बात यह है कि इसमें आपके दिमाग में आपके मन में कौन से ख्याल चल रहे हैं। प्रोग्राम ही यही है होठों पे तेरी बात, आपके जुबान पे जो बात नहीं आ पाई है, जो आप बोल नहीं पाए हैं लेकिन इस समय आपके मन में खूब चल रही है, वो बात आपने शेयर करनी है हमसे। बबीता राव जी का मेल हमारे पास है और बेली कला गोसाईगंज नवाबों के शहर लखनऊ से इन्होंने हमें मेल की है और इन्होंने लिखा है मैम मैं आपको 12 बजे से सुन रही हूँ, सभी प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, हमें आपकी आवाज़ और सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया बबीता जी। इन्होंने लिखा है आपके हाथ में आई चोट सोशल मीडिया पर देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत शुक्रिया बबीता फॉर योर कंसर्न, लेकिन ये है कि हम अब ठीक हैं, आपकी दुआएँ हैं, चोट पटक तो लगते रहती है, बस ये है कि हमारा ठीक

मैम अच्छे लग रहे हैं, हमें आपकी आवाज़ और सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया बबीता जी। इन्होंने लिखा है, आपके हाथ में आई चोट सोशल मीडिया पर देखकर बहुत दुख हुआ। बहुत शुक्रिया बबीता फॉर योर कंसर्न, लेकिन ये है कि हम अब ठीक हैं, आपकी दुआएं हैं। चोट पटक तो लगते रहती है, बस ये है कि हमारा ठीक होना ज़रूरी है समय से। और मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ बबीता, शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। इन्होंने लिखा है, मेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, स्पेशली बेजुबानों के लिए। इन्होंने खूबसूरत सी फ़ोटो भेजी है कबूतरों की और खूबसूरत हरियाली के साथ। इन्होंने लिखा है, पंछी मांगते नहीं, बस इंतज़ार करते हैं इंसानियत का। क्या खूबसूरत बात आपने लिखी है। इन्होंने लिखा है, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग माई ईमेल। शुक्रिया बबीता जी आपके खूबसूरत मेल के लिए। और आप इसी तरीके से अपने मन में नेक विचार लाते रहें, हमारी दुआ है कि आप सेहतमंद रहें और पंछियों को पक्षियों को यूं ही खिलाते रहें। अगली मेल हमारे पास है अरविंद कुमार बुद्ध जी की, विलेज रसूलपुर सुनवटी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद भारत। अच्छा, भारत में बहुत ज्यादा क्या लिखा है आपने, पता नहीं, आपने कुछ लिखा है कि बहुत ज़्यादा जो भी इन्होंने लिखा है, और इन्होंने लिखा है बहुत सारी कि बाकी हमारा माइंड और साइंस होती है, मतलब बहुत सारे 5% 10% ही गॉड वर्क करता है, बाकी हमारा माइंड मून। आपने बहुत टेक्निकल बात लिखी है और मुझे लग रहा है कि अरविंद कुमार बुद्ध जी आपके दिमाग में जो टेक्निकल बात चल रही है ना, 20% 10% 80% 5%, ये हमारे समझ में नहीं आ रही है, इसको आपने आसान बना करके समझाना होगा हमें। और ये जो मेल आपने भेजी है इसके लिए शुक्रिया, लेकिन हमें कुछ मैसेज ही समझ नहीं आया आपकी मेल का। होता है अरविंद जी, होता है, और बाकी श्रोताओं को भी पता है, होता है कई बार हमारे दिमाग में चलता ही रहता है कोई वस्तु इस शेप की है तो आखिर इस शेप की ही क्यों है, ये भी चलता रहता है, कोई बात नहीं। राहुल जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है कि मेरा विचार है कि आप कहीं लेफ्ट इंडिकेटर दे के राइट को तो नहीं मुड़ गई थी। अरे वैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राहुल जी, जरूरी नहीं है सारी महिलाएं खराब ड्राइव करती हों, अच्छा भी ड्राइव करते हैं, और सेफेस्ट ड्राइवर्स तो महिलाएं होती हैं, तो ये महिला पुरुष करना छोड़िए, आप समझ गए, आप मुझे पता है आप मजाक उड़ा रहे महिलाओं का। रामेश्वर जी का मेल हमारे पास आया है, होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन जी सादर नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं। और इन्होंने भी लिखा है, कैसे चल रहे हैं, कैसी हैं आप, और मैंने बहुत अच्छी हूँ मैं रामेश्वर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें मेल लिखने के लिए। इन्होंने लिखा है, मेरा भी पैर टूट गया है, कम चल पाता हूँ। रामेश्वर जी आपकी मेरी स्थिति एकदम एक जैसी है, नहीं पर आप अपना ख्याल रखिए, जल्दी ही आपकी रिकवरी की दुआ करते हैं हम, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र बधू निशा, बहुत सारे नाम आपने शामिल किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, अपना ख्याल रखिए। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में इसमें यही बात चलती होगी, कब ठीक होगा, कब जुड़ेगा, हम समझ सकते हैं। बसंत कुमार सिन्हा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने नमस्कार लिखा है, नमस्कार आपको भी बसंत जी। इन्होंने लिखा है, प्रस्तुति सुन रहा हूँ बहुत देर से, आपके प्रोग्राम सुनते सुनते लंच कर रहा हूँ, दोस्तों की बात सुन रहा हूँ, आपको चोट की खबर सुनकर अजीब सा लग रहा है क्योंकि आपको प्रॉब्लम होते हुए भी स्टूडियो में प्रोग्राम पेश करी। नहीं, बसंत कुमार जी, हमने अपना पूरा समय लिया है ठीक होने में, और ठीक होने के बाद ही हमने अपना प्रोग्राम किया है। और इन्होंने लिखा है कि हड्डी टूटने की वजह से ये भी 4 महीने बिस्तर पर रहे और रीढ़ फ्रैक्चर हो गई थी। और आपने लिखा है हमें मेल दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से, बसंत कुमार सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए बसंत जी, और बहुत खूबसूरत शहर से आपने मेल किया है कोलकाता से, और हमसे जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, अपनी बात हमसे शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मेल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एक मेल और शामिल कर लें और उसके बाद हमें खूबसूरत से गाने की रुख तरफ को रुख करेंगे। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर, इन्होंने लिखा है कि प्रोग्राम सुपर हिट स्वीट स्वीट अच्छा कर रही हैं, आपको शुभ दोपहरिया, गुड आफ्टरनून, गाने भी अच्छे बज रहे हैं। इन्होंने लिखा है, बहुत धन्यवाद, मेरे खेत में अभी, अच्छा खेत में है, आप लोग आए तो अच्छा। इन्होंने लिखा, मेरे खेत में अभी गाना है, आप लोग आए तो बर्फ डाला ताज, स्वीट स्वीट मीठा गन्ने का रस, अच्छा ओहो, गन्ना है आपने लिखा है, वो गन्ने की जगह गाना हो गया है, कोई बात नहीं। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें सोचा कि आप हमें अपने गन्ने, ताज़े गन्ने का रस पिलाएं अपने खेत से, तो बहुत शुक्रिया।

शुक्रिया आपका। गन्ने की सिंचाई कर रहे हैं आप, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, हमारी दुआएं हैं। शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपके लिए, आप इसे इंजॉय करिए। तुरंत वापस आते हैं आपकी मेल्स लेकर।

बताइए कितना खूबसूरत गाना है ना, और इस गाने ने भी कई बार कितनी सारी धूम मचाई थी। अलग अलग ओकेजन्स पे ये गाना इस्तेमाल होता गया, और जब ये गाना आया था उसमें भी कितनी धूम थी। समय होता है हर चीज का, और जैसे ये समय है हीट वेव का, गर्मी का, और नौतपा आने वाला है। फिर मैं आपको डराए जा रही हूँ, नहीं डरना तो है ही, लेकिन डर के आगे जीत वाला मोमेंट करना है। मोनू सेठ जी का मेल हमारे पास आया कि इस समय तो बचपन का वो दौर याद आ रहा है कि इतनी तपन में भी घर से निकल पड़ते थे और मैदान में खेल कूद में बीत जाता था पूरा दिन। साथ में मम्मी पापा की मार भी खानी पड़ती थी, बीमार हो जाओगे, कुछ नहीं समझते थे, बस खेल खेलना होता था। दादी नानी का घर याद आता है, जब बचपन में स्कूल की छुट्टी वहीं बिताते थे। नाना जी के साथ बाजार जाना, कचालू खाना, तरबूज आम नाना जी लेकर जरूर आते थे। अब तो बस जीवन में तपन है, मजा नहीं है। लेकिन मोनू जी, मैं आपसे कहूंगी कि अगर जिंदगी में तपन है तो आप इस तपन में कुछ बढ़िया सेक कर खा लीजिए। आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको पॉजिटिव बात बता रही हूं। तपन को तपन की तरह नहीं देखना है, गर्मी तो है और होती रहेगी, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारी हरकतें हैं उस हिसाब से हर साल ये तपन बढ़ती जाएगी। तो इसलिए दुखी होने के बजाय खुश होइए, कुछ तरीके ढूंढिए, बढ़िया सा एकदम फैमिली फन करिए, कुछ बढ़िया अपनाया जाए तरीका अपनों के साथ, अपनों को भी खुश करने का, अपने आप को भी खुश करने का। धर्मवीर भारती जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून टू यू एंड फुल टीम ऑफ FM रेनबो लखनऊ टीम एंड ऑल लिसनर्स जो देश विदेश में इस चैनल को सुन रहे हैं। तमाम श्रोताओं में से एक मैं धर्मवीर भारती शुक्लागंज उन्नाव से मेल कर रहा हूँ। इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, उत्कृष्ट प्रस्तुति है, बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने लिखा है, मुझे लगता है हैप्पी मोमेंट एंड पॉजिटिव एटमोसफेयर हम इंसान क्रिएट कर सकते हैं। सौरव मोमेंट तो बिन बुलाए ही आ जाते हैं, और एवरीवन शुड थिंक टू बी हैप्पी एंड क्रिएट हैप्पी मोमेंट्स एंड हैप्पी सराउंडिंग्स नियर बाय। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत पॉजिटिव मेल आपने लिखा है। इन्होंने साथ में लिखा है, गेट वेल सून, बहुत शुक्रिया आपका। और धर्मवीर जी, आपकी खूबसूरत और पॉजिटिव बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश यदुवंशी जी ने लिखा है कि मेरे मन में बस यही चल रहा है कि इतनी भयंकर गर्मी में सुबह से शाम तक बस घर के अंदर ही रहें। हाँ, अगर जरूरी काम ना हो तो आप घर पे भी रह सकते हैं। अहमद नवाब ने दोबारा मेल किया है कि चंद्रकला, आपने ऐसा पूछा कि भूली बिसरे आप बातें भी याद आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि एक दिन अपनी चाची के लिए सूट लेने गई थी तो चाचू ने कहा था पैसे बाद में दे देंगे, पता नहीं वो पैसे लिए हमने या नहीं लिए। आपको वो भी याद आ गई, होता है होता है। और बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और अगला प्रोग्राम हमारा हॉटमेल है, और हॉटमेल के लिए आपको मेल करना होगा अगेन हमारी मेल आईडी fmakashwani@gmail.com पर। आपके दोस्त चंद्रकला आपके साथ एक खूबसूरत सा छोटा सा शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक आएगा, और उसके बाद न्यूज़ ब्रेक के बाद तुरंत आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल शुरू करते हैं। फिलहाल प्रोग्राम होठों पे तेरी बात को यहीं करना होगा वाइंड अप। टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स

0: याला सहित दो स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

2:35 हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और आपकी जो मेल्स है ना वो फटाफट से हमारे पास आए जा रही हैं, और इतनी सारी मेल्स हैं कि मतलब ढेर सारी हैं, कहने का मतलब ढेर सारी। और अगली मेल की तरफ अगर हम बढ़ें, अगली मेल हमारे पास है अभिजीत घुमाणकर जी की, और अभिजीत जी की मेल हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। अभिजीत घुमाणकर, सरिता घुमाणकर, आपने क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अर्जुन घुमाणकर और वैशाली शैलेश प्रिंच एकांश कुमारी ध्वनि, इन सब का नाम शामिल किया है। थोड़ी सी कभी कभी कुछ राइटिंग्स जो है वो समझ में नहीं आती हैं,

अगला जो मेल हमारे पास है रविंद्र मोहन जी का मेल, इन्होंने लिखा है कोई सा भी गीत सुना दें। किशनगंज बिहार से आपने मेल किया है। रविंद्र मोहन दास और आशा देवी जी का मेल हमारे पास, नाम इन्होंने शामिल किया है। संतोष नामदेव जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ हमें लिखा है बघेरा दुर्ग से। संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव जी का नाम शामिल किया है। संदीप मक्कर जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ ज्योति मक्कर, संदीप, मन्नत, भरत, कमल साहनी और बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। अगला जो मेल हमारे पास है बबीता राव का है, इन्होंने लिखा है पता बेली कलां गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ से। प्यार भरा नमस्ते लिखा है बबीता जी, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। इन्होंने लिखा है वैसे सच कहूं तो आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है कि मेरे पास तारीफ के लिए शब्द नहीं। बहुत शुक्रिया बबीता जी, लेकिन फिर भी आपसे एक बात कहना चाहूंगी है कि मेरा 7 महीने से कोई भी रिक्वेस्टेड सॉन्ग प्ले नहीं हुआ है। बताइए आखिर ऐसा हमसे कौन से खता हो गई है। आप चाहें तो सिस्टम पर चेक कर लीजिए मैं सच कह रही हूं या झूठ। वैसे बबीता जी ढेर सारे श्रोता हैं, इतने सारे श्रोता हैं ना कि ये सब देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हो सकता है आपसे छूट गया हो आपका, मतलब ये जो मेल है गाना हो छूट गया हो। और इन्होंने लिखा है आप सभी आरजे इतने अच्छे ना होते तो कब का सुनना छोड़ दिए होते, बस आप लोगों की वजह से छोड़ नहीं पाते। अरे बबीता जी गाना प्ले नहीं हो रहा इसके लिए आप रेडियो ही छोड़ देंगे, ये तो गलत बात है। कई बार हो जाता है ऐसा। और बबीता जी हमेशा जो है अग्रेशन को छोड़ करके दिमाग में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, एक सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए कि रेडियो हो सकता है कभी आपकी फरमाइश पूरी होने में देर लग रही हो, लेकिन रेडियो तो आपके लिए पूरी तरीके से फायदेमंद है। सिर्फ गाने के लिए तो आप रेडियो नहीं सुनती होंगे, है ना। मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप हमारी बहुत पुरानी लिसनर हैं। और इन्होंने लिखा है कि बहुत हर्ट होता है कभी कभी, बस आपकी मेल के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप दुखी मत होइए, खुद को दुखी मत करिए आप, इसलिए क्योंकि आप बहुत प्यारी इंसान हैं, बहुत अच्छा दिल है आपका, आप श्रोता हैं, आप सुनती हैं, और आप सुनती हैं इसलिए आपको बहुत ज्ञान भी है और आप अपने से छोटों को बड़ों को उनकी ज़रूरत के समय समझा सकती हैं, उनका सहारा बन सकती हैं, मतलब इमोशनल सपोर्ट दे सकती हैं। जब आप खुद ही डिमोटिवेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी तो फिर खैर। तो इन सारी बातों को अपने मन में रखिएगा, बिल्कुल भी दुखी मत हुआ करिए आप। इस तरीके से अगर आप डिमोटिवेटेड और दुखी रहेंगी तो बहुत बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपका गाना जरूर प्ले होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका गाना प्ले होगा, बस हमारी बातों को प्लीज दिल से लगाइए आप कि डिमोटिवेट होकर के जीवन नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों के लिए आप बड़ी बड़ी चीजें छोड़ देंगी।

अगला जो मेल है हमारे पास, वो अगला मेल है बोधराज खोरवाल जी का। इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से मेल किया है। माफ कीजिएगा, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल जी का नाम शामिल किया है। जाकिर जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब, बाजार रोड, मुंगीसापुर से मेल किया है। मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी जी का नाम शामिल किया है। अजमत अंसारी जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा है, अजमत अली फ्रॉम सुल्तानपुर। इन्होंने लिखा है गाना प्ले करने के लिए और गाने की फरमाइश की है। रविंद्र सिंह जी का मेल हमारे पास है, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी का मेल नाम शामिल किया है और गानों की और प्रेजेंटेशन की तारीफ की है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका। अगली जो मेल हमारे पास है, मोहम्मद फैजल जी की मेल है। गाने की फरमाइश के साथ आपने हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमें मेल किया है। फैसल इस्लाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण, जोहानुल खुदा का नाम शामिल किया है। विजय महोबिया जी का मेल हमारे पास है, रामगंज खंडवा से। और आपने नाम शामिल किया है कविता महोबिया, विजय महोबिया, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवा, सलोनी, बहुत सारे नाम आपने शामिल किया है और बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए।

हितेंद्र दास जी का मेल हमारे पास है। इन्होंने लिखा है, नमस्कार, हाउ आर यू, हैवी रेनफॉल इन आर एरिया, कहाँ कहाँ है आप, कहाँ से आपने मेल किया है जहाँ बारिश हो रही है। इन्होंने लिखा हैवी रेनफॉल इन आर एरिया बट आई एम ट्यून इन डरकोन लखनऊ, फ्रॉम नेम हितेंद्र दास, एड्रेस सोनबिल कुडेल असम। ओ आज हम प्रोग्राम भी कर रहे थे हितेंद्र दास जी, और बहुत शुक्रिया हमें उतनी दूर से नॉर्थ ईस्ट से हमें मेल पहुंचाने के लिए, और बारिश का नाम सुन के एकदम मन में ठंडक सी आ गई हितेंद्र जी, मतलब मजा आ गया सुन के। मतलब सोचिए ना, हम यहाँ तप रहे हैं भाई, हम तप रहे हैं, हम यहाँ नॉर्थ

कोनबिल, कुडेल, असम। ओ आज हम प्रोग्राम भी कर रहे थे हितेन दास जी, और बहुत शुक्रिया हमें उतनी दूर से नॉर्थ ईस्ट से हमें मेल पहुंचाने के लिए। और बारिश का नाम सुन के एकदम मन में ठंडक सी आ गई हितेन जी, मतलब मजा आ गया सुन के। मतलब सोचिए ना, हम यहाँ तप रहे हैं भाई, हम तप रहे हैं, हम यहाँ 9 तपा चलने वाला है, लेकिन उससे पहले हम 10 तपा में तप रहे हैं। बहुत शुक्रिया और बहुत ढेर सारा प्यार हितेंद्र दास जी आपको, और आसाम के जितने भी सुनने वाले हमें हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार। और थोड़ी सी गर्मी हम अपनी तरफ से आपको भेज देना चाहते हैं, ताकि आप बारिश में ज्यादा ठंड ना फील करें कहीं। मजाक की बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। आप दुआएं करिए कि हमें भी आपकी तरह ठंडक महसूस हो जल्द ही। और अगला जो मेल हमारे पास है सुमेरा परवीन का, इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड सिस्टर होस्ट जी, आपका इंतजार करते रहते हैं, आज पहली बार मेल किया है, शामिल कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बार प्लीज लिखा है, गाने की फरमाइश के साथ आपने ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मेल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा जी आपका हमें मेल करने के लिए। और हुकम कर्माकर जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने बेरड़ी मध्य प्रदेश से हमें मेल किया है। हुकम कर्माकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची तनु जी का नाम शामिल किया है। सुमेरा जी आपसे मेरी विनम्र निवेदन विनती है कि आप कृपया इस तरीके से 10-15 मेल मत किया करिए। अगर आप इस तरीके से मेल बॉक्स भर देंगी तो हो सकता है हम नहीं कोई और आपको ब्लॉक कर देगा यहां से, क्योंकि इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता है, थोड़ा नहीं बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। रितेश जी की मेल हमारे पास है, रितेश जी आपने हमें मेल किया है, अच्छा लग रहा है। और गानों, अच्छा दोस्तों के नाम एक गाना आपने जो है लिखा है, अंकित, अरुण, दीपक, सूरज, सुनील, शुभम और आसिफ जी का नाम लिखा है। अगली जो मेल हमारे पास है वो है किसकी है भाई, फिर हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस तरीके से बार बार मेल ना करें, हो सकता है हम नहीं कोई और आपको यहां से हटा देगा। सभी की बारी आने दें और सभी हमारे लिए जरूरी हैं।

दिलीप रामेकर जी की मेल हमारे पास है। रहाट गांव कंप अमरावती महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। हर्षा, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका जी का नाम शामिल किया है। अहमद भागवान जी का मेल हमारे सामने है। अपनी पसंद का गीत कोई भी सुनाने के लिए लिखा है और बागवान मंजिल छोटी बलिया से इन्होंने मेल किया है। नूर आयशा, इकबाल, अखलाक, आमना, आशु, जूही, सदफ, छतरी टोल, तेघड़ा बाजार, बेगूसराय से अदीफा, इस्माइल, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज, इन सब का नाम शामिल किया है। रोजी डिकेस्ट्रो का मेल हमारे पास है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो का नाम शामिल किया है। गाने की फरमाइश की है और साथ में लिखा है या किसी भी गीत में हमारा नाम शामिल कर लें। आपकी इन सभी मेल्स के साथ शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का और इसे सुनिए। तुरंत वापस आते हैं आपकी फरमाइशों को लेकर।

2:49 हो गए हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये नागिन, ये जो धुन सुनी ना हमने, ये कुछ यूनिक नहीं थी, एकदम से अलग। आगे बढ़ते हैं, मेल्स का सिलसिला शुरू होता है फिर से और जो अगली मेल हमारे पास है वो किसकी है? मोहम्मद सादिक खत्री जी की मेल है हमारे पास और इन्होंने सिर्फ मोहतरमा जी लिखा है। मोहम्मद सादिक जी, क्या लिखना चाह रहे हैं आप? अब्बासी जी की मेल हमारे पास आई है और इन्होंने लिखा है कि अच्छा, हद हो गई है सब्र की। अब्बासी जी, आपके सब्र की हद होनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें लगातार एक ही मेल कॉपी करके सैकड़ों बार भेज रहे हैं और कुछ मेल्स पीछे छूट जाती हैं। हमारे भी सब्र की हद होनी चाहिए, है ना अब्बासी जी? बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से आपने हमें मेल किया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, इनका आपने नाम शामिल किया है। और अब्बासी जी, आपको बताएं कि अगर आप दोबारा मेल हमें नहीं करते अभी, तो हमें दिखती भी ना आपकी मेल, क्योंकि कई लोग इस तरीके से परेशान करते हैं कि वो एक ही मेल कई बार कॉपी करके भेजते हैं और जो नुकसानदायक है। अरविंद कुमार बुद्ध जी का मेल हमारे पास आया है, रसूलपुर सुनवाटी डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से। इन्होंने गाने की फरमाइश की है और खूबसूरत गाने की फरमाइश, बहुत बहुत शुक्रिया।

और अगली जो मेल हमारे पास है वो मेल है किसकी है, सुधन बाबा जी की, और इन्होंने लिखा है नवीन गल्ला मंडी सीतापुर रोड लखनऊ से, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हॉटमेल का हमेशा इनको इंतजार रहता है। हम लोग 3 लोग काम करते हैं, रेडियो आपका सदाबहार सुनते रहते हैं सुबह 6 से रात 12 बजे तक। नाम है सुधन बाबू, पप्पू नरेश पंडित। बहुत बहुत शुक्रिया।

आपका सुदन बाबा जी हमें मेल करने के लिए किसी भी गाने में नाम शामिल करने के लिए लिखा है, बहुत शुक्रिया। अमित बहेलिया जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा, हेलो मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ अमित जी, आप कैसे हैं? डीके जी का मेल हमारे पास आया है, कमलेश मुकुल सचिन और दीपांशु गाने की फरमाइश की है और नई दिल्ली से हमारा मेल आया है। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है महेंद्र देपन जी की, और इन्होंने राजस्थान नागौर से हमें मेल किया है, गाने की फरमाइश की है, और गाने की फरमाइश के साथ इन्होंने लिखा है, आपसे छोटा सा अनुरोध है कि आपने इस शानदार प्रोग्राम में मेरा ये पसंदीदा गाना जरूर शामिल करें और इसे बजाकर मेरा भी नाम बोल दीजिए। महेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो गाना है वो प्ले हो।

और अगला नाम हमारे सामने जो है वो है, मैं ये देख पा रही हूँ कि कितने सारे मेल रिपीटेड हैं और मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये देख करके, क्योंकि बाकी लोगों की तो बारी आती ही नहीं, उनमें हम मेल्स खोजते रह जाएंगे। शिवम जाटव जी का मेल हमारे पास है सीतारामपुर महोली सीतापुर से, और मुझे इन्होंने गाने सुनाने के लिए कहा है। और शिवम जाटव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और बाकी सारी मेल्स जो हमारे पास हैं वो सारी की सारी रिपीटेड हैं। तेज बहादुर यादव जी का मेल हमारे पास है, हॉटमेल प्रस्तुतकर्ता दीदी को नमस्कार लिखा है, आपको भी नमस्कार यादव जी। और इन्होंने लिखा है, प्रोग्राम की तारीफ लिखी है, ढेर सारी तारीफ लिखी है, गाने की फरमाइश की है, किसी भी सदाबहार गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। तेज बहादुर यादव, ममता यादव, रोनित यादव, बेबी वनिका, गांव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से मेल किया है, गुरुग्राम हरियाणा में ये सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेज बहादुर जी हमें मेल करने के लिए और हमें सुनने के लिए। सुरेंद्र सिंह जी का मेल हमारे पास है, भीषण गर्मी के इस मौसम में हमें अपने साथ साथ समाज और पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, तेज धूप और बढ़ते तापमान से बचने के लिए अधिक पानी पीजिए, हल्के कपड़े पहने, दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचे। वेदांत सिंह निवासी तेलवारी रामनगर बाराबंकी, साथ ही जरूरतमंद लोगों, मजदूरों, बुजुर्गों, पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधे लगाएं और पानी की बर्बादी रोकें। सुरेंद्र सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। अगला आनंद कुमार शुक्ला जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है श्यामदासपुर महमूदाबाद से, उद्घोषक जी को नमस्कार लिखा है और गाने की फरमाइश की है। आनंद कुमार जी आपका बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। सावित्री देवी जी का मेल हमारे पास आया, कैसे हो आप, प्रोग्राम मस्त चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सावित्री जी। इन्होंने लिखा, हमारे यहाँ कुछ देर पहले धूल भरी आंधी चली और बादल भी गरजने लग गए, ये सब देखकर मेरा भी तन मन डोलने लगा, अफसोस थोड़ी देर बाद फिर से चिलचिलाती धूप आ गई। सावित्री जी, ये मजाक हमारे साथ मौसम अक्सर करता है, हम कई बार छेड़छाड़ मजाक करते हैं ना एक दूसरे के साथ, थोड़ा बहुत उसे तंग करते हैं और मजा आता है, हालांकि ठीक हो जाता है, नॉर्मल, सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, पर आपको बताएं ये जो छेड़छाड़ होती है, जो तंग करने का तरीका होता है, ये नेचर हमारे साथ करती है और हम इसमें बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। हमें भी आपकी बात सुनकर बुरा लगा। सरिता जी का मेल हमें आया है भरतपुर बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से, और थैंक यू सरिता जी हमें मेल करने के लिए। ओ माफ कीजिएगा, ये तो सावित्री देवी हैं, सरिता हम पढ़ रहे थे। सावित्री जी बेहद शुक्रिया आपका नाम गलत पढ़ने के लिए, हमें माफ कीजिएगा। और दिलीप रामेकर जी आपका मेल हम पढ़ चुके थे, आप शायद सुनना भूल गए उस समय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमें प्रोग्राम हॉटमेल में मेल करने के लिए। हमारी तरफ से सारी मेल्स पढ़ी जा चुकी हैं और अगर कुछ बहुत अननेसेसरी मेल्स के दबाव में बोझ के तले नीचे दब गई हैं तो उसके लिए हमें माफ करें। और इस समय प्रोग्राम हॉटमेल को यहीं वाइंड अप करने का समय है, यह खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का, आपकी फरमाइश, आखिरी गाना आज के प्रोग्राम हॉटमेल का, इसी गाने के साथ प्रोग्राम हॉटमेल को करते हैं वाइंड अप। अगले प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में आपसे होती है मुलाकात, ट्यून इन करके रखिए, न्यूज ब्रेक के तुरंत उस पार मिलते हैं।

कार प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में बातें होंगी गर्मियों की, फैशन की और उन रंगों की जो इस मौसम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। गर्मी का मौसम आते ही बदल जाते हैं हमारे कपड़े, हमारा स्टाइल, हमारे रंग और हमारा अंदाज। कोई पसंद करता है कॉटन कुर्तियां, कोई ट्रेंडी सनग्लासेस, तो कोई हल्के फुल्के फ्लोरल ड्रेसेस। तो आप गर्मियों में क्या पहनना पसंद करते हैं, बताइए हमें इस ईमेल आईडी पर airkansomedia@gmail.com।

तो गाइज आज के म्यूजिक आवर प्रोग्राम का विषय है गर्मियां और फैशन। गर्मियों का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है आरामदायक कपड़ों का। समर फैशन में कॉटन, लिनेन और खादी जैसे फैब्रिक सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। हल्के रंग जैसे सफेद, आसमानी, पीला और पेस्टल शेड्स गर्मी में आंखों को भी सुकून देते हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें दोस्तों, तो हर दौर में फिल्मों ने फैशन ट्रेंड्स तय किए हैं। कभी राजेश खन्ना के कुर्ते फैशन बने तो कभी जीनत तमान के बड़े सनग्लासेस। आज भी कई युवा फिल्मों से प्रेरणा लेकर अपना समर लुक तैयार करते हैं। और अब सुनिए प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक, बताइए फिल्म का नाम।

वेल गाइज, गर्मियों में फैशन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है कंफर्ट और कॉन्फिडेंस। ऐसा फैशन जो आपको सहज महसूस कराए, वही सबसे अच्छा होता है। आजकल युवाओं में ओवरसाइज टी शर्ट्स, कॉटन कुर्तियां, प्लाजो, फ्लोरल प्रिंट्स और हल्के स्नीकर्स काफी लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया ने फैशन को और भी तेजी से बदलने वाला बना दिया है। हर दिन नए ट्रेंड्स आते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है अपनी पसंद और व्यक्तित्व को बनाए रखना। फिलहाल एक और सॉन्ग पहुंच रहा है आप तक।

0: दोस्तों, गर्मियों का फैशन केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है। इस मौसम में स्किन केयर और हेयर स्टाइल भी काफी मायने रखते हैं। हल्का मेकअप, सनस्क्रीन, खुले बालों की जगह, आसान हेयर स्टाइल और आरामदायक फुटवेयर, यही असली समर स्टाइल है। बॉलीवुड अभिनेत्रियों के समर लुक्स भी युवाओं में काफी लोकप्रिय रहते हैं। कभी अनुष्का शर्मा का सिंपल लुक पसंद किया जाता है तो कभी आलिया भट्ट की कैजुअल ड्रेसेस। आपको किस अभिनेता या अभिनेत्री का लुक पसंद है, बताइए हमें। हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।
1: चलवा चलवा।

दोस्तों, पुराने समय में भी गर्मियों का फैशन बहुत ही दिलचस्प हुआ करता था। 70 और 80 के दशक में बड़े बड़े चश्मे, रंग बिरंगी शर्ट्स और बेल बॉटम्स खूब चलन में थे। 90 के दशक में बॉलीवुड ने डेनिम जैकेट्स और रंगीन टी शर्ट्स का दौर शुरू किया और आज का दौर फ्यूजन फैशन का है, जहां पारंपरिक और आधुनिक स्टाइल साथ चलते हैं। वैसे देखा जाए तो अब लड़के भी फैशन को लेकर काफी जागरूक हो गए हैं। म्यूजिक आवर प्रोग्राम आप में आज बातें हो रही हैं गर्मियां और फैशन पर। जुड़े रहिए हमारे साथ 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर।

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
0: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा

0: आपका मेल मिलाप। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर। पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 4:45 बजे सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर। मेल

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए, awards.gov.in। सूचना समाप्त हुई।
5: म्यूजिकल प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं FM रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर अपनी रेडियो दोस्त ऋतु के साथ।

दोस्तों, आज के म्यूजिकल प्रोग्राम में बातें हो रही हैं गर्मी और फैशन की। तो हम आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में फैशन के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत टाइट या भारी कपड़े शरीर को असहज बना सकते हैं, इसलिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को हवा दे और पसीना जल्दी सोख ले। फैशन का मतलब केवल महंगे कपड़े पहनना नहीं है, साफ सुथरा पहनावा, आत्मविश्वास और मुस्कुराहट, यही सबसे खूबसूरत स्टाइल है। फिलहाल आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने आ रहा है ये ट्रैक। बताइए किस पर फिल्माया गया है ये सॉन्ग।

दोस्तों, गर्मी और छुट्टियों का रिश्ता भी बहुत ही खास है। हिल स्टेशन, ट्रिप्स, बीच वेकेशन और दोस्तों के साथ घूमना, और इन सब के लिए अलग अलग फैशन स्टाइल। बीच फैशन में फ्लोरल कपड़े, हैट्स और कूल सनग्लासेस हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। वहीं पहाड़ों में हल्के लेकिन स्टाइलिश जैकेट्स का अलग ही आकर्षण होता है। और गाइस, भारतीय पारंपरिक परिधान भी गर्मियों में बेहद सुंदर लगते हैं। लखनऊ की चिकनकारी कुर्तियाँ तो देश भर में गर्मियों की पहचान बन चुकी हैं। खादी और हैंडलूम कपड़े भी अब फैशन स्टेटमेंट बनते जा रहे हैं। दोस्तों, बातें जारी रहेंगी लेकिन इस ट्रैक के बाद।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा। यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो कानपुर।
1: पानी रे मा पादा पगरे मागरे गरे सनी दारे।
2: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
3: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
2: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
3: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
2: अब दोनों एक ही ऐप डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

म्यूजिक हर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। आज की थीम है गर्मियां और फैशन। आपके मैसेजेस का हमें है इंतजार। ईमेल आईडी है airkansoemediae@gmail.com।

तो दोस्तों, फैशन का असली अर्थ है अपनी पहचान को खूबसूरती से प्रस्तुत करना। दूसरों की नकल करने से बेहतर है अपनी पसंद को अपनाना। गर्मियों का मौसम हमें सिखाता है कि सादगी में भी सुंदरता होती है। हल्के रंग, हल्की मुस्कान और हल्का मन, यही इस मौसम की असली पहचान है।

तो दोस्तों, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता पलक लुबना और यश मंसूरी जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में। इन्होंने लिखा है कि गर्मी और फैशन, आजकल जो सूरज महाराज आग बरसा रहे हैं उससे फैशन पर तो असर पड़ता है। इसमें हमें सूती कपड़े हल्के कलर वाले इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी बहुत है, सर ढक कर निकलें। भाई बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने और इस मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

तो दोस्तों, गर्मियां और फैशन पर आधारित हमारा म्यूजिकल प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको फैशन की बातें, बॉलीवुड के रंग और संगीत का ये सफर पसंद आया होगा। याद रखिए, फैशन वही जो आपको आत्मविश्वास दे और मौसम के साथ आराम भी। और अब प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक पहुंच रहा है आप तक, एंजॉय कीजिए और मुझे यानी ऋतु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आपने ट्यून इन किया है एफएम रेनबो कानपुर को। आपकी पसंद प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ढेर सारी ईमेल फरमाइशें हम तक पहुंच चुकी हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी पसंद प्रोग्राम। और आपकी पसंद प्रोग्राम में ये पहला गीत पहुंच रहा है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से है। ये गीत कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक ने दिया है संगीत। श्रॉफ रोड राजकोट से प्रेमा रानी जाटो, डॉली, सुरेश डोकर, प्रवीण राज, सोनी, श्वेता, प्रमिला, जेटली, दीपक, आशु जेटली। कापासेड़ा दिल्ली से फिरोज खान, अहमद मोगा, इकबाल मोगा, संदीप जाटव, सुरेश जाटव, राधिका शाक्य और दिव्या अग्रवाल की फरमाइश हमारे पास आ चुकी है। साथ ही संघार से आसिफ अली, बेबी आयशा, मोहम्मद हुजैफा भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप अनीता, डोंडी झांसी से प्रभा रानी जयपुरिया, देव शंकर डोम, राधिका रानी जयपुरिया, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश,

पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू भी जुड़ चुके हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांढा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक की भी फरमाइश आ चुकी है। तो आप सभी की पसंद पर लीजिए सुनिए मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये ट्रैक।

आपकी पसंद प्रोग्राम में अब आ रहा है दाग द फायर फिल्म का गाना। अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाजें हैं, समीर का लिखा गीत है और संगीत राजेश रोशन का। जेल रोड बक्सर से असलम अंसारी, शमशुल हक, शरफुद्दीन अंसारी, संदीप कुमार जटोलिया की फरमाइश आ चुकी है हमारे पास। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, असमान अंसारी। जेल रोड बक्सर से एस डी राज अंसारी, सुल्तान अंसारी। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल, मुरली क्षत्रिय साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, अब्दुल हक डाबर, जिया उल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी।

उत्तम नगर दिल्ली से फरमाइश आई है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश की। न्यू दिल्ली से सुनना चाहा है कमलेश, मुकुल और सचिन और दीपांशु ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी। बागामुड़ा कोमाखान छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। राहुल नगर अमरावती से महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा, हीरामन शेंडे। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौण, राधा नामदेव, अनिल जैन, संजय ढिंगिया, संदीप और दर्शन भाई। आप सभी ने सुनना चाहा है राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना, जिसे आवाज़ दी हैं उदित नारायण, अलका याग्निक ने, समीर के बोल हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
5: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
4: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
5: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
4: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल।
6: आपके दिल की धड़कन, आपका अपना हेलो कानपुर प्रोग्राम हम लेकर आ रहे हैं हर रविवार और सोमवार को
7: शाम 4 से 5 तक। सुनिएगा जरूर, ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर की म्यूजिकल हार्ट बीट।
6: तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हर बुधवार और गुरुवार को सुबह 10 से 12 के बीच। आपकी आवाज़ बनेगी रेनबो कानपुर की आवाज़।
7: अपनी आवाज को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल नोट कीजिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0512-254-1818,
6: यानी 0512-254-1818। तो हमें रहेगा
7: आपके फोन कॉल्स का इंतजार।
8: आपकी पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं FM रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रिक्वेंसी पर। प्रोग्राम में अगला गाना आप तक पहुंच रहा है दिल है कि मानता नहीं फिल्म से। कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। समीर के गीत को सुरों में पिरोया है नदीम श्रवण ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना, डॉक्टर अदीबा गुजरात, गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी, कंचन कुसुम, सरोज कुमार, सरोज सुनार, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा, मोर टक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला अंतिम, ज्योति शुभम, देवी किशन, भावना मनमानस, कनिका पटेल, खंडवा रोड सनावा से जुड़ चुके हैं शाहबाज अरबाज, फरहाज फरदीन, समीर मोइन शेख, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई, दुखनी सदफ, आरजू जूही, इकबाल इमरान अहमद, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद और फूल वाले परिवार के सभी लोग।

आपके पसंद प्रोग्राम में लीजिए सुनिए हीरो फिल्म का गाना, जिसे गाया है मनहर और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगदाब।

पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि कृष्णा, ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनाबाद सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अबान और परिवार के सभी लोगों की। साथ ही हमारे पास जुड़ चुके हैं नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। तो चलिए, आप सभी की पसंद पर पहुंच रहा है आप तक हीरो फिल्म का ये ट्रैक।

जीत फिल्म का गाना लीजिए, सुनिए अलका याग्निक विनोद राठौर की आवाजों में। समीर का लिखा गीत है और संगीत नदीम श्रवण का। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। और इसी के साथ परभणी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं रूपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और परिवार के सभी लोग। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार। और टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, त्रिपिता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका, वाणी थांदी। मोदी चौक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी की फरमाइश आ चुकी है हमारे पास। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से ये फरमाइश हम पढ़ चुके हैं। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं जीत फिल्म का ये ट्रैक।

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आपकी पसंद प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर से 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। दोस्तों, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से हमारे पास फरमाइश आ चुकी है। बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, पीरा बाजार, झुमरी तलैया से शिवानी कुमारी, प्रियंका, अभय कुमार, गुड्डू, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध, बसंत लाल, हीरा, मोती, पन्नालाल और बीके सिन्हा की। और ये फरमाइश आई है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। सुनना चाहा है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिज खातून, कुमार हिड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, मालियान, सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम आदि जैन, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, आजाद नगर लक्सर से गुलाम साबिर राही, मोहम्मद ताज अंसारी और मेहरा जहां। तो चलिए, आप सभी की पसंद पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं सड़क फिल्म का ये गाना, जिसे आवाज दी है कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल ने। समीर का लिखा गीत है और संगीत नदीम श्रवण का।

आपके पसंद प्रोग्राम के अंत में लीजिए सुनिए सिर्फ तुम फिल्म का गाना। जसविंदर नरूला और साथियों की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है। पटेल नगर मालौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू की फरमाइश आई है। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू और इसी के साथ पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, बीरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला, भावेश सैनी और जैमिन।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को खरीफ 2026 के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है और इसके लिए भारत सरकार के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है। श्री शाही ने कहा, कल लखनऊ में कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बीज निगम बिक्री केंद्रों पर समय से बीज नहीं पहुंचाता तो इसके लिए जिम्मेदार सभी कार्मिकों और अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि जो बीज राज्य में उपलब्ध नहीं है उनका प्रबंध अन्य राज्यों से तत्काल किया जाए और किसानों को एडसोर्स सब्सिडी देने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। हमीरपुर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अभिषेक गोयल द्वारा संबंधित विभागों के साथ बैठक कर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और सभी विभाग मिलकर दुर्घटना नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में ब्लैक स्पॉट सुधार, अवैध पार्किंग नियंत्रण और स्कूल वाहनों की जांच पर विशेष जोर दिया गया। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। भीषण गर्मी से यहां लोग बेहाल हैं। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स की भिड़ंत

जो आप किंग्स के साथ हो रही है। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पंजाब किंग्स को हर हाल में एलएसजी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करनी होगी। लखनऊ की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम क्षेत्रीय समाचार एकांश की प्रस्तुति।
3: विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे, प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जनजीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
4: प्रदेश भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। मई के महीने में प्रदेश के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जबकि बुंदेलखंड का बांदा लगातार देश के सबसे गर्म स्थानों में शामिल है। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक दर्ज किया गया। वहीं प्रयागराज, हमीरपुर, झांसी, आगरा और जालौन जैसे जिलों में भी तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। भीषण गर्मी से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि साल दर साल जलवायु में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। बांदा में ज्यादा तापमान उसकी भौगोलिक स्थितियों के कारण है।
5: तापमान बढ़ने की वजह से गर्म दिनों और गर्म रातों की संख्या बढ़ रही है, जबकि ठंडी का मौसम जो है वो श्रिंक हो रहा है। बांदा जो या प्रदेश का पूरा ही दक्षिणी इलाका जो है वो फेवरेबल रीजन होता है ज्यादा तापमान के लिए। उसके कई सारे भौगोलिक कारण भी हैं और कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। बांदा जो है वो जलवायु तौर पर भी सबसे गर्म रहने के लिए उसकी जलवायु ही फेवर करती है। लेकिन अगर इस साल की परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जैसे मैंने बताया कि उत्तरी इलाके में ज्यादा तापमान होंगे, पूरे पूर्वांचल में ज्यादा तापमान होंगे, तो इसके लिए दो तीन फैक्टर होते हैं। जो ग्लोबल फोर्सिंग है या रिमोट फोर्सिंग हम बोलते हैं, वो इनसो होती है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन।
4: अत्यधिक तापमान के कारण हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोगों का खास ध्यान रखना होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और हीट वेव को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने भी खास तैयारी की है। अस्पतालों में अलग से इंतजाम करने के साथ ही लोगों को गर्मी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी और सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड का इंतजाम किया है। गाजियाबाद के सीएमओ अमित विक्रम ने बताया कि विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि गर्मी में अनावश्यक बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से पहले पर्याप्त पानी का सेवन करें और सर ढककर ही बाहर निकलें।
6: हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में तीन बड़े जनपदीय लेवल के चिकित्सालय हैं, तीनों में 10-10 बेड्स का हमने कोल्ड रूम थे, उसकी तैयारियां हो चुकी है। सभी जगह पे ORS और जिंक का टैबलेट्स और सॉल्यूशंस वगैरह सब हैं और पानी पीने का साफ पेयजल और कूलर्स वगैरह सब जगह इंस्टॉल्ड है।
4: बुंदेलखंड के जिलों में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आवश्यक दवाओं, ORS और ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। टीमें लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई हैं।
7: इस समय है कि काफी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसके बढ़ने की

0: संभावना है। मेरा सभी लोगों से सबसे पहले तो अनुरोध है कि जो विशेषकर समय जो होता है गर्मी का, वो अपना सुबह 9-10 बजे से लेकर जो शाम के 4-5 बजे तक रहता है, अगर कोई विशेष कार्य हो तो ही आप इस समय अपने घरों से बाहर या अपने जो कार्यस्थल है उससे बाहर निकलें, और जब भी खुले में निकलें या कहीं भी जाएं तो विशेषकर अपने साथ पानी की उचित व्यवस्था या इलेक्ट्रोलाइट की या नींबू पानी इत्यादि इस तरीके का अपना ध्यान जरूर रखें। अच्छे से अपने खान पान का ध्यान रखें।
1: शहरों में गर्मी ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या और कामकाज को प्रभावित किया है। खेतों में काम करने वाले किसान हो, मजदूर वर्ग या पशु, गर्मी का असर सब पर दिख रहा है। दोपहर में अधिक तापमान के कारण किसान खेतों में सुबह और शाम ही काम के लिए जा पा रहे हैं। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और दिहाड़ी श्रमिकों को तेज धूप में काम करने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रावस्ती की जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी दोपहर के समय घरों में ही रहने की अपील की है और बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी बिजली के विशेष प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं।
2: हीट वेव के दृष्टिगत जनपद श्रावस्ती में सभी सीएचसीज पर जिला अस्पताल में कोल्ड रूम की व्यवस्था की गई है और नगर क्षेत्रों में, गांव क्षेत्रों में जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है और नगर पालिका को बताया गया है कि जितने भी वाटर कूलर्स हैं वो ठीक चलते हैं और पोखरों के लिए, तालाब के लिए भी पंचायती राज से कोऑर्डिनेट करके व्यवस्था।
1: गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच धर्मनगरी अयोध्या में राम भक्तों और भगवान दोनों की सेवा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि दर्शन मार्ग पर कैनोपी और टेंट लगाए गए हैं। जहां जहां नए दर्शन स्थल बनाए गए हैं वहां विशेष मैटिंग और कारपेट बिछाए गए हैं ताकि भक्तों के पैर गर्म जमीन से न जलें। दर्शन के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े हॉल तैयार किए गए हैं जहां बैठने, चिकित्सा और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
3: श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ने जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार, जहां से श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं, उसके नजदीक एक ऐसा शेड निर्माण किया जिसको तीर्थयात्री सेवा केंद्र नाम दिया है। वहां पर छाया है, लगभग 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, व्यवस्थाएं हैं नित्य उपयोग की वो उपलब्ध है, वहीं से व्हीलचेयर मिलती है, वहीं से उनके पास आदि की व्यवस्था होती है, जल पीने की व्यवस्था है, चिकित्सा की व्यवस्था है। वहां से हमारे भक्तगण निकलते हैं तो कैनोपी प्रारंभ हो जाती है, किसी को भी धूप में चलने की आवश्यकता नहीं है, 2-4 कदम की बात छोड़ दें तो।
1: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव की परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं की अटूट आस्था निरंतर बनी हुई है। प्रतिदिन औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभु शरण ने बताया कि धाम परिसर के विभिन्न स्थलों पर शुद्ध RO वाटर कूलर स्थापित किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
4: जगह जगह पे वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि ठंडे पानी मिल सके। जहाँ पे वाटर कूलर नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े मटकों में ठंडे जल रखवाया गया है। कई जगहों पे ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था है। उनके सर पे छाया रहे इसलिए धाम में हर जगह पे जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाया गया है।
1: साल दर साल बढ़ती गर्मी और लू मौसम में हो रहे बड़े बदलावों का न केवल बड़ा संकेत है बल्कि ये चेतावनी भी है कि हमें जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण जैसे उपायों पर गंभीरता से काम करना होगा। जागरूकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही बढ़ते तापमान और उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है।
5: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव के आम जन जीवन पर प्रभाव और बचाव के लिए प्रशासनिक इंतजाम पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।
6: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
7: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
8: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
9: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय

0: सीधे रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: पांच बजकर 12 मिनट और ये देखिए सेकंड्स के बाद कैसे मिनट्स चेंज हो जाते हैं और हो गए हैं पूरे 5:13 और 4 सेकंड। 107 FM रेनबो पर आपका वेलकम करती है आपकी रेडियो साथी अलका। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो चुका है टॉप 10 और जल्दी जल्दी आपको आज के टॉप 10 गानों को एंजॉय कराना है। लेकिन गाने कहाँ से लेकर आई हूँ सबसे पहले तो ये बताना है। 90 का दौर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1990 की। 90s का जो दौर था वो बॉलीवुड संगीत का सबसे सुनहरा और सबसे सदाबहार दौर माना जाता है। जुलाई के सुहाने और मानसून के मौसम के मिजाज के गानों को आज चुनकर लाई हूँ मैं आपके लिए। जी हाँ, यहाँ खूबसूरत आवाजों ने खूब धूम मचाई और आज हम आपको लेकर चलेंगे सीधे 90s के दशक में, उस जादुई दौर में जहां नूडल्स से ज्यादा गानों के रिमिक्स नहीं बनते थे बल्कि सीधे दिल को छूने वाले ओरिजिनल मेलोडीज बनती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, खूबसूरत गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।

और परदेसी परदेसी नंबर 10 पर उस वक्त जम कर रहा था। और बात आती है अब नंबर 9 की, 1992 में आई सबके दिलों की धड़कन बनने वाली फिल्म बेटा। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी ने भी धमाल मचाया, और कहानी ने जितना धमाल मचाया उससे कहीं ज्यादा इसके गानों ने धमाल मचाया। माँ और बेटे के प्यार को झलकाती ये फिल्म, जिसका गाना था उस वक्त नंबर 9 पर। तो आइए इस खूबसूरत गाने को इंजॉय करते हैं।

So, आज आप 90s के ट्रैक्स को एंजॉय कर रहे हैं अलका के साथ आज के टॉप 10 में, और अभी फिलहाल नंबर 10 और नंबर 9 को हम एंजॉय कर चुके हैं और अब बारी आ रही है नंबर 8 की। जी हाँ, तो 90s के जुलाई मंथ के इन टॉप

जिन सॉन्ग्स को आप इंजॉय कर रहे हैं, बाहर सोचिए आप कि जुलाई मंथ में झमाझम बारिश हो रही होती थी और हाथ में गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ और प्याली होती थी, बैकग्राउंड में कुमार शानू और उदित नारायण का कोई नगमा, उफ क्या बात है ना, दिल तो पागल हो ही जाता है। बस नंबर 8 पर रही चार्टबस्टर फिल्म और उसका टाइटल ट्रैक। अब कौन सी थी ये चार्टबस्टर मूवी और उसका क्या था टाइटल ट्रैक, आइए आपको इस ट्रैक की तरफ ले चलते हैं।

सो फ्रेंड्स, काउंटडाउन का सिलसिला इसी तरह लगातार चल रहा है। नंबर 10 से शुरुआत करकर अब हम पहुंच चुके हैं नंबर 8 को भी एंजॉय कर चुके हैं और बारी है नंबर 7 की। और इसके बाद 1995 में आई सिमरन और राज की वो जोड़ी जिसने हर दिल को अपना दीवाना बना दिया था। बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ फिल्म DDLJ की। और इसके जो सॉन्ग्स थे, जो स्टोरी थी, वो लोगों के दिलों को पूरी तरह से छू चुकी थी। होता यूं था कि जैसे ही ये ट्रैक प्ले होते थे, उस वक्त हर लड़का खुद को राज और लड़की खुद को सिमरन समझ बैठती थी। तो चलिए उस दौर के इस खूबसूरत गाने को करते हैं एंजॉय। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तानें। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें। चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी हाँ, और आ गए हैं अब नंबर 6 पर हम। तो नंबर 6 की बात करते हैं 1991 में उस फिल्म की, जिसके गानों ने उस वक्त हर कैसेट की दुकान पर लाइन लगवा दी थी, और वो फिल्म थी साजन। नदीम श्रवण का संगीत, समीर साहब के लिखे बोल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की वो मखमली सी आवाज। तो सुनिए ना नंबर 6 पर ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ, गाने ही कुछ ऐसे हैं कि प्यार आपको हो ही जाएगा इन खूबसूरत गानों से। और एक के बाद एक चलते हुए हम पहुंच गए हैं इस वक्त कहां पर, नंबर 5 पर। चूंकि नंबर 6 के बाद बारी अब नंबर 5 की आई है। अपने पैरों पर ये पैर अपने साजन फिल्म ने ही जमा रखे थे, नंबर 6 पर भी और नंबर 5 पर भी बिल्कुल। तो चलिए एक बार फिर से खो जाते हैं यादों के इस सफर में फिल्म साजन के इस खूबसूरत गीत के साथ।

तो फ्रेंड्स अब बारी आ गई है नंबर 4 की। जी हाँ, चूंकि ये दौर बारिश का उस वक्त था, क्योंकि आज हम 90s के जुलाई मंथ के टॉप 10 सॉन्ग्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो उस समय बारिश का मौसम था, तो बारिश के जो गाने थे वो लोगों को खास पसंद आते थे, इसीलिए नंबर 4 पर जगह बना रखी थी उस वक्त फिल्म नाजायज के इस सॉन्ग ने। तो आइए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने इस काउंटडाउन शो में।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
4: सो फ्रेंड्स, 5:46 और 23 सेकंड हो चुके हैं नंबर 10 से चलते चलते हम पहुंच गए हैं नंबर 3 पर। जी हाँ, वैसे तो बहुत सारे ट्रैक्स आप इंजॉय कर चुके हैं 90s के इन ट्रैक्स को, जो कि जुलाई मंथ में जिन्होंने धमाल मचा रखी थी, बरसात के मौसम में धमाल मचा रखी थी, उन ट्रैक्स को आप इंजॉय करते आ रहे हैं लगातार मेरे साथ आज के टॉप 10 में। बात करें अगर 1942 लव स्टोरी की, तो ये एक जो सॉन्ग था उस वक्त सबकी जुबा पर सबसे ज्यादा टिका हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं, एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, और ये खूबसूरत सा गाना नंबर 3 पर उस वक्त इसने बहुत अच्छी तरह से जगह बना रखी थी। और फिलहाल इस ट्रैक की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन नंबर 3 पर जो जगह बनाई हुई थी वो इस खूबसूरत गाने ने बनाई हुई थी। ये भी 1942 अलव स्टोरी का था, रिम झिम रिम झिम रुन झुन रुन झुन। तो आइए इस ट्रैक को इंजॉय करते हैं, स्टे ट्यून्ड।

और इसके बाद नंबर टू की आती है बारी, जहां पर एक ट्रैक ऐसा था जिसने जाकर अपने पैरों को जमा रखा था, और मैं बात कर रही हूँ लगान फिल्म की। तो लगान फिल्म के इस ट्रैक को जगह मिली हुई थी उस वक्त नंबर टू पर।

वैसे दौर की बात हो रही है 90s की, और उस वक्त जो बारिश का मौसम रहा था, जुलाई का जो महीना चल रहा था, उस वक्त जो भी मूवीज थी जिन्होंने धमाल मचा रखी थी, जो लेटेस्ट थी, जो कुछ मंथ पहले आ चुकी थी, जो आने वाली थी, उनके ट्रैक्स ने चारों तरफ धमाल मचा रखा था। और अगर अपनी आंखों को बंद करें तो 90s के दशक का जो वो कॉलेज का दौर था वो आपको बेझिझक याद आ ही जाता है। बिल्कुल। वैसे दोस्तों, जब जुलाई और बारिश की बात हो और पीले रंग की साड़ी में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की याद ना आए, नॉट पॉसिबल। 1994 में एक फिल्म आई मोहरा, फिल्म एक्शन थी लेकिन इसके गानों ने जो है वो बहुत धूम मचाई थी और देश के लगभग हर दिल में आग लगा दी थी। तो आइए इस खूबसूरत गाने को एंजॉय करते हैं जो उस वक्त था नंबर वन पर, और इसी काउंटडाउन शो को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। इन टॉप 10 सॉन्ग्स को आपने खूब एंजॉय किया, नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ नए एरा के, नए दौर के कुछ 10 खूबसूरत गाने टॉप 10 के इस प्रोग्राम में। फिलहाल आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट शो कुछ ही देर में। शाम अवध, स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, सेवा मित्र व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। लगातार घटते भूजल स्तर और अस्तित्व खो रहे तालाबों को बचाने के लिए फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव में इस अभियान की शुरुआत की। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत तालाबों को नया रूप दिया जाएगा। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां को पहले सुनवाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। साथ ही 50,000 रूपये के जुर्माने को बढ़ाकर 5,00,000 रूपये किया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। उनके 50,000 के जुर्माने को बढ़ाकर 3,50,000 रूपये कर दिया गया है। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा केवल चुनाव जीतने वाली पार्टी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं। अमरोहा के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित किया गया। इसी क्रम में थाना बछरायों में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव द्वारा लोगों की शिकायतों को सुना गया। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों और शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कभी अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई।
3: शाम होने को है।
2: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।
4: के

0: लखनऊ है तो महज गुंबद मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ फास्ट ट्रैक्स को एंजॉय करने के लिए पूरा एक घंटा रही हमारे साथ। जी हाँ, 100.7 FM रेनबो पर आरजे अलका आपके साथ रहेगी। शाम या अवध में बात होती रहेगी कुछ खास अपडेट्स की, लेकिन साथ साथ इन फास्ट ट्रैक को एंजॉय करते चलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

फ्रेंड्स, वक्त हो गया है आपको अगली अपडेट की तरफ लेकर चलें। तो इस वक्त आपको बता दें कि भाई 25 और 26 मई को एक खास ट्रेन चलाई जाएगी, और वो क्यों चलाई जाएगी वो भी आपको बता दें। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर जो गंगा दशहरा मेला है उसके लिए हरिद्वार से 25 और 26 मई को विशेष ट्रेन चलेगी। इसका जो समय होगा वो भी आपको बता दें, 4:35 पर ये ट्रेन वहां से चलेगी और अगले दिन सुबह 3:30 पर ये लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। इसके अलावा सिर्फ हरिद्वार से लखनऊ ही नहीं बल्कि लखनऊ से हरिद्वार के लिए भी 26 और 27 मई को 5:30 चलकर ट्रेन जो है वो हरिद्वार 4:15 पर पहुंचेगी। ट्रेन की जो सभी बोगियां हैं वो आपको जनरल कैटेगरी की मिलेंगी, यानी जनरल श्रेणी की ही मिलेंगी। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरीज नहीं मिलेंगी, एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी नहीं मिलेगा। जनरल कोच के साथ ये ट्रेन जो है सुविधा देने के लिए, यात्रियों को, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस ट्रेन को चलाया जा रहा है गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर। फिलहाल अभी और भी एजुकेशनल बहुत सारी अपडेट्स होंगी आज के शामी अवध में। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को।

तो फ्रेंड्स, वक्त हो गया है अगली अपडेट का, आपको आगे ले चलने का कि कुछ एजुकेशनल जानकारी है मेरे पास आपके लिए। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजन होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की जो संभावित तिथियां हैं वो जारी की हैं। अभी इन डेट्स को कन्फर्म डेट्स नहीं माना जाएगा, ये एक संभावित तिथियां हैं। कॉलेज प्रशासन की ओर से ये प्रस्ताव जारी किया गया है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश परीक्षा है वो 23 जून से 25 जून तक आयोजित की जाएंगी। तो परीक्षा

कार्यक्रम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। फिलहाल अब ये जानकारी आपको बता दें कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इन परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई वो काफी स्पीड अप है, लेकिन आपको डेट्स आने के बाद और भी तेजी के साथ पढ़ाई की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रह गया। ये प्रवेश परीक्षाएं संभावित तिथियों के साथ बताई गई हैं, 23 से 25 जून। अभी इन तिथियों में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अरे गाड़ी रोको, ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, चालान काटना पड़ेगा तुम्हारा तो। अरे नाम बताओ अपना।
2: याज्ञवल्क्य दास रामानुजम स्वामी जुजुत्सु।
1: क्या क्या? अच्छा चलो चलो चलो, अब की बार छोड़ रहा हूँ, फिर कभी सिग्नल नहीं तोड़ना।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: कहिए कहिए,
5: सुनिए सुनिए।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

तो फ्रेंड्स, टाइम को देखते हुए अपडेट्स की तरफ आगे बढ़ना होगा क्योंकि 6:27:22 हो चुके हैं। और आपको बता दें कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 21 मई को प्रदेश भर में 7,994 पदों के लिए जो परीक्षा लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा आयोजित की थी उसकी प्रोविजनल उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी गई है। ये आयोग की जो वेबसाइट है upssc.gov.in पर 28 मई तक उपलब्ध रहेगी। अभी ये उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है, 28 मई तक इसकी उपलब्धता इस साइट पर रहेगी upssc.gov.in पर। परीक्षा जो है ये 21 मई को करवाई गई थी और अपनी सुविधा के अनुसार आप इस वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी को देख सकते हैं। फिलहाल इस परीक्षा में 3,66,712 अभ्यर्थी फिलहाल शामिल हुए थे। उत्तर कुंजी आप विजिट कर सकते हैं जिसके लिए आपको 28 मई तक का टाइम दिया गया है।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
3: अरे अरे ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये प्लेन क्रैश हो जाएगा।
4: कुछ खराबी आ गई लगता है इसमें। अरे अरे भाई, किसी को बचने की दुआ आती है क्या?
5: हाँ मुझे आती है।
4: अरे तो भाई आप दुआ कीजिए, पैराशूट वैसे भी है कम है।
6: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहले मुलाकात होती है। दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
7: रंग दे
6: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
8: मन क्यों

तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें सुबह 6 से रात 12 बजे तक।

दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

0: सो फ्रेंड्स, 6:45 मिनट 58 सेकंड हो चुके हैं और वक्त बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप इस वक्त 100.7 FM रेनबो पर एंजॉय कर रहे हैं आज का शाम में बदलका के साथ, और शहर की कुछ ट्रैफिक अपडेट्स हैं हमारे पास, और हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं विकास सिंह जी। तो आइए करते हैं उनसे बात और लेते हैं उनसे जानकारी कि क्या है ट्रैफिक अपडेट्स इस वक्त लखनऊ में, क्या हलचल है। हेलो, हाँ जी सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका। जानना चाहेंगे लखनऊ में इस वक्त ट्रैफिक का हाल क्या है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी वर्तमान में लखनऊ शहर में सभी जगह यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं भी अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं क्योंकि पीक आवर है, तो ऐसे में कुछ प्रमुख मार्गों पर हल्का प्रेशर रहता है, परंतु अभी हम हर जगह ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस की मदद से यातायात को सामान्य बनाए हुए हैं। जैसा कि आज आप सभी को विदित है कि IPL मैच है, और इस दौरान IPL मैच में हमारा जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक प्रेशर रहता है वो शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड रहता है
0: जी।
1: इस दौरान जो हमने ट्रैफिक व्यवस्था कर रखी है उसमें डायवर्जन हमारा अहमा मऊ चौराहा से डायवर्जन रहेगा, और दूसरी तरफ हमारा डायवर्जन कमता तिराहा से रहता है। तो प्रमुख रूप से हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पिक एंड ड्रॉप पॉइंट की व्यवस्था है वो कमता के पास में अवध बस अड्डे के आसपास, तथा अगर आगे बढ़ेंगे तो सुशांत गोल सिटी थाने के पास में पिक एंड ड्रॉप पॉइंट रहता है, और हमारा 200 सैया मातृ अस्पताल है वहाँ पर पिक एंड ड्रॉप पॉइंट है। दूसरी तरफ हम अगर SCL की बात करें तो SCL से अंदर सुल्तान गोल सिटी थाने के अंदर, तथा SCL से दाहिने तरफ अगर आप आए तो इकाना की तरफ जो है हमारा पार्किंग व्यवस्था के लिए हमने प्रावधान रखा हुआ है। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आप मैच देखने आ रहे हैं तभी कोशिश करें कि आप शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड का प्रयोग करें, अन्यथा आप वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, ज्यादा उचित रहेगा इस मार्ग के प्रयोग करने से बचे। शाम के समय में हमारा ये जो ट्रैफिक रहता है ये लगभग जो है 9-10 बजे तक ज्यादा ट्रैफिक, 10 बजे तक ज्यादा ट्रैफिक लोड रहेगा, तो इस दौरान जो है इस रोड को अवॉइड करें। भारी वाहन चालकों के लिए ये अनुरोध है कि कृपया

0: आज हम 9 इंची हमारा 11 बजे से ज्यादा बढ़ करके रहेगा। ऐसे में आप किसान पथ और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का प्रयोग करें ताकि आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। अगर किसी को आकस्मिकता की स्थिति है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9494451555 पर संपर्क कर हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपके बेहतर यातायात, सुरक्षित यातायात के लिए प्रतिबद्ध है, तत्काल आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जी
1: थैंक यू सो मच विकास जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।
1: तो दोस्तों अब वक्त हो गया है कि आगे बढ़ चलें और आपको खूबसूरत गानों का ये सिलसिला जो है वो लगातार एंजॉय आप करते रहें, लेकिन अभी अपडेट्स रहेंगे आप सभी के लिए अभी भी बहुत सारी। स्टे ट्यून्ड 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की 100.7। माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
3: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
1: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के वो खूबसूरत अफसाने।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow.
3: धड़कन लखनऊ की।

जुलाई और 8 और 9 जुलाई को ये निरस्त रहेगी। इसके अलावा ऐशबाग गोरखपुर एक्सप्रेस जो है वो 7 से 10 जुलाई तक निरस्त रहेगी। इतना ही नहीं, गोरखपुर ऐशबाग एक्सप्रेस 8 से 11 जुलाई तक निरस्त रहेगी। दरभंगा नई दिल्ली दरभंगा विशेष गाड़ी 8 से 10 जुलाई तक ऐशबाग नहीं आएगी। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन बरौनी एक्सप्रेस 9 जुलाई को बुड़वल जरवल रोड और करनैलगंज नहीं जाएगी। कुछ इस तरह के बदलाव किए गए हैं अभी फिलहाल IRCTC की तरफ से। अभी फिलहाल ट्रेनों में कुछ टाइम में चेंजेस भी किए गए हैं, रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया गया है, निरस्त भी किया गया है। तो संभावना यह है कि कहीं भी जाने से पहले आप अपनी संभावित जो भी ट्रेन है उसकी जो करंट लोकेशन है वो जरूर जान लें, उसकी जो स्थिति है वो जरूर जान लें कि ट्रेन कहीं निरस्त तो नहीं है, उसमें कुछ रूट डाइवर्ट तो नहीं किया गया है या फिर उसका जो टाइम है उसमें कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। तो इस तरह की जानकारी लेने के बाद ही आप जरूर प्रस्थान करें, अन्यथा आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल गाने अभी लगातार जारी हैं। श्यामे अवध में ट्यून रखिए 100.7 FM रेनबो हल्का के साथ।

सो लखनऊ वासियों के लिए अगली जो अपडेट है वो आपको बता दें कि लखनऊ से होकर चलने वाली कुछ ट्रेनें इस वक्त निरस्त कर दी गई हैं। अगर आप इन ट्रेन्स में सफर करने की सोच रहे हैं या सोच रहे थे या फिर आप कहीं जाने वाले थे इन ट्रेन्स के जरिए, तो आपको बता दें कि ये ट्रेन फिलहाल निरस्त चल रही है। गोरखपुर गोमती नगर एक्सप्रेस 6 से 10 जुलाई तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा गोमती नगर गोरखपुर एक्सप्रेस 7 से 11 जुलाई तक निरस्त रहेगी। गोरखपुर लखनऊ जंक्शन गोरखपुर एक्सप्रेस 8 से

वेल फ्रेंड्स, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का टाइम हो चला है क्योंकि 6:54 हो गए हैं और आज के शामी अवैध को यहीं पर अलका करती है वाइंड अप। कुछ ही देर में आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम लेकर आ रही हूं। अपनी पसंद के ट्रैक्स को एंजॉय कीजिएगा, मिलाएगा 2238852 या 2238845 और अपने ट्रैक्स को एंजॉय कीजिएगा 107 FM रेनबो पर। चलते चलते बस यही कहूंगी कि इस बदलते मौसम में, इस जलती धूप में और इस परेशान करती गर्मी में अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। काम सर्वोपरि होता जरूर है लेकिन सेहत जो है उससे भी बढ़कर होती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने आप काम पर ध्यान दें जरूरी है। और कोशिश कीजिए कि घर के छोटे बच्चे और घर के बुजुर्ग, अगर उन्हें आवश्यकता नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। अनावश्यक घूमने से कुछ भी हाथ नहीं लगता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। तो कोशिश कीजिए कि जिनको जरूरत हो वही घर से चलती धूप में बाहर निकले। 12 से 4 का समय वेरी क्रिटिकल टाइम होता है हमारी इस वक्त इस तेज धूप में हमारी सेहत के लिए। तो कोशिश कीजिए अच्छी डाइट के साथ, बचाव के साथ इस बड़ी कठिन, मुश्किल और तेज धूप से भी बचा जा सकता है। फिलहाल खूबसूरत गाना आप सभी के लिए, स्टे ट्यून्ड 107 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के साथ बज चुके हैं और अब सुनिए प्रदेश की टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए भारत विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रोजगार मेले में शामिल हुई। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था उसे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक की। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के निर्देश दिए। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सपा नेता आजम खां को पहले सुनाई गई 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल तक कर दिया है। साथ ही 50,000 रूपये के जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रूपये कर दिया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से अभियान की शुरुआत की। प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है। लखनऊ में नया भव्य और आधुनिक तकनीक से लैस विधान भवन का निर्माण कराया जाएगा। यह नया कॉम्प्लेक्स गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से डिजाइन और प्लानिंग के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट चयन का टेंडर जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंधक निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में दिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्यवाही 220 केवी मुरादनगर बापू धाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी तथा आलिम बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। 55,788 छात्र छात्राएं सफल घोषित किए गए। मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कल कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसी के साथ ये टॉप 10 समाचार समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड दुबग्गा।

बिल्कुल, बताने से ही पता चलता है, छुपाने से कुछ भी पता नहीं चलता। तो जल्दी से बताइए अपने पसंद के गाने, आप क्या सुनना चाहते हैं आज हेलो एफएम में, और उसके लिए मिलाइए 2238852 और 2238845। तो इस वक्त हेलो एफएम में आरजे अलका आपके साथ है, पूरा एक घंटा रहूंगी और आपके पसंद के ट्रैक्स को प्ले करती रहूंगी। तो देर किस बात की है, गाने को एंजॉय करते जाइए और मिलाते जाइए नंबर

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: सो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम हेलो एफएम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी वेलकम है आपका भाई। जानी पहचानी सी प्यारी सी आवाज किसकी है
3: जी? सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम जी। मेरा नाम है दीदी, आपको दीदी सबसे पहले प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम।
2: आपको भी सलाम प्यार भरा और
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो बताए भाई फैज, मैंने तो पहचान लिया आपको।
3: जी जी जी दीदी, मेरा नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
2: मैंने पता है आपका जो अंदाजे बयां है वो बिल्कुल ही अलग है, मतलब जो एक रिदम में आप बहुत रिदम में शुरुआत करते हैं और अपना जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो काफी रिदम वाला होता है, बिल्कुल डिफरेंट। सो फैज बताएं आज क्या सुनना चाहते हैं।
3: जी दीदी आज सुनेंगे तो पहले पहले ये बताइए दीदी आपके लखनऊ का मौसम कैसा है?
2: बहुत ही बेकार है फैज, बस क्या ही हाल है मत पूछिए, बदहाल है पूरा लखनऊ इस वक्त। इनफैक्ट बहुत गर्मी है और बहुत ज्यादा
3: यहाँ मैं मान के चलो 3:30 बजे आंधी थोड़ी आई थी, उसके बाद मौसम थोड़ा खुशमा हो गया तो उसके बाद फिर मतलब गर्मी पड़ने लगी।
2: वो तो बारिश का इंतजार तो सभी को है, थोड़ा बहुत पानी गिर जाना चाहिए ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ तो बताइए भाई, अब एक थोड़ा सा गाने से मूड चेंज किया जा सकता है।
3: दीदी गाने के बोल हम गुनगुनाना चाहते हैं, थोड़ा गाना थोड़ा गुनगुनाना चाहता चाहूंगा।
2: वो तो मुझे पता है आप हमेशा गुनगुनाते हैं, बताएं
3: जी।

0: फैज सुनिए मेरी बात। पहली चीज तो आपने गाने को बिल्कुल चेंज कर दिया, तू प्यार है किसी और का ना कि किसी और की। अब आपने डायरेक्टली किसी को इनडायरेक्टली बोल ही दिया है, तो अब जल्दी से नाम बता दीजिए किसको किसको आप सुनवाना चाहते हैं।
1: सबसे पहले गाना सुनवाना, सबसे पहले मेरी क्यूट सी प्यारी वाली आरजे अलका दीदी को,
0: थैंक यू।
1: और मोहम्मद साहबू भाई है, और मोहम्मद सद्दाम भाई है, मोहम्मद जावेद अख्तर भाई है, आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन अप्पा है, गुलप्पी है, साहिबा अंसारी है, साबिया अंसारी है, और यासिर हमीद भाई है, सुरभी सिंह है, बाबू अंसारी है, अकबर भाई है चौखंडी वाले, और वकील अहमद मंसूरी है, और मोहम्मद अमजद भाई है।
0: सभी को डेडिकेट, थैंक यू सो मच भाई फैज।
1: थैंक यू सो मच।

0: सो माय डियर लिसनर्स, नेक्स्ट कॉलर को लेने का हो गया है टाइम, तो चलिए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, मेरी प्यारी सी क्यूट सी अलका दीदी को हमारा प्यार भरा नमस्ते और प्यार भरा गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं आप?
1: जी मैं आपकी वही जानी पहचानी दोस्त पिंकी बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शिवगढ़ जिला रायबरेली से।
0: ओके पिंकी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम है आपका। भाई काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है पिंकी।
1: जी जी मैम, बहुत मैं आपको
0: हेलो
1: लेकिन बहुत जी मैम हेलो
0: हाँ बताएं क्या कह रही हैं
1: मैम। ये बोल रहे हैं कि कॉल लगाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल से कॉल लगती है मैम।
0: ये बात तो है, मतलब ये होता है ना, सभी लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो लाइन आपको बिजी भी मिलती होगी, कभी कभी फोन नहीं भी उठता होगा।
1: मैम मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो श्रोता शिकायत करते हैं कि मेरी कॉल नहीं लगती, आप कंटिन्यू प्रयास करिए, आपकी कॉल जरूर लगेगी। किसी शिकायत करने से मैम किसी की कॉल नहीं लग जाती।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करते रहना चाहिए। तो पिंकी बताएं आज कौन सा गाना सुनेंगी?
1: मैम जिगर मूवी से चला दीजिए प्यार के कागज से, दिल की कलम से, और मैम गाना डेडिकेट भी करना।
0: हाँ बिल्कुल बताइए किसको डेडिकेट करना चाहती हैं।
1: सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी मेरी अलका
0: दीदी, थैंक यू सो मच।
1: मेरी एक प्यारी सी क्यूट सी रीता मौसी हैं जो रामपुर से सुन रही हैं, उनको डेडिकेट करना चाहेंगे। और हमारी दोस्त हैं पूनम दीदी, गुंजन तिवारी, समा परवीन, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, महक अंसारी और ममता गौतम, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर और नीलम वर्मा है और वकील अहमद भाई है और मैं जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको।
0: पिंकी कोई रह तो नहीं गया?
1: सब लोग नाम लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू कॉल करने के लिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी।

0: भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है।
2: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
1: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
3: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से, अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
1: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवा योजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में MP-MLA सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
5: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग रोजाना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
1: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमोरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
6: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
1: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी

0: डिश।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्व नामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in। सूचना

0: और मुझे इस डोर ने खींचा अपने कॉलर की तरफ, और देखिए कॉलर से बात करने का मौका मैं तो बिल्कुल नहीं खोऊंगी। देखिए लाइन पर कौन है, उनसे करते हैं बात। हेलो,
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग, कौन बोल रहे हैं
1: जी? मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा, 12 नंबर।
0: तालिब, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम में आपका। कैसे हैं तालिब
1: जी? जी बढ़िया है, ठीक है।
0: तो बताइए,
1: आज थोड़ा सा राहत मिली है, आज जो आंधी वगैरह आई थी तो उसमें।
0: ये तो अभी बाराबंकी से हमारे फैज जी ने भी कॉल की थी, उन्होंने भी बताया कि शाम को आंधी वगैरह आई थी लेकिन वापस से गर्मी वैसी ही हो गई थी,
1: वापस फिर से उबाल मारने लगा।
0: मतलब हालत बहुत बुरी है, बिल्कुल
1: अच्छा,
0: सही।
1: सभी लोग कहते हैं कि हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हम इस मौसम को एंजॉय
0: कैसे एंजॉय करें। बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण भी हम सभी है ना, ये तो हम नहीं नकार सकते इस बात को। इतनी गर्मी का बढ़ना लगातार हर साल, रीजन भी तो हम सभी हैं इसका।
1: जी, बिल्कुल लोग हैं।
0: बिल्कुल, तो बताएं तालिब आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: आज का एनवायरनमेंट जो हिसाब से बदल गया है, आने वाले वक्त में बदलेगा तो उस हिसाब से बहुत दिक्कत होगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लगातार जो बदलाव हो रहा है।
1: जी बदलाव,
0: बताइए तालिब क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: हम गाना सुनेंगे फिर हेरा फेरी मूवी का है, भाई साहब का गीत है।
0: हाँ बिल्कुल, और किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: जी हमारे आसिफ अंसारी भाई हैं और साबिर अंसारी भाई हैं और अकबर भाई हैं। जी बस,
0: ओके, थैंक यू सो मच।
1: कॉल लग गई तो और भी अच्छे हो गए, अब सब चीज अच्छा लगने लगा।
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच तालिब कॉल करने के।
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: 7:41 18 सेकेंड अगले कॉलर के साथ लेते हैं लाइन पर। हेलो
1: हेलो मैम जी, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैम, संजू कौन बोल रहा हूँ, ग्राम सिकोरी जिला हरदोई से, संडीला से।
0: संजू जी हरदोई से, बहुत बहुत वेलकम है आपका प्रोग्राम में। संजू कैसे हैं आप?
1: जी मैम बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए मैम जी कैसे हैं?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज, क्या फरमाइश है आपकी?
1: जी मैम जी, आपकी प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेड प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगता है आपकी, जो बात है बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच संजू जी, और बताइए आज गाना क्या सुनना चाहेंगे और किसको सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मैम, गाना दिलवाले फिल्म का बताया था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।
0: हाँ।
1: और डेडिकेट ये है कि हमारे अरमान चाचा चाची दोनों लोग सुने रेडियो, हमारा बाहर रखा अंदर करके।
0: अच्छा।
1: और मोनू जी हैं, सुनील भाई हैं, विनीत भाई हैं, ओमकार भाई हैं, संतोष भाई हैं, इन सभी लोगों को डेडिकेट है और आपको।
0: थैंक यू सो मच संजू जी, आपका ट्रैक रहा रेडियो सेट पर, एंजॉय कीजिए।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
5: तो वक्त बढ़ गया आगे, 7:46 हो चुके हैं और कॉलर हमारे साथ अगले जुड़ गए हैं। चलिए उनका नाम पता जानते हैं, उनकी पसंद जानते हैं। हेलो
6: हेलो,
5: कौन बोल रहे हैं?
6: जी मैं मोहम्मद सद्दाम।
5: सद्दाम जी कहाँ से बोल रहे हैं?
6: जिला बारामूला से बोल रहा हूँ।
5: ओके, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका। कैसे हैं आप?
6: जी आपका प्रोग्राम सुनते बहुत अच्छा लगता है।
5: थैंक यू सो मच। और बताइए क्या कहना चाहेंगे?
6: टिकट करना चाहता हूँ।
5: हाँ जी
6: जी, समा परवीन है, गुलाब साफी है, साहिबा है, दादिया है, यासिर भाई, मोहम्मद आमीन है और मोहम्मद फैज भाई है, कम मोहम्मद कपिल भाई।
5: ओके, सभी को डेडिकेट किया है, लेकिन गाना बताएं कौन सा गाना?
6: गाने के बोल हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए।
5: ओके, हिना फिल्म का ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत
6: जी।
5: तो चलिए आपके साथ इंजॉय करते हैं इस ट्रैक को। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। थैंक यू।

0: सो फ्रेंड्स, 7:51 हो चुके हैं और चलिए बात करते हैं अगले कॉलर से, उनकी पसंद क्या है और कहाँ से उन्होंने हमें फोन मिलाया है। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: किराम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी बहुत दिनों के बाद फोन मिलाया।
0: हाँ जी, बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है जी। भगवान जी बताएं कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, गर्मी काफी पड़ रही है, हमारे इधर 45 डिग्री गर्मी पड़ रही है दीदी।
0: ये तो बात सही है, ऑलमोस्ट सभी जगह टेम्परेचर ऐसा ही जा रहा है, कहीं 42, कहीं 43, कहीं 45 और बहुत जगह तो इससे भी ज्यादा। और बताएं आज क्या सुनना चाहेंगे
1: दीदी? फिल्म का नाम है कुली नंबर वन और गाने के बोल है जेठ की दोपहर में पांव जले हैं।
0: ओके।
1: और आकाशवाणी रेनबो के आरजे हैं दीदी हमारी, तालनी दीदी है, चंद्रकला दीदी है, मोना दीदी है, अलका दीदी है, प्रीति दीदी है, तरन्नुम दीदी है और दिलपी दीदी है। आप सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: सो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को ऑलमोस्ट वाइंड अप करने का टाइम हो चुका है। 7:55 हो चुके हैं और अनवारो ला चुके हैं। प्रोग्राम आगे आप इंजॉय करेंगे इनके साथ अगले कुछ घंटे 100.7 FM रेनबो पर। लेकिन अभी हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं वो रह गए हैं, इनसे चलिए करते हैं बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते
0: मैम। नमस्ते जी, कौन बोल रही हैं?
1: मैं ममता बोल रही हूँ।
0: ममता जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका। बताएं आज क्या सुनना चाहेंगी?
1: मैं सॉन्ग सुन रही हूँ। पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूँ।
0: सिर्फ तो मूवी का ट्रैक। ओके, तो किसको डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको।
0: थैंक यू।
1: संदीला से हैं, गुलाबता देवी से हैं, रिंकी हैं, सीमा रावत से हैं, मतलब से
0: सभी लोगों को। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए ममता, थैंक यू। तो इस ट्रैक के साथ एंजॉय करते रहिए 100.7 FM रेनबो। मैं जा रही हूँ, वापस मुलाकात होगी आपसे सेम प्लेटफॉर्म 100.7 FM रेनबो पर। स्टे ट्यून्ड।

बजकर 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी में जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि विवादों का मौके पर जाकर त्वरित निस्तारण किया जाए तथा ग्राम सभा और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे तथा गर्मी के मौसम में विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, साफ सफाई और एंटी लार्वा छिड़काव जैसी व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से संचालित की जाए। बस्ती की जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने कहा कि गौ संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौ संरक्षण के लिए गठित अनुश्रवण मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक की। बैठक में जनपद के विभिन्न गौ आश्रय स्थलों की व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बीच मथुरा के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के ग्राम भैंसा स्थित अस्थायी गौशाला में दूषित भोजन खाने से 12 गौवंश की मौत हो गई, जबकि करीब 7 गौवंश की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिन्हें वृंदावन और नंदगांव के पशु चिकित्सालयों में रेफर कराया गया है। वहीं गौशाला में शेष बचे 128 गौवंश को राल गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला फूड प्वाइजनिंग का लग रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से हो रहा है। पंजाब किंग्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार लिखे जाने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 28 रन बनाए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अलसाई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें, तन्हाई का एहसास।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

रखे थे आपने दरवाजों के पट, और हल्की सी हवा चली और एक आवाज जानी पहचानी आपसे मुखातिब है। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। गर्म हवा की साजिशों को बेनकाब करती ठंडी फुहार आबशार, नफरत की तेज आंधियों के बीच टिमटिमाता पुरनूर प्यार आबशार। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में मैं हूं आपके साथ, आपका हम सफर अनवारुल हसन। कबूल कीजिए हमारा आदाब।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047

0: की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक आवश्यक सूचना सुनिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के लिए नामांकन आरंभ हो चुके हैं। ये पुरस्कार वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले बच्चों को दिए जाते हैं। 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। इस हेतु नामांकन awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरस्कारों के लिए स्वनामांकन और अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर जाएं। एक बार फिर से सुन लीजिए awards.gov.in।
2: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ, FM रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
2: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप? तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
1: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
2: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ FM रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
3: पहला नशा, पहला खुमार।
4: हाय, दिस इज उदित नारायण, यू आर लिसनिंग 102.2 FM रेनबो, शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहें और सुनते रहें शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।

कुछ यादों को ऐसे ही महफूज रहने दीजिए। कोई कहता है हटा दीजिए, मत हटाइए उन्हें। इन यादों को आईना बना लीजिए वक्त के साथ, और ये हम पर बिल्कुल कि हम किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, भले ही वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हों, वो चीज़ें ऐसी हों जो तकलीफ़ देती हों, लेकिन उसको हम एक बेहतर पॉजिटिव वे में अगर ले जाएंगे, सोचेंगे, तो उन चीज़ों से हम काफ़ी बेहतर चीज़ें कर सकते हैं। और वैसे ही हमें आपको करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपनी सोच को हमेशा बेहतर रखें और वक्त के साथ आगे बढ़ते चलें, यादों को अपनी धरोहर समझकर, संवार कर, सजा के हमेशा अपने साथ रखिए। इजाजत लेने का वक्त आ रहा है प्रोग्राम आबशार से। 8:40 तो हो चुके हैं और 8:45 पर हम आपको समाचार प्रभात के लिए, माफ कीजिएगा, समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे। 9 लौटेंगे हम, और तब रेनबो कैफे में जो हलचल मचेगी उसका अंदाजा बिल्कुल आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप रहते हैं अक्सर मेरे साथ। तो आज आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ काफी लंबे वक्त तक रहने वाला है। रात 12 तक हम रजनीगंधा की खुशबुओं में भी महकाएंगे, 10 से लेकर 12 तक। तो फिलहाल तो इजाजत दीजिए, बस एक रोशनी कायम रखिए उम्मीद की, तो फिर लौटेंगे वापस 9। इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को। शब्बा खैर।

समाचार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों की शांतिपूर्ण

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति। मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
5: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
2: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल कियुआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बात करते हैं बहुत ज्यादा तो फिर आना ही पड़ता है, क्योंकि अगर ना आए तो पेट खराब हो जाता है। तो अभी अभी एक साहब ने मुझे तुरंत इलाज बता दिया आप इनमें से। देखिए, लालपुर से, सीतापुर में जो लालपुर है वहां से अयोध्या प्रसाद जी ने मुझे तुरंत इलाज बताया कि अगर आपको लोग याद करें और आपका पेट गड़बड़ हो जाए, तुरंत तरबूज लीजिए और उसमें काला नमक लगा के खा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये हमें बता दिया कि हमें क्या करना है। और ये पीछे से, हाँ, ये बजना चाहिए, मुझे इससे लगता है खालीपन, लगता है कि अकेले हैं। और ये बजता रहता ना पीछे से म्यूजिक ऐसे, तो लगता है कि अकेले नहीं है, कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं वो बजा रहे हैं, तो डर नहीं लगता अकेले में। आपके और भी बहुत सारे मेल हम तक पहुँचने शुरू हो चुके हैं। मिस्टर जय की आईडी से मेल किसने किया है? जयराम जी ने किया है। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, और इन्होंने धन्यवाद हमें कहा है, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, और कहा है कि किसी भी प्यारे से गीत में हमारा मेल जरूर शामिल कर लेना। तो चलिए, हमने तो शामिल कर लिया आपका मेल। और आपका मैं देख रहा था कि मेल गया कहाँ। चलिए, हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं जब तक ये। अब देखिए, बहुत से मेल हम तक और भी पहुंच चुके हैं। गुलफ़शा सिद्दीकी, आपका ईमेल आपका आ चुका है हमारे पास। सलाम अलैकुम अनवारुल भाई, मैं गुलफ़शा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको चलिए आबशार भी बहुत अच्छा लगा इसके लिए भी। और इस वक्त मैं अपने घर की छत पर हूँ, धीमे धीमे हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। साहिब अंसारी, सादिया अंसारी, शमा परवीन, महक अंसारी, ममता गौतम, निशा अंसारी, हम सब लोग सुन रहे हैं। चलिए, क्या बात है, ये लगता है इसी हवा में जो हल्की हल्की सी चल रही है ना, इसी से हम आप तक पहुंच रहे हैं, इन्हीं हवाओं के ज़रिए, फिजाओं के ज़रिए। और ऐसे ही ये महक कायम रहेगी बहुत देर तक, बहुत दूर तक, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। बाबू अंसारी, आपने भी देवकली अहमदपुर बाजार से हमें ये मेल कर दिया है, क्या बात है। एक फ़ोटो भेजिए, वाली फ़ोटो नहीं होती है जो जिन्हें जो है बढ़िया, जिसमें आप देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, तो इस तरीके का एक डांसर उन्होंने हमको भेज दिया है और हम उसको देख रहे हैं। भाई भाई वाह, क्या पैर चलाए हैं इन्होंने। चलिए, अच्छा लगा। और कह रहे कि कैसे हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और कुछ नाम ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। अरे, आपने लिखे हैं तो क्यों नहीं शामिल करेंगे। नसीम अंसारी, मुन्ना अंसारी, फैज अंसारी, कुलदीप गुप्ता, इनके भी नाम आपने कहा है शामिल करने के लिए, तो हमने चलिए शामिल कर लिए। और विवेक कश्यप जी, आपका भी मेल अभी अभी हम तक पहुँचा। गुड इवनिंग सर, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आपकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी, अच्छा मेरी आवाज़ इनको बहुत अच्छी लग रही है। मेरे दोस्त हैं ऋषि, जितेंद्र, रोहित और मेरी बहन है शिवांगी कल्पना, विवेक कश्यप और सिसैया, दरियाना पोस्ट, कठौरा ज़िला, सीतापुर, फुलवा, चिटैर। अच्छा, कुछ गाने वाने का आपने लिख दिया, भाई गाने की फरमाइश लिखी ना करिए, है ना, क्योंकि फरमाइश प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अगर किसी फरमाइश प्रोग्राम में आप करेंगे मेल तो आपको आपका गाना ज़रूर सुनाया जाता है और आपको सुनाया भी जाएगा। और 8 से 9 के बीच में आप सुन भी रहे थे मैं जब यहाँ पर आया था, तो चलिए, हो सकता है वो जो गाना आपने कहा अगर अपने आप बच जाए, क्या बात, अपने आप बच जाए, हो सकता है हमने यूँ ही लगा रखा हो पहले से, तो आप तक पहुँच जाएगा। गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा, अच्छा सब लोग ये लाइन लिख रहे हैं, वो हमको भी अच्छा लग रहा है ये सुन सुन के। आपने भी एक फरमाइश कर दी है, ग्राम चकुमरी, झरेखापुर, जिला सीतापुर से, तो हो सकता है कि आपकी फरमाइश पूरी हो जाए, क्योंकि आपने गाना नहीं लिखा बल्कि आपने एक लोक भाषा का नाम लिखा हुआ है, तो हो सकता है उसका गाना बजा दें। वकील अहमद साहब का मेल आ चुका है, अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, पॉप टाइम अच्छा लग रहा है, इस वक्त रेनबो कैफे सुन रहे हैं आप, गाने अच्छे बज रहे हैं, खाना खा रहे हैं आप या कर खा रहे हैं? लील, हमको भी इन्होंने बुलाया है खाना खाने के लिए, अब बताइए हम कैसे खा लें, अगर हमने खाना खाया मुँह में कुछ रखा तो बोलेंगे कैसे, है ना। तो चलिए, हमारी तरफ से आप थोड़ा सा ज़्यादा खा लीजिएगा, है ना, या बचा के रखिएगा, कभी उधर से गुजरे तो हम ले लेंगे। वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी ज़िला, क्या बात है, क्या मतलब इसमें तुबंदी कितनी अच्छी है, वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी, भाई वाह, ज़िला सीतापुर, साहिब अंसारी, साजिया अंसारी, अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी और अहमद नवाब, इतने लोगों के भी आपने नाम लिख दिए हैं, यानी इनको अंदाज़ा है कि ये सारे लोग मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। टाइगर खान, माय नेम इज़ सबरीन नरगिस, और

साथ में शादाब तैयब भी हैं। गुड इवनिंग सर, सदीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। अब मैंने हरदोई पढ़ दिया क्योंकि इंग्लिश में लिखा है HARDOI, तो हरदोई हो गया। हरदोई से मेल कर रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा मेल शामिल कर लें प्लीज़। नरगिस ने ये मेल हमको किया है और इतना खूबसूरत नाम है आपका भाई, वाह क्या नाम है, और मेल हमने शामिल कर दिया है। रोशनी रावत जी आपका भी मेल पढ़ देते हैं और फिर हमें गाना बजा देते हैं। नमस्ते अनवारू सर जी, आप कैसे हैं? आपने भी जो प्रोग्राम आप सुन रहे थे 8 बजे से, उसकी तारीफ की है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से मुझे इंतज़ार था आपका। अच्छा, सुबह तो हमको भी नहीं पता था कि हमको आना है, सच बता रहे हैं। मेरा नाम रोशनी रावत, ग्राम बापुल बहमना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। नीलू शर्मा दीदी और बबीता राव को भी राधे राधे बोल दीजिए। तो राधे राधे भैया आपको इन्होंने बोला है, बबीता जी और नीलू शर्मा जी, तो आप बस खुश रहिए ऐसे ही और हमारे प्रोग्राम ऐसे ही सुनते रहिए। गाना आ गया।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी, तो बस कभी कभी ऐसे सवाल पूछे आते हैं कि कहाँ गए थे इन्होंने, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए इस गाने में। अगर आपने बहुत ध्यान से सुना हो, 9:28:49 हो चुके हैं और रेनबो कैफे आप तक पहुंच रहा है। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूँ और आपके बहुत सारे मेल हैं जो हम पढ़ रहे हैं और आप तक पहुँचाते जा रहे हैं जो आपने लिखा है। बीच में एक मेल किसी का रह गया, देखिए फिर मैं इसलिए स्टार्ट करता चलता हूँ ताकि कोई मेल रह ना जाए। और विनीत कुमार जी का ईमेल है, ग्राम अर्थापुर पोस्ट रामगढ़ चीनी मिल जिला सीतापुर से आपने हमें मेल किया है। गुड इवनिंग आपने लिखा है, आपको अच्छा लग रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपका फ़ोन भी लग चुका है विविध भारती पर, यानी आज आपका दिन बड़ा अच्छा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और इनके दोस्त हैं ओमकार सीतापुर से, शमा परवीन अंसारी और सुरभि, और सीतापुर से ही सीमा रावत जी, आपने उनका भी नाम साथ में लिखा हुआ है और एक फरमाइश भी आपने इसमें भेज दी है। फरमाइशी प्रोग्राम ये है नहीं, इसलिए हमने उसको चुप्पे से पढ़ लिया है। शिवम शुक्ला जी आपका भी मेल है, नमस्कार सर, हम ग्राम कटार गिलौला श्यावस्ती से मेल कर रहे हैं। हम लोग पूरा दिन रेडियो सुनते हैं, सुबह से शाम तक बजता रहता है सर आपका कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगता है। हम अपने मम्मी डैडी और ममता दीदी, साधना दीदी, अन्नू दीदी और छोटी बहन जूही के साथ आपके प्रोग्राम का, आपके कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। चलिए सब परिवार सुनते हैं आप, यही हमारी खासियत भी है, हमारे रेनबो की खासियत है, हमारे आकाशवाणी।

परिवार की खासियत है कि हम जो कुछ भी करते हैं कोशिश करते हैं कि पूरे परिवार के लिए करें। और चलिए, गलती सुधार दी है किसी ने, मेल करके बता दिया है। अगला मेल एमन नवाब संडीला से भेज रही हैं हमें। लिख रहे हैं कि आदाब दर्दमंद दोस्त, अभी दर्दमंद नहीं, थोड़ा सा वक्त गुजरने दीजिए, दर्द भी वक्त के साथ आता है धीरे धीरे। जो चोटें लगती हैं ना, वो जब पक जाती हैं तब थोड़ा सा असर करती हैं। और जो दर्द आता है ना, वो वक्त के साथ भी आता है और अनुभव के साथ भी आता है, और तब भी आता है, और कभी कभी उस दर्द को छुपाने के लिए कभी कभी ऐसा ही हंसना पड़ता है जैसे मैं इस वक्त हंस रहा हूँ। लिखा है इन्होंने कि अनवारुल हसन सर जी, गर्मी में हाल चाल कैसे हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल पूछ लिया। गर्मी में हमारे चाल ऐसे हैं, हमें गर्मी जब बहुत लगती है तो हम जबान निकालते हैं बाहर ऐसे और ऐसे हाँफने लगते हैं। इससे गर्मी कम हो जाती है। कभी करके देखिएगा, जब लाइट वाइट ना आए आपके आसपास तो ऐसे करके हाँफ के देखिएगा। लिखा कि जब आप आते हैं बहुत मज़ा आता है, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करती हूँ उसमें मेरी हंसी की आवाज़ भी आ जाती है। हंसा ना करिए, देखिए जब हमारी रिकॉर्डिंग करिए तो बहुत साफ़ सुथरी करिएगा, हाँ नहीं तो ख़राब कर देती हैं उसको। लिखा कि आपने बोला कुछ मज़ेदार बात बताओ, तो बात आज की नहीं, 2-3 दिन पहले की है। अरे कोई बात नहीं है, बातें चाहे 4 दिन क्या 4 साल पुरानी हो, जब बताइए तो ऐसा लगे कि बिल्कुल लगे कि अभी भी कुछ हुआ था और आपने बताया, यही तो खासियत है। लिखती है कि दादू जी ने 1,000 रुपये दिए थे, दादू से बोला दादू जी मेरे हाथ में अब भी खुजली हो रही, तो दादू जी ने 1,000 रुपये और दे दिए, क्या सर एक बार और मुझे हाथ में खुजली बोलना चाहिए? खुजली सर में नहीं होगी फिर, आप समझ लीजिए दादाजी के पास वो पुराने जो लोग होते थे ना, वो दादाजी आपके टीचर रहे हैं मुझे पता है, तो उनके पास एक वो होगा, एक बेंत होता था है ना, या नीम की छड़ी, तो अगर फिर वो अगर दादू जी ने उठा ली तो फिर हम कुछ नहीं बताने लायक रहेंगे यहाँ से, ठीक है? तो अब रजनीगंधा सुनिएगा, आपने लिखा है कि रजनीगंधा मैं आपके साथ रहूँगी, तो चलिए अब रजनीगंधा सुनिएगा, उसमें साथ रहिएगा, दादू जी को परेशान ना करिएगा दादा, हाँ नहीं तो। रंगनाथ अवस्थी जी, आपका भी मेल आ गया है, गुड इवनिंग, आपने लिखा है प्लीज़ प्ले एनी सॉन्ग फॉर्म। अच्छा वो तो नहीं हो सकता, देखिए जो आपने लिख दिया इस वाले है ना, क्योंकि इसमें वाले फिल्मी वाले बजते नहीं हैं है ना, तो भाई माफ़ी चाहते हैं आपसे, यही कह सकते हैं यमुना अवस्थी, ईशान अवस्थी, हुसैनगंज लखनऊ से आपने लिखा है, यानी हम आपके बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं, हमने इसीलिए माफ़ी मांग ली क्योंकि हमको बाहर भी निकलना है, समझ रहे हैं आप। वैभव प्रकाश सिंह, आपका भी मेल आ चुका है हमारे पास। आज की ये पंक्तियाँ अपने फेवरेट आरजे के लिए, हाँ ये अच्छा किया आपने। वैभव जी ने नागपुर से महाराष्ट्र से लिखा है, क्या खुशनसीबी है हमारी जो आपका दीदार हुआ, यानी रेडियो पर आपने दीदार कर लिया, चेहरा बना लिया, आवाज़ सुन के मैं समझ रहा हूँ, हम उसको उसकी व्याख्या करते जा रहे हैं है ना, ऐसे ही पढ़ा है हमने बचपन में, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ पढ़ के उसको कैसे बड़ा किया जाए, तो वही अब कर लेते हैं यहाँ बैठ के। तो क्या खुशनसीबी है हमारी जो आपका दीदार हुआ, जाने कितनी बार और कितना बेकरार हुआ, मिले तो इस कदर कि जर्रा जर्रा मेहताब हुआ, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, कभी देर तो कभी सवेर, मेरा दिल दोस्तों के लिए यूं ही धड़कता रहेगा। अच्छी बात है भाई, इस मोहब्बत को आप यूं ही कायम रखिए और बताते रहिए हम लोगों को, हम उसको शामिल करते रहेंगे। एक मेल और आ चुका है जावेद अख्तर साहब आपका, और कौन वाला पढ़ना है? आपका मेल कुछ अलग तरीके से आता है, आपके इसकी कुछ सेटिंग अलग तरीके की है, आपके सारे मेल हमें एक साथ दिखाई पड़ते हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं उसको खोलते हैं तो सारे मेल हमें, 8 दिन पहले का मेल सबसे ऊपर मेरे इस वक्त है, कभी कभी हम लोग गलती से ऐसे ही पढ़ जाते हैं, फिर उसको सबसे पहले 8 दिन वाला है, फिर 11 घंटे पहले आपने लिखा है वो है, फिर आपने 7 घंटे पहले लिखा है वो मेल है, 7 घंटे पहले आपके 3 मेल हैं, 4 हैं, 5 हैं, और 7 मिनट पहले है, यानी ये वाला हमको पढ़ना, ये आपने अभी लिखा है, बिल्कुल क्या बात, सही ढूंढा हमने, हम भी कभी कभी बड़े होशियारी काम करते हैं। लिखा है, गुड इवनिंग अनवारुल हसन भाई, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, आपने ऐसा लिखा है कि आपकी रसभरी आवाज़ में एंजॉय करें, गानों का जो इंतखाब आपने किया है वो बेमिसाल है, हम तो आपको शिद्दत से याद किया करते हैं, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने हमें मेल किया है, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा शाहीन, ये सारे लोग एक साथ मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लिखा। मैं वक्त भी देखता चलूँ, 9:35 हो चुके हैं, मेल बहुत सारे आ रहे हैं, गाने भी बहुत सारे बचे हैं अभी बजाने के लिए,

0: तो बजा दें एक पहले, है ना, उसके बाद ये वाला बजाते हैं, देखिए कैसा लगता है आपको बताइएगा।
1: की होया ए?
2: गैर लगता है।
1: पानी?
2: जहर लगता है।
1: की होया ए?
2: गैर लगता है।
1: पानी?
2: जहर लगता है।
1: या किसे दी कबर ते असी
2: रख दिता पैर लगता है।
1: की होया ए?

हम भी पानी पीने जा रहे थे, लेकिन सकारे में जैसे ही सुना ही पड़ा कि पानी जहर लगदा, तो फिर हमने रख दिया। आप पी लीजिएगा, है ना। पानी का ज़रूर ध्यान रखिए, मौसम जो है इसमें जब बाहर निकलना है तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए। और अगर एसी का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश तो करिए कम से कम कम किया जाए, तब किया जाए जब आपको लगे कि हाँ बाहर काफ़ी देर तक नहीं निकलना है, तो आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और पानी के बारे में ये ज़रूर कहना है, और कल भी मैंने थोड़ा सा पानी पर बात यहाँ नहीं की थी, कहीं और मैं कर रहा था, तो मुझे ये ख्याल आया कि अक्सर हम लोग जैसे मिलने जाते हैं किसी से तो ज़्यादातर पानी पूरे पूरे गिलास में भर के आ जाता है, और बहुत सारे लोग पूरा पानी नहीं पीते, अक्सर छोड़ देते हैं, तो वो पानी फिर वेस्ट होता है। तो इससे बेहतर यही है कि पानी के गिलास छोटे इस्तेमाल किए जाएं, और पानी या कोई भी चीज़ है उतनी ही ली जाए। पानी की खास तौर से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इलाके हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं कहीं ना कहीं जहां पर बहुत मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है साफ पानी को, पीने वाले पानी को हासिल करने के लिए। यो तो हमें मुफ्त में जब कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हम उसका मोल नहीं समझ पाते, अक्सर पानी भी उसमें शामिल है। आप ख़ुद देखते हैं कि शादी ब्याह में जो बॉटल्स का इस्तेमाल अब होने लगा है, तो प्यास अक्सर नहीं भी

लगती है तो भी पी लेते हैं, कभी कभी केवल एक घूंट पानी पीना होता है, बहुत से लोग उसके में भी उस बोतल का इस्तेमाल करते हैं, फिर वो बोतल कहीं पर रख के आप यूं ही रख देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी जागरूकता दिखाते हैं कि उसको अपने पास रखते हैं या उसी से पानी पीते हैं, तो बहुत सारा पानी ऐसे बर्बाद हो जाता है। सिर्फ पानी ही बर्बाद हो रहा है, जिसके हम गए हैं, जो जो मेहमान नवाजी हमारी कर रहा है, हम उसके यहाँ भी तो बर्बादी कर रहे हैं ऐसा करके, है ना। कभी ये भी सोचे कि अगर हमारे घर में ऐसा हो रहा होगा तो शायद हमें बहुत तकलीफ होगी देखकर। तो इन चीज़ों का हम तभी ख्याल रख पाएंगे जब हम दूसरों को भी वैसे ही समझेंगे जैसे हम खुद भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें उपदेश ना लगें, हमें करना चाहिए। मुझे इसलिए मुझे याद आ गया इस गाने से, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया ऐसे। सुल्तान रजा साहब ने लिखा है कि अनवारुल सर, आज आपसे एक बात पूछनी थी। आज स्टूडियो में सारे आरजे जो आए हैं वो आ नाम से आए हैं। सुबह आरजे आकांक्षा, आरजे अंजू, 4 बजे आरजे अलका, और आखिर में 9 बजे आरजे अनवारुल। कितने ध्यान से आप लोग सुनते हैं और किस किस एंगल से चीज़ों को देखते हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। ये तो हम लोग भी नहीं देख पाते इस तरीके से। अच्छा आपने ध्यान दिलाया है, और इसीलिए आपका एक मेल आ चुका था, लेकिन दूसरा मेल आपका मैंने इसीलिए पढ़ भी दिया। तालिबन साहिद साहब आपका भी मेल पढ़ देते हैं। राजा कटरा बाराबंकी साहब ने लिखा है, हेलो सर जी, हाउ आर यू। आपको अच्छा अच्छा इस गर्मी में कूल प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं, बस एक हार्ड गर्मी में, भाई वाह, चलिए अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान बच जाएगा तो गर्मी कब लगेगी। वैसे भी गर्मी तभी लगती है जब आप उसको ध्यान करते हैं ना कि बड़ी गर्मी पड़ रही है, अब गर्मी में गर्मी ही पड़ेगी, है ना। तो अगर हम, मैं कभी कभी ये बात कहता हूँ कि अगर कभी ठंडक में बहुत ठंडक लग रही है, ये एक बहाने भी होते हैं बात करने के, क्या बात की जाए ठंडक में। जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो आज ठंडक बहुत है, बारिश होगी तो बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है तो हमारी शिकायत ये रहती है कि पानी नहीं बरस रहा है, बताओ फलाना मौसम चल रहा है, अब तक तो इतना पानी बरस जाना चाहिए था। वो जब बरसना शुरू होता है तो हम लोग की का विषय फिर बदल जाता है, फिर परेशानी होती है कि अरे पानी बरसे चला जा रहा है, तो शायद संतोष नहीं हमारे अंदर। ये सारी दिक्कतें इसलिए भी आती हैं, और हम मौसम को भी चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले, हमको घर से बाहर न निकलना हो तो फूँ पानी बरसे, और पानी जैसे ही बरसना शुरू हुआ और आप निकले तो आपको लगेगा अरे अभी बरसना था, तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा वो, क्योंकि हम भी उसके हिसाब से नहीं चलते हैं। अगर हम भी चल रहे होते उसी हिसाब से, सूरज के हिसाब से, चाँद के हिसाब से, रात के हिसाब से, सुबह के हिसाब से, कभी कभी मजबूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर हमने इसका देखा भी किया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करना ज़रूरी था तो मैंने करा दिया। जितेंद्र नामदेव, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, अरुषि नामदेव, सौम्या नामदेव, विलेज एंड पोस्ट खनौज, अब मैं देखिए पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, KHNNOUDHI, खनौजी डिस्ट्रिक्ट शहडोल, MP से आपने लिखा है, मेरा ख्याल है मैंने सही पढ़ा होगा, और कह रहे हैं कि कोई भी डांस वाला गाना बजा दीजिए। अब खाना खा लिया हो तो डांस ना करेगा, देखिए सब बाहर आ जाएगा, गर्मी भी चल रही है, और गर्मी है तो खाना कम खाइए भाई थोड़ा सा, है ना, तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग बचे रहेंगे, सेहत हमारी अच्छी रहेगी। शैलेश कुमार जी आपका भी मेल आ चुका है, टाइगर शर्मा रूपपुर चंदेला से, यूँ तो मिलते हैं ज़माने में बहुत, लेकिन तेरा मिलना सबसे अच्छा लगे है। अनवारुल भैया को मेरा नमस्कार, भैया गाने कम अच्छे लग रहे हैं। अच्छा अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम बनाते तो बहुत अच्छा, हम इसी तो अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा गाना बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि हमने बनाया था। सारा पीहू, रोशनी, बबीता, अंजू, रिचा, स्नेहा, सोनी, मनु, वंदना, यासिर भैया को मेरा नमस्कार, अलका दीदी का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, और आपने समरीन मैडम के लिए लिखा कि वो भी जल्दी आने की कृपा करें। अब देखिए कोशिश सब अपने हिसाब से आते हैं, है ना। विपिन कुमार पांडे जी का भी मेल हम तक पहुंच चुका है, और अमान विहार कॉलोनी लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुड इवनिंग सर, हेलो FM रेनबो 100.7 बहुत अच्छा प्रोग्राम आपको लगता है, और चलिए आपको लगता है कि ये प्रोग्राम यूं ही चलते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लगता है तो बस यूं ही प्रोग्राम हमेशा चलते रहेंगे, एक बढ़िया सा गाना आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, देखिए आ गया।

0: रात की बहकती तन्हाइयों के बीच महकते हुए दिलकश तराने,
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान,
0: रजनीगंधा। हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।

चलिए, इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से कुछ भी मांगे तो जरूर पूरा हो, हम तो यही कामना करते हैं। 9:52 हो चुके हैं, 45 सेकंड भी, और आपके बहुत सारे मेल अभी भी बाकी हैं पढ़ने के लिए। ज़ीशान खान साहब, आपका भी मेल हम तक पहुंचा है। अस्सलामुअलैकुम भाई, आई एम ज़ीशान खान संडीला से, लेकिन इस वक्त मैं बाहर हूँ, आप वहाँ से आप हमको सुन रहे हैं, आप देश के बाहर हैं और वहाँ भी आप हमारे मेल के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये, और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। महेंद्र दीपन जी, आपका भी मेल आ चुका है, कैसे हैं? मैं महेंद्र दीपन, प्यारे गाँव रूड़ ज़िला नागौर राजस्थान से। ये बड़ी प्यारी बात है कि आपने अपने गांव के लिए प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, यानी आपको इतनी मोहब्बत है, ये बहुत अच्छी बात है। अपनी ज़मीन से जुड़े रहना, माटी से जुड़े रहना, जमीन तो बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है ये। और कैसे हैं? तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और आपसे मिलकर, आपके यहाँ पहुँच कर और भी ज़्यादा खूबसूरती से हम अच्छे हो गए, मतलब खुश हो गए। मुलाकात होती है तो, और आपने एक बड़ा सा पोस्टर बना के भेज दिया है, मुझे लिखा है कि आज मेरे साथ एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा हुआ जिसे साझा किए बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। अभी खाना खा रहा था कि अचानक मुझे ज़ोरों से हिचकियाँ आने लगी। मैंने खूब पानी पिया और हिचकियाँ रुकने का नाम ले रही थी, तभी अचानक मुझे ध्यान आया और मैंने तुरंत अपना रेडियो ऑन किया, और जैसे ही रेडियो पर आपकी जादुई आवाज़ गूंजी, मेरी हिचकियाँ चुटकियों में गायब हो गई। क्या बात है, हिचकियाँ और चुटकियाँ अच्छे शब्द हैं, कोई शायर सुनेगा तो इसमें शायरी करेगा। तभी मुझे समझ में आया कि खाने की टेबल पर यह हिचकियाँ क्यों आ रही हैं। मेरी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर आपने भेजी है साथ में, और आए हाय, खाने की एक प्लेट ही भेज दी, कितना सारा खाना भेज दिया है आपने भाई। और इस वक्त आप नवासारी गुजरात में हैं और वहाँ से हमें सुन रहे हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, और इस खूबसूरत से संदेश के लिए भी जो आपने अभी हमको भेजा है। और जल्दी से मैं और भी मेल पढ़ देता हूँ। शैलेन कुमार जी, आपका भी मेल है। अनवारुल भैया, मैं, अच्छा ये नीलू शर्मा जी ने भेजा है हमें मेल। अनवारुल भैया, मैं FM सुन रही हूँ, सभी लोग बता रहे हैं कि मेरे यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ आजकल बहुत बर्फ़ गिर रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही, मैं गर्म पानी से ही नहा रही हूँ आजकल। अच्छा, आप कहाँ रह रही हैं ये नहीं बताया आपने, है ना? ऐसा होता है वैसे, जैसा सोच लो वैसे ही होता है, हम भी सपने में पता नहीं क्या क्या देखते हैं, जो देखना होता है सोच के सो जाते हैं, अपना देख लेते हैं, इसी में खुश हो जाते हैं। अनवारुल चाचा सलाम भाई, वाह क्या बात है, चाचा जी बना दिया आपने मुझे। हाँ, कार्यक्रम सुनकर बहुत तो प्यारा लग रहा है, क्योंकि आप उसमें जो खर्राटे नहीं ले रहे थे, हम कुछ और बता रहे थे, लिख रहे हैं कि उसमें आप जो खर्राटे ले रहे हैं ना, वही बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि कहाँ पर किस बात को कैसे बोलना है, ये तो आपके अंदर एक बहुत अच्छी कला है भाई। क्या बात है, मेरी बड़ी अच्छी तारीफ हो रही है आज, मुझे भी सीखनी है साथ में आपसे, मुझे उर्दू भी सीखनी है। चलिए बिल्कुल, मुलाकात करिए बातचीत में, हम कुछ आपसे सीखेंगे, कुछ आपको सिखा देंगे, उससे ज़्यादा हम सीख लें।

जाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मुझे सीखना जो है बहुत अच्छा लगता है, और लोगों से मिलना, लोगों से सीखना, लोगों से बात करना, लोगों को पढ़ना, है ना। चिंटू ने एक आदमी चिंटू से एक आदमी ने पूछा, बेटा आपके पापा का क्या नाम है? तो चिंटू ने कहा, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा है मैंने, बस प्यार से पापा ही कहता हूँ। हम बताएं, एक बार सुना था हमने, लेकिन हम हंसेंगे। ठीक है, मुनेश कुमार राजगांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से भी लिख रहे हैं, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, राम राम कहा है आपको भी, राम राम, और हर घंटे आप लगातार इसको सुनते रहते हैं, और सुबह से शाम बज रहे गाने कमाल, आरजे की बातें सुनकर हो जाएं सब निहाल, रेनबो कैफे का अपना ही जलवा है, सुनने वाले बोले वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं हम। भैया मोनू से आपने केवल इतना लिखा है, बढ़िया जबरदस्त, और चार ठो फूल भेज दिए। चलो अच्छा है, गर्मी में आपने फूल भेजे, हम कोशिश करेंगे, मुरझाए ना, पानी डालते रहेंगे कंप्यूटर में। ठीक है, गुड इवनिंग प्रिया नवाजुल सर जी, कैसे हैं आप? अजय कुमार, अजय सिंह जी ने हमें मेल लिखा है, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अभी घर पहुंचे हैं, तुरंत आपको मेल किया, अभी कपड़े नहीं उतार, अब कपड़े ना उतारिएगा, देखिए लिख दिया अभी कपड़े नहीं उतारे हैं, अभी हमको क्यों बता रहे हैं आप? आपसे लगाव है सर, आज आप गुड मॉर्निंग, अच्छा आज आप गुड मॉर्निंग वाली अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, नहीं नहीं ये गुड इवनिंग वाली बातें हैं ये, है ना, गुड मॉर्निंग में भी करते हैं सर। टाइम से डिनर करके अच्छे प्रोग्राम पेश कीजिए, पानी पीते रहिए, और हम 12 बजे तक आपके साथ हैं। हमें कहाँ मिल रहा है कुछ खाने वाने को, चलिए कोई बात नहीं, खाने की बात मत करिए, देखिए अब जो महन दीपन जी ने थाली भेजी है बस उसी से काम चलाएंगे, जल्दी से दो मेल और पढ़ देते हैं, अब मेल करना बंद कर दीजिएगा। देखिए इसके बाद तेज बहादुर यादव जी, आपका भी मेल हम तक पहुंच चुका है, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, और मैं आप 12 बजे तक साथ रहने वाले हैं, मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से हैं, गुरुग्राम में आप सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और अतुल कुमार जी, आपका ये अंतिम मेल है, आपने लिखा है कि इसमें लास्ट में भी शामिल कर लो, तो लीजिए हमें लास्ट में शामिल कर लिया। और मनोज विश्वकर्मा जी, आपको भी शुक्रिया कि आपने जिला बलौदा बाजार ग्राम तारा शिव से हमें यह मेल किया, जल्दी से गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद रजनीगंधा की खुशबू महकेगी जब 10 बजे लौटेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ ऐसे ही आप बने रहिए, और एक गाना हम बजा के जाते हैं, यूं गए यूं आए।

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने के महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि

ने अपने कर्मचारियों पर कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम किया गया जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजीत प्रजापति ने की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा अन्य राजनीतिक दलों की तरह केवल चुनाव जीतने की मशीन नहीं है बल्कि ये देश के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्स्थापित करने और राष्ट्र निर्माण का एक पवित्र माध्यम है। वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब न्यायपालिका में भी दिखाई देने लगा है। आज सहारनपुर में अपर जिला जज विकास गुप्ता ऑफिसर कॉलोनी स्थित आवास से साइकिल चलाकर न्यायालय पहुंचे। न्यायालय परिसर में उनकी इस पहल की अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और आम लोगों ने सराहना की। लोगों का कहना है कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारी भी पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के प्रति जागरूक हैं। अपर जिला जज ने इस पहल से लोगों को अनावश्यक पेट्रोल डीजल की खपत करने कम करने और प्रदूषण मुक्त वातावरण के प्रति जागरूक किया है। बुलंदशहर में जिलाधिकारी कुमार हर्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जिला पंचायत सभागार में आगामी पर्व के दृष्टिगत सभी धर्मों के धर्मगुरुओं व वरिष्ठ नागरिकों एवं संभ्रांत नागरिकों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में उपस्थित सभी लोगों से मिलजुल कर रहने तथा त्योहारों को शांतिपूर्ण रूप से मनाने एवं आपसी सौहार्द व भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन रात 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। जैसे रंगों की खूबसूरती दिल को छू जाती है, वैसे ही मोहब्बत की गहराई जिंदगी को रंगीन बना देती है। हर रंग एक कहानी कहता है, हर पल एक याद बन जाता है। मोहब्बत का ये रंगीन सफर हमें जिंदगी के हर पल को खूबसूरती से जीने का सलीका भी सिखाता है, सबक भी देता है। तो क्यों ना इसी सफर में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे रंग हैं मोहब्बत के, जो झलकेंगे, ढलकेंगे, छलकेंगे, बिर और बिखर भी जाएंगे, और इन रंगों को संभालने की जिम्मेदारी रजनीगंधा में आज आपके दोस्त अनवारुल हसन के ऊपर है। हम रहेंगे आपके साथ, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर आपको नींद आ जाए तो नींद के आगोश में चले जाइएगा। फिलहाल स्वागत है सफर में, नमस्कार।

वाएंगे और चांदनी रात होगी, न ये बात होगी न वो बात होगी, कटी उम्र सारी इसी कश्मकश में, अगर वो मिलेंगे तो क्या बात होगी। तो जरूरी ही क्या है कि कुछ बात की जाए। थोड़ी दूर से देखते रहिएगा उन्हें, अगर लफ्ज कम पड़ते हैं ना कभी कभी तो फिर बातें करती हैं आंखें, तो उन आंखों को बातें करने दीजिए, आपको मुश्किल भी नहीं होगी, आराम से बहुत सारी चीजें यूं ही हल हो जाएंगी। रास्ते में मिल गया था जो बाका सा राहजन, वो किस खुलूस से मेरा दमसाज हो गया, इतना निडर तो दिल मेरा पहले कभी न था, तेरी गली में आके नजरबाज हो गया। तो इन आंखों को बातें करने दीजिए ऐसे ही चुपके चुपके।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ।
1: लहराते हुए बलखाते हुए एक रास्ता है हमारी आंखों से गुजरकर जो दिल के चोर दरवाजे तक जाता है, और यहीं अगर आपका बसेरा हो गया तो फिर शायद जिंदगी आसान हो जाए। आंखों से उतर कर दिल में समा जाते हैं और बहुत सारे लम्हे काफी कुछ सिखा भी जाते हैं। तुमसे मिलने का वो पहला लम्हा अभी भी याद है, वैसे ही उसी एहसास के साथ तुम्हारी मुस्कुराहट ने खामोशियों को भी शायरी में बदल दिया था। अब तुम जब भी देखती हो तो हर रात रोशन हो जाती है, मगर मैं वैसे ही चुपचाप सब कुछ देखता रहता हूं।

महसूस करता रहता हूं। तुम्हारी बातें, छोटी छोटी सी वो अदाएं, सब कुछ मेरे ख्वाबों में अभी भी, मेरी यादों में अभी भी वैसे ही महफूज है। कभी कभी सोचता हूं शायद लफ्जों की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम्हारी जो नजर है वो सब कुछ महसूस करा देती है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी आंखों का एक छोटा सा कोना, जहां से एक पुरानी सी तस्वीर झलकती है कभी कभी एक चमक के साथ। और जब इस तरह की बातें आए मन में, इस तरह के ख्याल आए, तो इसका मतलब यह भी होता है कि शायद मोहब्बत जवां हो रही है। कभी कभी डरते हैं, छुपाते हैं जमाने की नजर से, और कभी कभी कहा जाता है कि क्यों छुपाएं, सच तो छुपता ही नहीं है। इश्क और मुश्क कहते हैं कि छुपाए नहीं छुपते, लोगों को पता चल ही जाता है। तो फिर जो चर्चे चले हैं जमाने में, चलने दीजिए, लोग कुछ कह रहे हैं तो कहने दीजिए ना उन्हें, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है, तो छुपाना कैसा। 10:21 हो चुके हैं, हल्दी गंधा की खुशबू मोहब्बत की गलियों में गुलजार कर रहा है आपका दोस्त जी हाँ, अनवारुल हसन।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

உங்கள்

मुद्दत के बाद उसने लिखा मेरे नाम खत, मुद्दत के बाद उसने लिखा मेरे नाम खत, मेरी शिकायतों से भरा है तमाम खत। घबराना इस कदर दिले बेताब सब्र कर, आता है कोई रोज में अब सुबह शाम खत। लिखा हुआ है खास तुम्हारे ही हाथ का, पहचानता हूं खूब तुम्हारा गुलाम खत। तहरीर उनकी सीनों पे रख दीजिए मेरे, बदले जवाब नामा के आएगा काम खत। खत लिख के आज डाक पे पहुंचेंगे यार को, खत लिख के आज डाक पे पहुंचेंगे यार को, पहुंचाएगा हमारा पयामो सलाम खत, पहुंचाएगा हमारा पयामो सलाम खत।

0: करियर पर है ध्यान,
1: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
0: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
0: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
0: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स,
0: ओनली ऑन यूथ वेव,
1: यूथ की बात यूथ के साथ,
0: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
1: धड़कन लखनऊ की।

0: माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें
1: स्पोर्ट्स में करना है ना,
2: पॉजिटिव है फैशन,
1: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
1: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
1: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स।

और कभी आप ये सोचते भी होंगे कि ये खूबसूरत सा जो मोहब्बत भरा एहसास है ये इतना खूबसूरत और क्यों हो जाता है वक्त ढलते ढलते शाम को या कभी कभी इन पलों में जब थोड़ी सी रात कहलाती है, क्यों खूबसूरत लगती है इतनी शामें? शायद इसलिए भी कि दिन भर की भाग दौड़ थम जाती है, शायद इसलिए भी कि हमें अपने अंदर झांकने का एक मौका भी मिलता है। बहुत आराम से बैठकर कभी कभी चाय की चुस्कियों के साथ, कभी खाना वाना खाने के बाद अपनी फैमिली के साथ, और फिर वो बातें याद आती हैं, वो मोहब्बत वाली शामें भी याद आती हैं जब दिल धड़कता था किसी एक नज़र के इंतज़ार में भी कभी कभी। तो शाम का तो ऐसा ही एहसास होता है, एक खूबसूरत सा ठहराव होता है वो पल जब जिंदगी थम कर मुस्कुराती है। तो फिर इसका मतलब है कि हमें अपनी उलझनों से बाहर निकलना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी उलझन में हैं तो थोड़ी सी खिड़कियाँ खोलकर, और ये जो खिड़कियों की बात कर रहा हूँ ना, ये खिड़कियाँ खास तौर से जो हम अपने मन की बंद कर लेते हैं, अपनी सोच समझ की बंद कर लेते हैं, अगर ये खुल जाए ना धीरे धीरे और वो खूबसूरत सी साफ सुथरी सी ताज़ी ताज़ी सी हवाएं अंदर आएं, तो वो ख्याल भी जाग जाएं जो हमने कहीं दफन कर लिए हैं। और फिर कुछ ऐसे ख्याल भी जो आपको गुदगुदाते हैं, उनके बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए जिनको भुला दिया है, उनके बारे में भी जिनसे कभी कभी मुलाकातें हुआ करती थी। ज़रूरी नहीं कि हर मुलाकात का जो अंजाम है वो बड़ा खूबसूरत हो, लेकिन यादें तो खूबसूरत होती ही हैं, कभी कभी कुछ ऐसी भी। जैसा गाना हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, 10:50 हो चुके हैं, मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ, आप सुन रहे हैं रजनीकंधा 100.7 FM रेनबो पर।

मेरा तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत सी बातें उसके बाद भी रह गईं। कभी कभी कह नहीं पाए, वक्त गुजरता चला गया। तो कहते हैं कि गैरों से मत कहना मन की बात, मुझसे कहना, बस मुझसे कहना। जो राज है दिल के कोने में छुपा, वो राज ना बांटना किसी और से, सिर्फ मुझसे कहना। और अगर नहीं कह पाए कुछ बातें, तो फिर जब अकेले होते हैं आप, तो कभी कभी तो कुछ बातें याद आती ही हैं कि काश तब ये किया होता, यू कह दिया होता, ये बात हमने कह दी होती। जाते जाते किसी को पलट कर रोक लिया होता शायद। तो ऐसा नहीं कर पाए तो वो चीजें जो परेशान करती हैं, वो परेशानी आखिर कहां तक ले जा सकती है? और जब वो परेशानियां पैदा होती हैं तो क्या होता है? समाचारों के बाद लौट

देंगे तो बताएंगे आपको। 10:56 हो चुके हैं और हमेशा की तरह मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। हाँ, हवा उठेंगे समाचारों के बाद, क्योंकि रजनीगंधा का ये सफर जारी रहेगा जिसे आज आप सुन रहे हैं अनवारुल हसन के साथ।